0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, जिसमें आपने सुना राग ललित। कलाकार थे नितिन शर्मा। 6 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात

0: के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 6:10 और 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 6:40 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे भीष्म साहनी के विचार।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं लघु वार्ता भीष्म साहनी के विचार। आलेख है डॉक्टर पूनम सिंह का और वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का।
2: हिंदी साहित्य का एक रोशन नाम भीष्म साहनी, एक अजीम लेखक जिनकी कलम ने ताउम्र जिंदगी नुमा वृक्ष के हर पत्ते बूटे पर सामाजिक यथार्थ इंसानी रिश्तों नातों की कहानियों को रचा। प्रेमचंद यशपाल परंपरा के नायाब कथाकार भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त को अविभाजित भारत रावलपिंडी में हुआ था। स्वाधीनता संघर्ष और विभाजन त्रासदी पिछली सदी के इन दो अतिवादी स्थितियों फड़फड़ाते वक्त की तमाम बेचैनियों ने उन्हें रफ्ता रफ्ता लेखक के रूप में गढ़ा। देश की परिस्थितियां और लेखक का मन कुम्हार के आवा जैसा होता है।

0: जिसमें भीतर की मतती बेचैनियां अनेक विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा के रूप में आकार लेती हैं। जमीनी संघर्ष से उपजा उनका समग्र साहित्य सांप्रदायिकता के विरुद्ध लामबंद है। कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर, मुआवजे, ये इनके महज नाटक नहीं, सांप्रदायिक ताकतों के प्रति उनकी शाब्दिक खुली चुनौती है। कबीर का होना भारत की सांस्कृतिक सामाजिक समरसता को पुनर्जीवित करना है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक में भीष्म साहनी कहते हैं, मेरी समझ में कबीर का अध्यात्म मूलतः उनकी मनुष्य मात्र के प्रति समदृष्टि, प्रेम भाव, भक्ति भाव और व्यापक धर्मेतर दृष्टि से पनप कर ही निकला है। आजीवन प्रगतिशील विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध भीष्म साहनी लेखक के सामाजिक दायित्व को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेखक के परिवर्तनकारी कर्तव्य बोध पर उनका कथन है, लेखक का संवेदन अपने समय के यथार्थ को महसूस करना और आंकना है, अंतर्द्वंद्व और अंतर्विरोध के प्रति सचेत होना है। इसी दृष्टि से उनकी पकड़ समाज के भीतर चलने वाले संघर्ष पर ज्यादा मजबूत होती है और परिवर्तन की दिशा का भी आभास होने लगता है। इसी के बल पर वो राजनीति से आगे होता है, पीछे नहीं। भाषाई राजनीति पर उनकी टिप्पणी है, सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देना, सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, संस्कृति के क्षेत्र में उदारता और आदर भाव, इस तरह से हम कुछ हद तक सांप्रदायिकता के जहर को फैलने से रोक सकते हैं। भीष्म साहनी अपनी लेखनी से हमारे भीतर सोए हुए रहम को जागृत करते हैं। शांति एक व्यापक मूल्य बोध है जिसे जनता और हुकूमत दोनों को अर्जित करना पड़ता है। ये अभिमत उनके पूरे कथा साहित्य का शिव तत्व है, जिसमें वो कहते हैं कि हर इंसान बराबर है, चाहे उसका धर्म, जाति या सामाजिक स्तर कुछ भी हो। भेदभाव करना असभ्यता और अन्याय है। पिछली सदी ने भेदभाव और असमानता की बड़ी भारी कीमत चुकाई है। भेदभाव या असमानता एक जहरीला बीज है जो न केवल समाज को बल्कि इंसानियत को भी खोखला कर देता है। भीष्म साहनी साहित्य के महत्तर उद्देश्य को रेखांकित करते हैं। साहित्य तो प्रकृति में पाए जाने वाले मूल तत्वों की तरह है जो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि सार्वभौमिक हैं। साहित्य में पाई जाने वाली ये सार्वभौमिकता उसमें निहित मानवतावाद से पैदा होती है। भीष्म साहनी के साहित्य का एक ही चटक रंग है, वो है लोक कल्याण।
1: अभी आपने सुना चिंतन के अंतर्गत भीष्म साहनी के विचार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 6:45 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे रामचरितमानस। इसमें आज आप सुनेंगे बाल कांड का भाग 115।

श्रीराम की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता

तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समाधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने

0: अभी आपने सुना रामचरितमानस में बालकांड का भाग 115, 6:55 होने को है। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितं यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अन्तरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीयपरीक्षणे अम्ब्लिकल् तन्त्रस्य पृथक्करणप्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीयपरीक्षणे तावत् शीर्ष आवरणपृथक्करणक्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखण्डतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1%तमो भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च माई गॉव इति मुक्तमञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गान्धीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मन्त्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्रीशाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्रीशाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सह अपि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयं आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षाकार्येषु ओमानदेशस्य प्राधिकारिभिः साकं सक्रियसमन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमणप्रसङ्गेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिकसमाधानाय वार्तानां शीघ्रसम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्धद्वादशवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out three major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. The apex cover protects the parachutes and associated subsystems during the mission. Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Anant Bendale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shrest Suraya from Mumbai, and Swarit Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among 381 students from 87 countries. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will lead a high-level Indian business delegation to Spain, Belgium and Finland from today till the 17th of this month. The Ministry of Commerce and Industry said that the visit aims to strengthen India's economic partnerships with Europe with a focus on trade, investment, technology, innovation and sustainability. In the first leg of his tour, Mr. Goyal will visit Spain today, where he will participate in a business roundtable with the Chamber of Commerce of Spain, CEOE and ICEX Spain Trade and Investment. The minister will then visit Belgium on the 14th and 15th of this month. Thereafter, Mr. Goyal will visit Finland on the 16th and 17th of this month. The monsoon session of the Chhattisgarh Legislative Assembly begins today. The session will continue till the 17th of July. A total of five sittings will be held during the session. During the session, financial business will be transacted and the state government will also introduce around eight amendment bills. India has declared one day national mourning today as a mark of for respect for Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who passed away yesterday. The national flag will be flown at half-mast on the day of mourning throughout India. On all buildings where the national flag is flown regularly, there will be no official entertainment on the day. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, noting that he was a visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity. The United States has launched a fresh round of military strikes against Iran. U.S. Central Command said that the operation is intended to further degrade Tehran's ability to target civilian mariners and commercial vessels transiting the Strait of Hormuz. In a post on X, CENTCOM said the strikes were carried out on the direction of the commander-in-chief to hold Iranian forces accountable. The latest strikes come amid heightened tensions in the Gulf region. According to Iran's press TV, three explosions were heard in the southern Iranian cities of Jask, Bandar Abbas and Sirik following the US strikes. In tennis, top seed Italy's Yannick Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed Germany's Alexander Zverev in the final at the All England Club London last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. Sinner became the 10th player to successfully defend the Wimbledon men's singles title. In the women's doubles final, 10-seeded Chinese-French pair of Gao Hanyu and Kristina Mladenovic defeated the second-seeded Canadian-Brazilian duo of Gabriela Dabrowski and Luzia Stefani to clinch the title at the centre court. The IMD has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days and isolated heavy falls over east Uttar Pradesh during 4 to 5 days. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. सुबह के ठीक 7:10 और पूरे 15 सेकंड्स हो चुके हैं. अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका. इसमें आज आप सुनेंगे अक्षय कुमार नागर द्वारा गाए भजन. आपका साथ दे रहे हैं तबले पर ऋतु मिश्रा, सितार पर रईस अहमद और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष.

सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में अभी आप आनंद उठा रहे थे अक्षय कुमार नागर द्वारा गाए भजनों का। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर ऋतु मिश्रा, सितार पर रईस अहमद और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 6:33 हो चुके हैं और साथ ही साथ वक्त हो चुका है आपके और हमारे यानी आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। और आज इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस खूबसूरत कार्यक्रम को एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आप जैसा भी कोई नहीं है और उम्मीद है कि आपकी सुबह मुस्कान, उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ शुरू हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, हर सुबह हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। कल की परेशानियां, अधूरे काम और बीती हुई बातें पीछे छूट जाती हैं। सूरज हर रोज हमें यही संदेश देता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना रही हो, एक नई सुबह जरूर आती है।

जी हाँ दोस्तों, सुबह की पहली किरण के साथ एक नया दिन एक नए मौके के साथ और नई उम्मीदों के साथ आता है। आपका इंतजार करती है नई उम्मीदें, आपकी चाय की चुस्कियाँ और हमारी बातें आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाती रहती हैं। और इस तरीके से बनाते रहने के लिए हम टाइम टू टाइम आते भी रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी दौलत की आप के साथ जो हर अमीर और गरीब, छोटे बड़े और हर इंसान को बराबर मिलती है, और वो है वक्त। जी हाँ, वक्त, समय, टाइम। कहते हैं अगर पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर बीता हुआ एक मिनट भी कभी लौट कर आ गया हो किसी की लाइफ में, तो आपने शायद ही कभी ऐसा सुना हो कि किसी का बीता वक्त जो है वो लौट कर आया हो। तो जो वक्त है ना दोस्तों, वो कभी भी लौट कर नहीं आता है। ज़रा सोचिए, हम अपने मोबाइल की बैटरी 20% होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं लेकिन जब दिन के 24 घंटे बिना कुछ नया सीखे या किए निकल जाते हैं, तो अक्सर हमें एहसास होता है कि काश उस वक्त रहते उस काम को पूरा कर लिया जाता, काश वो वक्त वापस आ जाता।

जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चुका है यहाँ पर 7:45 और पूरे 11 सेकंड्स। आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता।

जी हाँ दोस्तों, बात यहाँ चल रही है वक्त की। वक्त हमें रोज 24 घंटे का एक नया खाता देता है। ना इसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही अगले दिन के लिए कुछ सेव कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। तो जो करना है आज करना है, और जो करना है वो अभी करना है। तो आज एक छोटी सी कोशिश जरूर कीजिएगा, किसी अपने को फोन कर लीजिएगा, किसी अधूरे काम की शुरुआत को पूरा करने की तैयारी कर लीजिएगा, या फिर खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट निकालिएगा। हो सकता है यही 15 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा बदल दे।

जी हाँ, अगर आपको भी अपनी जिंदगी संवारनी है तो बस वक्त का सही इस्तेमाल करिए। याद रखिए, घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती है दोस्तों, ये याद भी दिलाती है कि समय लगातार आगे बढ़ रहा है।

दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मेहनत करते रहिए और सही समय का धैर्य से इंतजार कीजिए। जरा घड़ी को ही देख लीजिए, उसकी तीनों सुइयां अलग अलग गति से चलती हैं। सेकंड वाली तेज दौड़ती है, मिनट वाली थोड़ा धीरे चलती है और घंटे वाली सबसे धीमी चलती है। लेकिन तीनों का लक्ष्य एक ही होता है, सही समय बताना। और ये घड़ी हमें भी जो है ना सही समय बता रही है, जो कि है पूरा होने वाला है हमारे इस कार्यक्रम का।

जी दोस्तों, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कोई दोस्त आपसे पहले सफल हो सकता है कोई बात पे, किसी को मंजिल जल्दी मिलती है तो किसी को थोड़ा सा इंतजार करने के बाद। इसलिए अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि अपने कल से कीजिए और वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। और बस चलते चलते आज का एक छोटा सा विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वक्त को बदलने में वक्त लगता है, वक्त को बदलने में वक्त लगता है, इसलिए आज की गई छोटी से छोटी अच्छी शुरुआत भी कल बड़ी सफलता बन सकती है। तो दोस्तों, अपने हर पल की कद्र कीजिए, क्योंकि बीता हुआ वक्त सिर्फ याद बनता है लेकिन आज का वक्त कल की कहानी लिखता है। इसी सुविचार के साथ आपसे इजाजत चाहती है आपकी आज की ये रेडियो होस्ट एंड दोस्त। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, यूं ही अपना प्यार हम तक भेजते रहिए यूं ही, और जल्द ही आपसे एक बार फिर से मिलने का वादा लिए आपसे इजाजत चाहती है आपकी ये दोस्त। आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल

0: सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। टू न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इन टू फोर्स इन द स्टेट टुडे। इसरो सक्सेसफुली कैरीज आउट 3 मेजर टेस्ट ऑफ गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम्स। 5 इंडियन स्टूडेंट्स विन गोल्ड मेडल्स एट 56th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026। इंडिया सिक्योर्स वर्ल्ड नंबर 1 रैंक जॉइंटली विथ अदर कंट्रीज। IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
9: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odigar

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8:45 और 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। आप प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप आनंद उठाएंगे रूबी गोस्वामी द्वारा राग नट भैरव में गायन का।

0: ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
1: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, आरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस

0: योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले ईरानी सेना द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
2: Under West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Andash Gupta, Akashvani News, Kolkata.
1: Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module where astronauts live and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. The apex cover protects the parachutes and associated subsystems during the mission. 5 Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Anant Bindale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shreshth Suraya from Mumbai and Swarit Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among 381 students from 87 countries. Prime Minister Narendra Modi today said that when all-round development ensures positive transformation in the lives of every citizen, it gives fresh momentum to the nation's progress. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said, "The country is continuously working to further strengthen India's capabilities with this inspiring spirit." The quote conveys that ensuring the welfare of women, protecting and nurturing the younger generation, and continually making the necessary arrangements for the unity, security, prosperity, and orderly government

दोस्तों आपने सुना फिल्म नदिया के पार का ये सदाबहार गीत, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि उत्तर भारत का यूं कहें कि प्रसिद्ध लोक संगीत और सादगी से भरा हुआ बहुत सुंदर उदाहरण है और इसकी धुन बोल वाकई इनमें बहुत सहजता साफ महसूस होती है। और इसी वजह से ना ये गीत आज भी गांव के चौपालों से लेकर शहरों की संगीत महफिलों तक समान रूप से पसंद किया जाता है और आज भी बिल्कुल तरोताज़ा लगता है और जब भी सुनते हैं ना बहुत पसंद आता है सभी को क्योंकि मन को मोह लेता है। दोस्तों लोकगीतों की यही तो खूबी है कि ये किसी चीज़ से बने नहीं है, समय की

सीमाओं से भी बने नहीं होते, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को याद आते हैं, संस्कारों और भावनाओं के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। और जब हिंदी सिनेमा इन लोक धुनों को अपनाता है तो वह केवल एक नया गीत नहीं बनता बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान और नया मंच भी देता है। और बहुत ही इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ कार्यक्रम में आगे हम बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कार्यक्रम तो आपकी पसंद है, तो

जो लोकगीतों पर आधारित है, बिल्कुल हमें लिख कर भेजिएगा। और आपका जो फेवरेट है, जहाँ कहाँ के, जैसे कई बार होता है कई लोगों को पंजाबी लोकगीत बहुत पसंद होते हैं, कई को हरियाणवी, किसी भी जगह के, और अपने यहाँ के तो खासकर पसंद होते हैं, तो ज़रूर हमें ये भी बताइएगा कि आपको कौन से लोकगीत पसंद है और आपके यहाँ पे कौन से वाले लोकगीत प्रचलित हैं। जी हाँ, क्योंकि हर किसी जगह के अपने एक लोकगीत होते हैं, उनमें एक प्यारी सी मिठास होती है, और अभी तो मिठास हम अपने श्रोताओं से बिल्कुल लेने वाले हैं, उनके संदेश पढ़ेंगे, बिल्कुल लेंगे। और जो नए श्रोता जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है iprdiodelhi@gmail.com, एक बार फिर दोहरा दे, iprdiodelhi@gmail.com। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का। तो चलिए संदेश ले भी लेते हैं जो संदेश हमें आ चुके हैं, बिल्कुल, और उसके बाद आपकी पसंद के गीत बिल्कुल जारी रहेंगे। तो चलिए अगर ये संदेश ले लेते हैं, ये आया है हमें उत्तम नगर दिल्ली से, है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का संदेश। और अगला जो हमें संदेश मिला है वो है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, और ये लिख रहे हैं कि हमारे संदेश को ज़रूर शामिल करें। तो दोस्त, ऐसी बात नहीं है, सभी के संदेश शामिल करने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं, ये संदेश कहाँ से आया, ये हमें आया है मंसूरी रेडियो लिस्टर्स क्लब से, राम चबूतरा कालपी से हैं, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुवना और यश मंसूरी, और ये हमारे साथ जुड़े हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहाँ। और ये हमें संदेश बार बार आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा जी का संदेश। और अगला जो संदेश हमें मिला है वो है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से, हैं हमारे साथ जुड़े मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अब्बान अब्बासी, और उनके साथ अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों की ओर से ही उन्होंने संदेश भेजा है हमें। और अगला संदेश दे देते हैं, ये हमें आया है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा का। और हमारे साथ जुड़े हैं, ये है पतरोड़ा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकर जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल जी। और ये हैं राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी, चौधरीवास, हिसार, हरियाणा से। ये लिखते हैं, शोभा जी नमस्कार, रोजाना 11 बजे तक समय बर्बाद करते हैं, ईमेल शामिल करना आपकी मर्जी पर निर्भर है, कुछ साथ ही हमें शामिल नहीं होने देंगे। ऐसी बात नहीं है दोस्त, ये आप इस तरह से नहीं कह सकते। देखिए, आपका मेल शामिल हुआ है ना, और इस तरह से कह के आप सोचते हैं कि मेल शामिल होगा, तो इस तरह से तो अच्छा नहीं लगता दोस्त। प्यार से हम सबको शामिल करते हैं, गुस्से से भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं, ये आया है हमें चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा, विमला अनेजा का, और लिख रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल के लिए बेशुमार मोहब्बत है। तो दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है एकता कॉलोनी रोहतक से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट का। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत नौकर फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।

दोस्तों, इस गीत में हरियाणवी और राजस्थानी लोक संगीत की चुलबुली अदा, देसी ठाठ और उत्सव की ऊर्जा साफ महसूस होती है। ढोलक की थाप, लोक वाद्यों की झनकार और सहज बोल इसे सीधे लोक परंपरा से जोड़ते हैं, और इसी वजह से तो ये गीत सुनते ही तीज त्योहारों, मेलों और शादी ब्याह का रंगीन माहौल ना आंखों के सामने उभर आता है। दरअसल लोकगीत केवल संगीत नहीं होते, वो किसी क्षेत्र की जो बोली, संस्कृति, पहनावे, रीति रिवाज और जीवन शैली का आईना भी होते हैं। और जब बॉलीवुड फिल्मों में इन लोक दिनों को अपने संगीत में पिरोता है, तो वो यूँ कहें कि उतने दायरे से निकलकर पूरे देश और दुनिया के श्रोताओं तक पहुंच जाते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। और इसी तरह हिंदी सिनेमा ने भारत के अलग अलग प्रदेशों के अनगिनत लोकगीत और लोक दिनों को नई पहचान दी है। और लोक संगीत की सबसे बड़ी ताकत है कि ये बदलते समय के साथ भी अपनी मिट्टी की महक को कभी खोने नहीं देते हैं। वाकई में बहुत पसंद आते हैं गीत। और लोक संगीत में कभी कभी कोई बॉलीवुड में नहीं भी होते हैं, मतलब नहीं आते हैं, फिर भी वो गीत है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। और ख़ासकर जब हम अपने जो क्षेत्र के सुनते हैं और जो हम समझ सकते हैं, वो तो वाकई ऐसे हम उन्हें कभी कभी तो गुनगुना भी लेते हैं। वाकई बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। चलिए, बहुत सी बातें हो गई और हम भी देखते हैं कि हमारे श्रोताओं को कौन से गीत अच्छे लगते हैं, लोकगीत, और उनके वहाँ कौन से प्रचलित हैं। तो संदेश ले लेते हैं। जी हाँ, इन्होंने ये हमारे पास संदेश है गाजियाबाद से, शीशपाल अकेला का। ये लिखते हैं, हमें तो ब्रज लोकगीत पसंद है। वाकई में ब्रज की भी अपनी एक बात है, राधा कृष्ण की बातें और प्यारे से।

फिर खाने वाले बहुत प्यारे गीत लगते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है लेबाई छत्तीसगढ़ से, गुलाम दास माणिकपुरी, राजा दास माणिकपुरी, उज्जवल दास माणिकपुरी का। ये लिखते हैं, शोभा जी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी लोकगीत और भोजपुरी लोकगीत अधिकतर सुने जाते हैं। वाकई में बहुत ही मिठास है सभी लोकगीतों में, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो एक तरह से दिल को छूते हैं। कभी कभी हमें नहीं भी समझ आते हैं ना तो भी इसका जो संगीत होता है ना वाकई में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं तो कहीं ना कहीं हम जोड़ ही लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है मैं प्रकाश गोगिया का दिल्ली से, और ये लिखते हैं कि हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ लोक संगीत नहीं चलता, हाँ पंजाबी लोक संगीत चलता है और वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बई बात सही है, पंजाबी लोकगीत तो यूँ कहें कि सारी दुनिया में ही मशहूर हो गया हुआ है और अच्छा ही लगता है। तो अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है अस्तुपुरा जिला मऊ से है, मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और इनके साथ है बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली, अनवर, रिजवाना, परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और अगला संदेश हमें आया है इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान का। ये लिख रहे हैं कोई भी गीत सुनवा दें। तो दोस्त आपकी पसंद पे जो आपके श्रोता है ना बहुत प्यारे प्यारे गीत हमें भेजते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है हमें स्टेशन रोड जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया का। ये लिखते हैं कि पूरी परिवार के साथ चाय की चुस्की लेते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, हमें भी शामिल करें। बिल्कुल दोस्त आप भी शामिल होंगे और लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो आपको भी बहुत प्यारी गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। अगला संदेश हमें जो आया है ये आया है प्यारी सिस्टर आरजे शर्मा जी लिख रहे हैं, आपको प्यार भरा आदाब आपको भी। और ये हैं हमारे साथ श्रोता जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, मोहम्मद फैज़ वारसी जी। और भी बहुत से संदेश हैं पर उन सबकी पसंद पे एक प्यारा सा लोकगीत सुनवा देते हैं। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा संदेश हमें आया था तो उसके लोकगीत सुनो और उसके ठीक बाद एक संदेश भी सुनते हैं।

0: वाह क्या खूबसूरत गीत था। और ऊर्जा कालेकवा सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि पंजाब की लोक परंपरा की मिठास से घुला हुआ ऐसा नगमा है जिसने हर पीढ़ी के श्रोताओं के दिल को छुआ है। लोक धुन, ढोलक की थाप और शब्दों की आत्मीयता इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। और दोस्तों, बॉलीवुड की यही खूबी है कि वो लोक संगीत की आत्मा को आधुनिक संगीत के साथ इस तरह पिरो देता है, यूँ कहे कि जुड़ाव बना देता है कि वो हर दौर में नया और ताज़ा लगता है। तो दोस्त, बातें तो और भी होंगी पर उससे पहले हम सुनते हैं संदेश और उसके बाद आपके संदेशों की बारी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, आपके मैसेजेस ले जाएंगे, पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: Hey guys! आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, और मैसेजेस के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। तो ले लेते हैं ये संदेश, और ये हमें आया है, जी हाँ, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से ये संदेश आया है हमें। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख का, और साथ में लिखते हैं स्मस राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार की ओर से संदेश है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र के अंदर मराठी लोक संगीत हमें बहुत भाता है और ये बहुत प्रचलित है। तो वाकई भी इनकी भी अपनी ही खूबसूरत होती है, यहाँ का नृत्य भी और संगीत वाकई लाजवाब है। और इन्होंने साथ में लिखा सांबाजी महाराष्ट्र के अंदर मराठी लोकगीत अच्छे लगते हैं। जी हाँ, बहुत प्यारे होते हैं, सब जगह की अपनी एक मिठास होती है क्षेत्र की। चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं। यह आया है हमें बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से। इनके साथ हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, के सूर्यदान खुराना जी। ये लिखते हैं कि हमें तो पंजाबी लोकगीत ही अच्छे लगते हैं और साथ साथ हरियाणवी लोकगीत भी अच्छे लगते हैं क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो दोस्त, अपने यहाँ के तो लोकगीत वाकई अच्छे लगते हैं पर कभी कभी आप दूसरों के भी सुनें तो उनमें भी एक बहुत प्यारी सी मिठास होती है। और अपने लोकगीत इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि हमें बचपन से सुनते हैं, अपनी माँ के मतलब मुंह से सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब है ना गुनगुनाते ही अपने बच्चों के साथ। तो उनके यूँ कहे कि सभी जो संस्कारों में भी गीत गाए जाते हैं ना, वो भी गाते हैं हम लोग। तो अगला संदेश ले लेते हैं। ये है, ये लिखते हैं हमें करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, शशि बालाजी। और ये लिखते हैं कि हमारे मेल को शामिल नहीं किया गया, क्या नाराज़ है? तो दोस्त, नाराज नहीं है बल्कि आपकी मेल को भी शामिल किया गया। जैसे जैसे सबकी बारी आ रही है तो हम संदेश लेते जा रहे हैं और अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है मधु किरण जी का, और इन्होंने बहुत ही प्यारे गीत की फरमाइश की, और इनके साथ है अनीता वर्मा दिल्ली से। और अगला संदेश है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़से और विनोद खड़से जी का। और ये मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं अनु बड़जात्या, शमशुल खान, अनुराज बेनारा। ये लिखते हैं महाराष्ट्र का लावणी लोकगीत हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे दिल के करीब है, और बहुत ही प्यारे गीत की भी इन्होंने फरमाइश की है। और अगला जो संदेश है वो भी ले लेते हैं। ये हमें आया है, ये है ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगा वाला चौक, गोरैया जालंधर से। इनका संदेश है, संदीप मक्कड़ जी भी इनके साथ में है। लिखते हैं हमें डोगरी सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, लोक संगीत और आकाशवाणी जम्मू पर सुनते भी हैं हम, और फरमाइश भी करते हैं। तो वाकई

बहुत अच्छी बात है। और डोगरी गीत तो मुझे भी पसंद है क्योंकि मुझे डोगरी समझ आती है। यूँ कह कि हम कहते हैं ना कि उस क्षेत्र की भाषा तो समझ आती है ना जहाँ आप बिलोंग करते हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद है। बल्कि मुझे तो तकरीबन सभी बहुत पसंद है। हाँ क्या कहते हैं, और जी हाँ, अपने यहाँ के क्षेत्र के तो सभी को गीत पसंद ही होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगला संदेश ले लेते हैं। यह आया है दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा जी का। ये लिखते हैं नमस्ते। तो दोस्त आपको भी नमस्ते। और ये हमारे साथ जुड़े हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक जी। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से, सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

कभी आपने सुना गंगीत नवराई माझी, एक ऐसा गीत जिसमें महाराष्ट्र के लोक संगीत की जीवंत झलक दिखाई देती है। इसकी धुन लय और पारंपरिक वाद्यों का सुंदर मेल मराठी लोक संगीत की उस विरासत को सामने लाता है जो उत्सव, विवाह और पारिवारिक जो खुशियाँ होती हैं उसका अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, भारत के यूँ कहें कि हर प्रदेश में विवाह से जुड़े अपने अपने लोकगीत हैं। कहीं बन्ना बन्नी गाई जाती है, कहीं सोहर, कहीं गिद्दा और बोलियाँ, तो कहीं कई सारे पारंपरिक विवाह गीत होते हैं। इन गीतों में केवल संगीत ही नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही भावनाएं, परंपराएं और सामाजिक रिश्तों की मिठास समाई होती है। हिंदी सिनेमा में इन्हीं लोक धुनों और लोक भावों को नए संगीत और नए अंदाज के साथ प्रस्तुत किया गया ताकि देश के कोने कोने तक हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पहुँचा सकें और कहीं ना कहीं हम भी अपने इन लोक संगीतों को सुने तो अपने आप को से साथ जोड़ सके, तरोताज़ा हो सके, अपनी धरती अपनी जगह से जुड़ सके। तो चलिए, बहुत सी बातें और भी होंगी और बहुत प्यारे प्यारे गीत आप भेज रहे हैं और मैसेजेस भी तो आपके ले लेते हैं। तो ये हमें जो मैसेज आया है, ये हमें आया दतरंगी से, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। ये लिख रहे हैं, कार्यक्रम पसंद आ रहा है, आप हमारा मेल शामिल करें या ना करें, हम सुने बिना नहीं रह सकते। तो दोस्त, आपके मेल को भी शामिल किया क्योंकि हम भी आपके मैसेजेस को लिए बिना नहीं रह सकते। चलिए अगला ले लेते हैं संदेश। ये आया है चंडीगढ़ से सतीश शनेजा जी का। ये लिखते हैं, हम पंजाबी हैं, पंजाबी लोकगीत अच्छे लगते हैं, मेरे हिमाचल में अक्सर आना जाना रहता है जिसमें हिमाचली भाषा बोलनी भी आ गई है। अब इधर के लोकगीत और नृत्य भी पसंद है। जनवरी में भारी स्नोफॉल में मैंने एक हिमाचली लोकगीत पर नृत्य भी किया था जो सभी को बहुत पसंद आया और कोई कह नहीं सकता ये इंसान पंजाबी है। तो दोस्त, बहुत हद तक क्यों कहें कि हिमाचल की जो एक बेल्ट है उससे पंजाबी के कई शब्द हैं मिलते हैं तो समझ भी आते हैं और आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपने नृत्य भी किया, बहुत अच्छी बात है। दोस्त, देखा ना कि अपने यहाँ का ना भी हो के भी लोक संगीत दूसरे का भी था तो आप थिरक ही उठे ना, तो लोक संगीत में बात ही ऐसी होती है। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया पांडर कबड़ा से, अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडक का, और इनके साथ बल्ला शाह से हैं सूरज लोंढे, प्राची लोंढे, एकलव्य लोंढे, और लिख रहे हैं, आपका हर पल खुशियों से भरा। तो दोस्त, आपका भी और सभी का पल यूँ कह कि ज़िंदगी बहुत खुशियों से भरी हो। और अगला संदेश आया झज्जर हरियाणा से, बिट्टू भाटिया, जीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का। ये लिख रहे हैं, कोई भी गीत में शामिल कर लो। तो दोस्त, हमारे दोस्तों की पसंद भी लाजवाब है। और अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है हमें जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, आशपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी से, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा कारूनी हांसी से, सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू और डब्बू। और अगला जो संदेश है ये हमें आया है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू जी का। और ये हमें संदेश आया है, ये है हमारे साथ सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। और हमारे साथ जुड़े हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक जी। और ये हमारे साथ जुड़े हैं गांव फरासी, जिला हिसार से हैं राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। ये लिखते हैं, लोकगीत चाहे किसी भी राज्य क्षेत्र के हों बहुत मीठे व प्यारे होते हैं। लोकगीतों में उस जगह की बोली, वेशभूषा और खान पान और की मिट्टी की खुशबू जो होती है, बिल्कुल दोस्त। और यूँ कहें कि हमारे दिलों से जुड़े होते हैं और ये लोग मतलब जो दिनों ज़िंदगी में हमारे होता है उन सारे संस्कारों से भी जुड़े होते हैं और कहीं ना हम कनेक्टेड फील करते हैं लोकगीतों के साथ। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है आदर्श नगर मलौत से हैं, पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, यूए शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। ये लिख रहे हैं कि इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। तो दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला संदेश लिख लेते हैं, ये आया है हमें महाराष्ट्र एटा से, है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारशी का। और

इनके साथ किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुड़े हैं हमारे साथ जुबेर अली खान, सबीहा अंजुमन खान जी, और ये संदेश लेते हैं। यह है कोह का भिलाई से उत्तम सिंह झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष झंगेल और नंदिनी झंगेल का। धमधमा ग्राम सुखरी कला से अमित झंगेल, शगुन झंगेल, शारुषि ओशिका, आदित्य झंगेल और अंजलि झंगेल का। ये लिखते हैं, हमें तो छत्तीसगढ़ी लोकगीत ही पसंद है, विलुप्त होते हुए बोली भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सुनते हैं। और बहुत से आकाशवाणी के फेसबुक में हम छत्तीसगढ़ में ही समीक्षा करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और एक और प्यारा सा गीत आप सबकी पसंद पर सुन लेते हैं, दिल्ली 6 फिल्म से। ये बहुत प्यारा सा गीत है ना, लोकगीतों पर आधारित।

0: दोस्तों, ये भारतीय लोक संगीत की उस परंपरा का सुंदर उदाहरण है जहाँ जीवन के अनुभव रिश्तों की मिठास और नई जिम्मेदारियों को सहज शब्दों और सरल धुनों में पिरोया गया है। इस गीत की जो प्रेरणा है ना, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत से ली गई है और जिसे वर्षों से लोक गायक अपनी विशिष्ट शैली में गाते रहे हैं। तो यही तो लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता है, ये किसी कलाकार या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहते। ये लोक जीवन से जन्म लेते हैं, लोगों की आवाज़ सुनते हैं और समय के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। और जब हिंदी सिनेमा इन्हें अपनाता है तो इन लोक दिनों को एक नया मंच, नया श्रोता वर्ग और वैश्विक पहचान मिलती है। जी हाँ, सारी दुनिया में मशहूर होते हैं, लेकिन इनकी मीठी सी जो सहंदी महक है और आत्मीयता होती है वो कहीं नहीं मरती, क्योंकि सभी को जो क्षेत्र के होते हैं वो गीत पसंद आते हैं और वो अपने अपने अंदाज में उन गीतों को जब बॉलीवुड में सुनते हैं तो फिर अपने अंदाज में अपने वहाँ के शैली में गाते ही हैं, गुनगुनाते ही हैं। चलिए, बहुत सी बातें हो गई हमारी लोकगीतों को भी लेकर और संदेश भी ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। अब वक्त होते जा रहा है, हमारा खत्म होने को आ रहा है, तो चलिए ये संदेश आया है कृष्णा कॉलोनी हांसी से, है सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू का जो संदेश है वो हमें आया है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, है रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन, ये लिखते हैं हम छत्तीसगढ़ से हैं। हमें छत्तीसगढ़ के राष्ट्रगीत अरपा पैरी के धार हमें पसंद है। बहुत बढ़िया बात है दोस्त। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है, ये संदेश हमें आया है सतप्रकाश सनोठिया का, रोहिणी दिल्ली से लिख रहे हैं कि इन्हें भी लोकगीत बहुत पसंद है। और अगला संदेश ले लेते हैं, अगला संदेश हमें आया है सहारनपुर से, आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग जी का। और श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, बानो एलिजा, नायाब लड्डू का ये जो मैसेज है, और ये लिखते हैं कि इन्हें राजस्थानी लोकगीत अच्छे लगते हैं। तो दोस्त, बहुत बहुत मधुर होते हैं और इनके घूमर और सारे गीत ना बिल्कुल एक तरह से ओस से भी भरे होते हैं, पूरा कहते हैं ना जोशीले होते हैं और एक तरह से सबको ही बहुत प्यारे लगते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं, आया है कस्बा बलराम से, इशाद अहमद शाह और जहां बेगम का, इनके साथ है मरियम और जैनब। और अगला संदेश यह है डीबी राणा का, नेहरू विहार दिल्ली से, ये लिखते हैं कि लोकगीत भारतीय संस्कृति की पहचान है, हिंदी फिल्मों में लोकगीतों को बेखूबी नई पहचान दी है बहुत अच्छी तरह से। और ये संदेश हमें, जी हाँ ये संदेश हमें आया है परंतु ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है दाऊद सराय सहारनपुर से, अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्कर साबरी और ज़रीफ अंसारी का। और दोस्त, अब वक्त हो चला है कि हम मैं आपसे लूँ इजाज़त, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम को यहीं संपन्न करना पड़ेगा। और बहुत से हमने मैसेजेस लिए हैं, कुछ छूट भी किया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। और दोस्त, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपसे जुड़े रहते हैं और संदेश पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है सच में आप हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं और सुनते हैं कार्यक्रम को, तो वाकई अच्छा लगता है। तो चलिए, अब मुझे यानी शोभा शर्मा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार। और यूँ कहें कि मैंने तो विदा ले लिया, नमस्कार भी कह दिया, परंतु एक प्यारा सा गीत आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप सबकी पसंद पर ये गीत है दिल से फिल्म का।
1: जिया चले जा चले

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 11 बजने को है स्टूडियो की घड़ी में और अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार होंगे, ठीक उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में 2 नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 तथा पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 परीक्षणों से इसरो ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल स्तर का

नेतृत्व करेंगे। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जा रहे हैं। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इसका उद्देश्य होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच ने जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, हमारी बेड़िया प्रायोजित कार्यक्रम है, तो सुनते हैं ये कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।

श्रोता हूँ, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक बहू है जिसका नाम शशि है। शशि एक गरीब परिवार की है। उनके हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। शशि अपने नाम की तरह ही बहुत शांत है। शशि अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती है। हर छोटे बड़े काम वो बहुत लगन से करती है। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। उसकी सास शशि को सम्मान नहीं देती है जो एक बहू को मिलना चाहिए। बस अपनी बड़ी बहू को उसकी गरीबी के ताने सुनाती रहती है। सास और ननद की सोच उस वक्त ज्यादा गिर गई जब शांति देवी अपने छोटे बेटे की शादी एक अमीर परिवार में कर देते हैं। उनका छोटा बेटा एक सरकारी नौकरी पर काम करता था और अच्छे पैसे कमाता था, इसलिए शांति जी और उनकी बेटी अंजलि अपने छोटे बेटे विजय और छोटी बहू की बड़ाई करते नहीं थकती थी। घर का सारा काम शशि यानी बड़ी बहू करती थी। छोटी बहू तो बस सारा दिन फोन और किटी पार्टी और घूमने फिरने में लगी रहती, क्योंकि वह एक अमीर घर से थी तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। और विजय ने भी बोल दिया था कि मेरी बीवी को काम करने की आदत नहीं है और ज्यादा परेशानी होती है तो एक नौकरानी रख लो। तब शांति जी ने कहा, नौकरानी की क्या जरूरत है, घर में काम ही कितना है, जो काम वाली रखे, पहले भी तो घर के काम होते थे, अब भी हो जाएंगे, सिर्फ एक छोटी बहू ही तो ज्यादा हुई है घर में, एक के आ जाने से काम ही कितना होता है, जो अलग से काम वाली रखे। सास और पति के शय पाकर तनुजा अब और भी बेफिक्र हो गई थी और कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हर काम के लिए दो टुक जवाब दे देती थी। पहले की तरह शशि काम करती रही, किसी से कोई शिकायत ना करती। श्रोताओं, आपको अमीर और गरीब के भेदभाव को दर्शाने वाली कहानी को सुनाने के लिए

0: हेलो दीदी, कैसे हो आप?
1: हेलो भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। दीदी, कल आपके भतीजे का जन्मदिन है, आप आ सको तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
1: पर भाभी, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, आपके जिया जी को कुछ जरूरी काम है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी।
0: ठीक है दीदी, लेकिन कोशिश करना आने की।
1: देखती हूँ। अच्छा भाभी, बाद में बात करती हूँ, थोड़ा काम है।
2: थोड़ी देर में अंजलि अपनी माँ को फोन करती है वहाँ के बारे में जानकारी लेने के लिए कि घर में कल का क्या प्रोग्राम है।
1: हेलो माँ, कैसी हो आप? घर में सब ठीक है ना?
3: हाँ बेटा, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना?
1: माँ, बड़ी भाभी का फोन आया था, बोल रही थी चीकू का जन्मदिन है, जरूर आना। माँ, क्या कोई बड़ी पार्टी रखी है?
3: अरे नहीं बेटा, ये कहाँ बड़ी पार्टी रखेंगे, बस घर में ही केक काटेंगे। तू रहने दे, फालतू में आने जाने का खर्चा ही होगा।
1: हाँ माँ, इसलिए मैंने भी बहाना बना दिया कि आपके जिया जी को जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी।
3: ठीक किया बेटा तूने।
1: हाँ माँ, मेरा भी बिल्कुल भी आने का मन नहीं है, कुछ लेते देते तो है नहीं, बस एक शगुन का लिफाफा पकड़ा देती है और बस खाना खिला देती है। पिछली बार जो साड़ी दी थी वो आउट ऑफ फैशन थी, इससे अच्छा तो वो ना ही देती।
3: तुम ठीक कहती हो बेटी, है भी तो गरीब घर की, उसके घर से तो कुछ आता नहीं, तो क्या पता होगा लेन देन क्या होता है, तू रहने ही दे आने को।
2: और दोनों फोन रखते हैं। अगले दिन चीकू का जन्मदिन बुआ के इंतजार में चला गया, परंतु बुआ नहीं आई। शशि सारे दिन काम में लगी रहती है पर कभी किसी से शिकायत नहीं करती। और एक दिन शशि की माँ की तबीयत खराब हो गई, शशि अपने मायके चली गई और शांति जी ने अपनी छोटी बहू को काम करने के लिए कहा तो तनुजा ने साफ साफ मना कर दिया।
3: बेटा तनुजा, एक कप चाय बना लो और हाँ, नाश्ता भी बना देना।
4: क्या मैं और नाश्ता बनाऊंगी? ये सब मेरे से नहीं होगा।
3: अरे ये क्या बात हुई, तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा?
4: वो मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं बनाऊंगी, बस कह दिया।
5: अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है?
3: अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने तो बस तनुजा को इतना ही बोला कि नाश्ता बना लो, पर ये तो मुझे ही धमकाने लगी।
4: देखो विजय, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये काम वाम मैं नहीं करने वाली।
5: अरे माँ, आप इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? माँ, तनुजा नाश्ता नहीं बनाना चाहती तो क्या हुआ, आप भी तो बना सकती हो ना।
3: क्या मैं इस उम्र में काम करूं?
5: तो क्या हुआ माँ? और माँ, अगर तुम नहीं बना सकती तो एक काम वाली रख लो, पर ये चिक चिक बंद करो प्लीज।
3: ठीक है बेटा।
2: कुछ दिन बाद जब शशि अपने मायके से घर वापस आती है तो सास को काम करते हुए देखती है। जल्दी से अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज करके अपनी सास शांति देवी को मना करती है और खुद सारा काम करने लगती है। सास ये सब देखकर और अपने द्वारा किए गए बर्ताव जो उसने आज तक शशि के साथ किया था उसके लिए शर्मिंदा होती है। अगले महीने शांति जी के छोटे बेटे विजय और बहू तनुजा की शादी की पहली सालगिरह थी। ननद अंजलि बहुत उत्साहित थी कि उसके छोटे भाई और भाभी जरूर कोई बड़ी पार्टी देंगे, परंतु अभी तक उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया था। अंजलि ने खुद ही अपनी माँ को फोन किया।
1: हेलो माँ, तुम कैसी हो? माँ, छोटी भाई और भाभी की सालगिरह आ रही है, क्या घर में पार्टी नहीं होगी?
3: पता नहीं बेटा, पर मैंने सुना तो था, वो फोन पर होटल बुक करने की बात कर रहे थे।
1: अच्छा, लगता है कोई सरप्राइज पार्टी रखेंगे, मैं तो जरूर आऊंगी। मैंने भाई के लिए शर्ट और भाभी के लिए सूट लिया है गिफ्ट के लिए।
2: बिना बुलावे का इंतजार किए अंजलि छोटी भाभी की सालगिरह के लिए अपने मायके पहुंच जाती है और तनुजा के कमरे में जाकर सालगिरह की बधाई देने के लिए जैसे अंजलि ने तनुजा को गले लगाना चाहा, उसने हाथ से रुकने का इशारा किया।
4: अरे अरे दीदी, अभी अभी तो मैं बाल सेट करवा के आई हूँ।
1: ओ सॉरी सॉरी भाभी, आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाभी, आप लोगों ने तो बुलाया ही नहीं, लेकिन मैं ही आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए आ गई।
4: थैंक्स दीदी, वो हमने बाहर का प्रोग्राम रखा था तो किसी को बुलाया नहीं, थोड़ी देर में आपके भाई आने वाले हैं, फिर फिर हम दोनों होटल के लिए निकल जाएंगे।
1: हम दोनों? मतलब आप लोगों ने कोई पार्टी नहीं रखी है?
4: दीदी, पार्टी तो रखी है, लेकिन हमने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बुलाया है।
1: और फैमिली?
4: अरे

0: लेना और हमें आने में देर हो जाएगी।
1: तनुजा, तुम रेडी होगी या नहीं? जल्दी करो।
0: हाँ, मैं रेडी हूँ। पर भाई,
1: क्या हुआ अंजलि?
2: भाई, पार्टी तो घर में होनी चाहिए, या सभी को यहीं बुला लो।
1: अंजलि, क्या कह रही हो तुम?
2: भाई, बड़ी भाभी और भैया भी तो घर में ही पार्टी करते हैं और पूरी फैमिली एंजॉय करती है।
1: अरे, पूरा साल फैमिली के साथ ही तो रहते हैं, और एक दिन हम बाहर पार्टी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? और हाँ अंजलि, बने बनाए मूड को खराब मत करो।
2: क्या, मैं आपका मूड खराब कर रही हूँ? बड़े भाई भाभी ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं।
1: अंजलि, तुम जाओ, नहीं तो हमें पार्टी के लिए देर हो जाएगी।
2: ठीक है, मैं जा रही हूँ। और अंजलि सोचने लगती है और माँ के पास जाकर सारी बात बताती है कि किस प्रकार छोटे भाई और भाभी ने फैमिली के साथ शादी की सालगिरह ना मनाकर दोस्तों के साथ होटल में जाकर पार्टी करना सही समझा।
0: माँ, बड़ी भाभी ने तो आज तक परिवार के बिना कभी कोई सालगिरह और कोई जन्मदिन नहीं मनाया। केक भी माँ के हाथों से ही कटवाती है और कितना आदर और सम्मान से बुलाती है। और एक हम है जो उसके बुलाने पर नखरे करते हैं। और छोटी भाभी ने कितनी सहजता से बोल दिया, फैमिली के बीच कंफर्टेबल फील नहीं होगा।
3: अरे बेटा, तेरी बड़ी भाभी ना हो तो कोई हमें रोटी भी ना दे, और एक हम है जो उसकी कदर ही नहीं करते।
0: हाँ माँ, तुम ठीक ही कहती हो। आज मैं भी अपनी गलती और बड़ी भाभी के साथ किए हुए व्यवहार से शर्मिंदा हूँ।
4: और तनुजा और छोटा भाई विजय भी तैयार होकर होटल के लिए चले जाते हैं। शांति जी और अंजलि उनका मुंह देखते रह जाते हैं। कुछ समय बाद ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ जाता है, लेकिन उनके गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। तभी बड़ी बहू शशि ने आकर पूछा,
5: दीदी, माँ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना ठंडा हो रहा है।
3: बहू, वो मेरे पेट में ना गैस बन रही है, मैं ये भारी तला हुआ खाना नहीं खा सकती। बेटा, तुम मेरे लिए दलिया बना दे।
5: जी माँ जी, ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ।
0: भाभी, मैं भी दलिया ही खाऊंगी, मेरे लिए भी दलिया बना दो। ये खाना बहुत तीखा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा।
4: शशि मुस्कुराते हुए रसोई में गई और दलिया बनाकर ले आई। आज वो दलिया दोनों माँ बेटी को बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि उसमें शशि का अपनापन और सम्मान जो मिला था।

श्रोताओं, हम किसी की भावना और अपनेपन को दौलत से नहीं माप सकते। शशि गरीब घर की जरूर थी, परंतु उसमें सबके लिए सम्मान की और आदर की भावना थी। हमें कभी भी किसी को उसके पैसे या पोशाक देकर सम्मान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके व्यवहार और उसके अच्छे कार्य को देखना चाहिए। श्रोताओं, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।

855। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527444999।

सबरस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संगीता पंत की आवाज़ में ये गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सलीम अहमद से सितार वादन, राग है गुर्जरी तोड़ी। तो सुनते हैं ये कार्यक्रम।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सलीम अहमद से सितार वादन, राग था गुर्जरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे नौशाद अहमद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।

0: बारह बजने को हैं, अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में होंगे, फिर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी

केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है, जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, जीवन में बदलाव के लिए कीजिए एक प्रयोग। अगर किसी कारण आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो एक दिन ध्यान में निकालें। अपने जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए ध्यान सबसे उत्तम है। ध्यान से मन का बोझ भी कम होने लगता है, मगर इसके लिए एक ही जगह पर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान तो कर्म करते हुए भी किया जा सकता है। इसके लिए एक एक काम को बेहद तसल्ली के साथ करते जाना है। इससे आपको एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगेगा। अपने घर में, काम पर, खाना खाते हुए और अन्य कार्यों में थोड़ा सा धीरे हो जाएं। जरा भी जल्दीबाजी ना दिखाएं। इससे एक बहुत बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने उन विचारों को बदल सकते हैं जो आपको बार बार परेशान करते रहते हैं, आपको अक्सर बेचैन करते रहते हैं, आपको पीड़ा देते हैं। जब हम जल्दीबाजी को त्याग कर सुकून और आराम की अनोखी दशा से जुड़ते हैं, तो ये तरीका हमें अपने भीतर की गहराई को जानने और दुनिया से जुड़ने का एक अनमोल अवसर देता है।

दोस्तों, सुबह घास पर चलने के भी होते हैं बेहद फायदे। ये तो सभी जानते हैं कि सुबह का समय ध्यान और शारीरिक गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप सुबह में ऐसे घास पर चलेंगे तो सिर्फ एक सुकून ही नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेंगे कई सारे फायदे। जिस तरह की आपको तनाव कम होकर अच्छी नींद आती है, सुबह चलने से स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, रक्त संचार में सुधार और रक्त का प्रभाव ठीक से होता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का प्रभाव मिलता है। ये पैरों में दर्द, सुन्न होना और अकड़न जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा विटामिन डी भी मिलता है, क्योंकि सुबह की हल्की धूप में चलने से विटामिन डी प्राप्त होता है और जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यानी कि 15 से 30 मिनट तक काफ़ी फायदेमंद होता है विटामिन डी लेना। सुबह घर से जब आप निकलते हैं, तब जब घास पर ओस की बूंदें और सूरज की किरणें हल्की हों, उस समय आप अपना चलना शुरू कर सकते हैं। ये अच्छा माना जाता है। ना कितनी आसान आप एक्सरसाइज करें या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिसे आप रोज करना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे भी आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं। तो आप चाहें तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटे आप सुबह घास पर चलें और ढेरों सारे फायदे भी लें।

दोस्तों, रिश्तों की चमक को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि रिश्ता एक खूबसूरत शब्द, एक ऐसा एहसास है जो दिल से जुड़ा होता है और इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश होता है। ये खुशी की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। ये एक मजबूत, आकर्षक और निजी जुड़ाव की भावना है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो सभी हालातों में एक साथ हो, यानी दुख और सुख में, दोनों में। रोज़मर्रा की छोटी छोटी कई सारी बातें हमारे रिश्तों में चमक ला सकती हैं। जैसे कई बार शब्दों से ज़्यादा बोलने का असर पड़ता है। हमेशा सपाट, अपेक्षापूर्ण बोलना भावनात्मक दूरी का संकेत है। कम आवाज़ में धीरे धीरे बातचीत करना आपसी व्यवहार को दर्शाता है। शोध कहते हैं, रिश्तों में शब्दों के अलावा शरीर के कई दूसरे संकेत भी मायने रखते हैं। बार बार एक दूसरे को देखते हुए बात करनी या ध्यान से बातचीत को सुनना एक दूसरे के लिए सुरक्षा, सम्मान को दिखाता है। एक दूसरे की छोटी बड़ी ज़रूरत समझना आपसी देखभाल दिखाता है और सहनशीलता का भाव भरोसे को बढ़ाता है। रिश्ता एक सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें मानसिक और आंतरिक दोनों ही तरह की सुकून प्रदान करता है, जिससे हम आसानी से जीवन जीने लगते हैं। इसीलिए रिश्तों को हमेशा सहेज कर संभाल कर रखिए और इस तरह आपके रिश्तों में हमेशा चमक जो है वो बरकरार रहेगी।

दोस्तों, वैसे तो बारिश का मौसम प्रकृति और सुंदरता बिखेरता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन इस मौसम में खास तौर पर हवा में नमी बनी रहती है। साथ ही भीगने से खुद को हमेशा बचाना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि मौसम हरे भरे नज़ारे के अलावा बीमारियां भी लेकर आता है। बारिश की बूंदों में कम से कम भीगने का प्रयास करें। इस मौसम में कब बारिश हो जाए ये किसी को भी पता नहीं होता, और ऐसे में जब घर से निकलें तो छाता, रेनकोट जैसी चीज़ों को अपने साथ ले जाना ना भूलें। बरसात में जब भी धूप निकले, बिस्तर को धूप सुखाएं और नमी के कारण उसमें पैदा हुए कीटाणु भी मर जाएंगे। लाख कोशिशों के बावजूद अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो तुरंत गीले कपड़े बदलें और फिर तुलसी, लौंग और काली मिर्च युक्त चाय पिएं, अन्यथा सर्दी, खांसी, जुकाम होने की आशंका बनी रहती है। अपने जूते, चप्पल या सैंडल भीग जाने पर घर पर आते ही खोलकर दीवार के सहारे खड़े कर दें ताकि पानी निकल जाए, और फिर धूप निकलने के बाद इसे सुखा लें। इस मौसम में साधारण जूते, चप्पल या सैंडल ही पहने। इस मौसम में कपड़े मुश्किल से सूखते हैं, हवादार स्थान पर कपड़े को सुखाना ज़रूरी है, जैसे कि तौलिया, चादर और जो हमारे यूज़ के कपड़े होते हैं, उन चीज़ों को सुखाना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह पहने जाने वाले कपड़ों में भी हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़ों का चयन करें। और इस मौसम में घर का भी निरीक्षण ज़रूर करते रहें कि कहीं से अगर पानी टपक रहा हो तो तुरंत उसे रोकने की व्यवस्था करें, या घर के आसपास जो भी आपको नज़र आए कहीं पानी रुका हुआ या जमा हुआ हुआ तो वो भी आप उसे ठीक करा लें, क्योंकि इससे बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा कई सारी बातें हैं जो इस मौसम में ध्यान देने की होती हैं। तो जब भी आप बारिश में भीग जाएं तो इस तरह का आप कभी भी नुकसान ना उठाएं, क्योंकि बारिश में भीगने से भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो बारिश का आनंद तो आप लें, लेकिन उसके अलावा अपने स्वास्थ्य का भी रखें ख्याल।

दोस्तों, आप हमें मेल कर सकते हैं। आप अपने विचार और सुझाव लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

दोस्तों, बात करते हैं कुछ भारत के राज्य के सबसे साफ गांव की। स्वच्छता की मिसाल पेश कर रहा है प्लास्टिक युक्त और ख़ास तौर पर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल वाले इस गांव की खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहां आते हैं। ये है मावलिन नांग गांव। दुनिया भर में भारत का एक गांव अपनी साफ सफाई के लिए काफ़ी फेमस है, यानी मशहूर है, जिसे देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस गांव में एक भी सफाई कर्मी नहीं है और इस छोटे से गांव की दुनिया भर में तारीफ होती है। ये छोटा सा गांव पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। करीबन 22 साल से ये गांव सफाई के मामले में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। ये गाँव कैसे सबसे साफ है, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। यहाँ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग मिलकर अपने गांव को साफ रखते हैं। लोग कहीं भी कचरा नहीं फेंकते और हर जगह आपको बांस से बने डस्टबिन दिखाई देंगे। मेघालय में स्थित इस छोटे से गांव में प्लास्टिक का इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक है। यहाँ के लोग पर्यावरण की रक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं और प्लास्टिक की जगह वे बांस और दूसरे प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि गाँव में हरियाली और स्वच्छता दोनों बनी रहती है। हर घर के बाहर और गलियों में सफाई का खास ध्यान रखा जाता है क्योंकि जैविक कचरे से लोग अपने खेतों के लिए नेचुरल खाद बनाते हैं। इस गांव के लोगों के लिए साफ सफाई सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। बच्चों को छोटी उम्र में ही स्वच्छता का महत्व सिखाया जाता है और स्कूलों में भी साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। ये गाँव अब एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस गांव को देखने आते हैं और यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, सुकून भरी जिंदगी, हरियाली और प्रकृति की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गांव में एक सफाई कर्मी नहीं है लेकिन फिर भी जहाँ आसपास सुंदर नज़ारे आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस गांव तक जाने के लिए पहले गुवाहाटी या शिलांग पहुँचना होगा और यहाँ से टैक्सी लेकर शिलांग होते हुए मावलिन नांग जा सकते हैं। शिलांग से दूरी करीब 80 से 90 किलोमीटर है और रास्ते में डावकी की खूबसूरत नदी भी आपको देखने को मिल सकती है, जो सफ़र को आपके यादगार बना सकती है।

और दोस्तों बात करते हैं अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें। क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और किस तरह करना चाहते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। व्यवसाय की सफलता के लिए आपका जुनून, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है, साथ ही कुछ बातों की भी होती है। सबसे पहले एक अच्छा व्यवसायिक विचार खोजें, अपने कौशल, रुचियां बाजार की ज़रूरत के आधार पर चुनें जो आपको पसंद हो। एक व्यवसाय योजना बनाएं जिसमें विवरण, लक्ष्य, वित्तीय योजना, मार्केटिंग रणनीति शामिल हो। व्यवसाय शुरू करने से पहले धन की व्यवस्था कर लें, चाहे वो आपकी बचत हो, लोन हो या फिर निवेश हो। अपने व्यवसाय को पंजीकृत करें, लाइसेंस परमिट लेना जरूरी है। एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाएं, मार्केटिंग करें, ग्राहक सेवा प्रदान करें, साथ ही लगातार निगरानी करते रहें। उद्योग के अन्य लोगों से संपर्क करें, सलाह लें, सहयोग करें और अपने व्यवसाय के वित्तीय पहलुओं को ध्यान से समझें। इन सभी बातों को समझकर आप व्यवसाय की दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6ठा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार

0: आज तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, फिल्म हम दोनों उस दौर की इकलौती फिल्म थी जिसमें नंदा और साधना 60 के दशक की टॉप अभिनेत्रियां एक साथ पर्दे पर नजर आई थीं। जब साल 2011 में इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को कलर करके सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया तो देवानंद ने नंदा को स्पेशल प्रीमियर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन नंदा ने मीडिया से दूर रहकर विजयानंद के निजी थिएटर केतनव में अपने परिवार के साथ फिल्म देखी थी।

श्रोताओं, बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। वडिंग खेड़ा से पंजाब से हमारे साथ हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन।

ध्यानवी द्वारा लिखे गए थे और संगीत जयदेव ने दिया था। अभी न जाओ छोड़कर और मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया जैसे सदाबहार गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं।

कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गुरमीत सिंह मीता, ये हमारे साथ जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल। सुर संगम रेडियो श्रोता ग्रुप गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, भावेश कुमार, सन्नी जैमिन कुमार जैन, हेतर

जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन। नावा जिला पटियाला पंजाब से जुड़े हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमंथ और मनु। पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन। गांधीनगर गुजरात से जुड़े हैं जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष, दीपल और उर्वशी। पिपरिया से हमारे साथ जुड़े हैं कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। श्रोताओं, फिल्म हम दोनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीन था जिसमें साधना यानी मीता अपने घर के मुख्य दरवाजे से देवानंद को अंदर खींच कर लाती हैं। शॉट के दौरान देवानंद ने यह कहकर आपत्ति जताई कि मुझे कोई ऐसे नहीं खींच सकता जैसे कुत्ते को पट्टे से पकड़कर ले जाते हैं। ये सुनकर विजय आनंद, जो फिल्म के असली निर्देशक और लेखक थे, इनको बहुत बुरा लगा क्योंकि देवानंद उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। वे गुस्सा होकर सेट से वार्डन रोड के एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने चले गए और पूरी शूटिंग रुक गई। बाद में देवानंद ने अपनी गलती मानी और उन्हें वापस सेट पर बुला लिया।

शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, ये जुड़े हैं पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़े हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। पीटीआई संसद मार्ग से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन। हम दोनों फिल्म का निर्देशन आधिकारिक तौर पर अमरजीत ने के नाम था, जो उस समय नवकेतन फिल्म्स के प्रचारक यानी पब्लिसिस्ट थे, लेकिन फिल्म के निर्देशन का पूरा काम वास्तव में देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद ने ही किया था। विजय आनंद ने अपने दोस्त अमरजीत को आगे बढ़ाने के लिए अपना नाम क्रेडिट में नहीं दिया। ऐसी दोस्ती को सलाम है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने ही वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला चोणवी खबर। सरकार ने कहा कि देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने सिर्फ एक महीने में भारतीय समुद्री फौज में 4 नए स्वदेशी समुद्री जहाजों को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क आवाजाई ते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रैस वे का उद्घाटन करेंगे। वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यूरोप नाल भारत की आर्थिक भाईवाली को मजबूत करने के उद्देश्य अज तो 17 जुलाई तक स्पेन, बेलजियम ते फिनलैंड के दौरे ते होंगे। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन ते कुवैत विच अमरीकी फौजी टिकाणे ते मिसाइल ते ड्रोन हमलों की जिम्मेवारी ली है। भारत ने लॉर्ड्स विखे इंग्लैंड खिलाफ एक महिला क्रिकेट टेस्ट मैच विच पकड़ मजबूत कर ली है। सरकार ने कहा कि देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने लिए सिर्फ एक महीने में भारतीय समुद्री फौज में 4 नए स्वदेशी समुद्री जहाजों को शामिल किया गया है। इन्हों नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी है, जिसन इस महीने की 11 तारीख को समुद्री फौज में शामिल किया गया है। उच्च स्वदेशी समगरी बने जहाज आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा निर्माण इको सिस्टम को मजबूत करते हैं। इस समुद्री सुरक्षा ते समुद्री आर्थिकता नूं हुलारा देण दे नाल नाल इक मोहरी समुद्री ताकत वजों देश दी स्थिति नूं मजबूत करदे ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क आवाजाई ते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ते उत्तर प्रदेश दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रैस वे का उद्घाटन करेंगे। 63 किलोमीटर तक फैलिया यह देश का दूजा सब तो लंबा एलीवेटिड कोरीडोर एक्सप्रैस वे है। यह देश का पहला एक्सप्रैस वे भी है जो स्वैचालित रोबोटिक मशीनरी की वरतों राही बनाया गया है। एक्सप्रैस वे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तैयार किया गया है। वाहनों की रफ्तार की निगरानी लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सिस्टम नाल लैस है। सहायता प्रदान करने लिए हर 2 किलोमीटर से एमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए ने। सुरक्षा नूं यकीनी बनाने लिए 24 घंटे काम करने वाले 2 कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए ने। यह एक्सप्रैसवे लखनऊ ते कानपुर विचकार सफर के समय नूं घटा के सिर्फ 35 तो 40 मिनट कर देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु विच अमोनिया गैस लीक घटना तो प्रभावित झारखंड के मजदूरां नाल संबंधित मुद्दे का नोटिस लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड के रामगढ़ जिले के सरकारी वकील संजीव कुमार अम्बस्ट वालों दायर पटीशन तो बाद अजिहा किया है। राष्ट्रपति सकत्रेत ने किरत ते रोजगार सकत्रां नूं तुरंत जरूरी कार्रवाई करने ते इस मामले ते रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिते ने। पटीशन विच झारखंड के प्रभावित मजदूरों की सुरक्षा वापसी दे नाल नाल वित्तीय सहायता, मुआवजे ते पुनर्वास की भी मांग की गई है। भारत ने कतर के साबक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के देहांत ते श्रद्धांजलि देने लई अज राष्ट्रीय सोग का ऐलान किया है। उन्हां दा कल देहांत हो गया सी। सोग दौरान देश भर दीआं उन्हां सारीआं इमारतां ते राष्ट्रीय झंडा अद्धा चुकिआ रहेगा जिथे राष्ट्रीय झंडा नियमित तौर ते लहराया जांदा है। अज कोई भी अधिकारित मनोरंजन प्रोग्राम नहीं आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साबक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के देहांत ते सोग प्रगट किया ते कहा कि वह एक दूरदर्शी नेता सन जिन्हां ने कतर नूं विकास ते खुशहाली दीआं नवीआं उचाईआं ते पहुंचाया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान विच कहा कि संसदी मामलों अते घट गिणती मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू भारत सरकार वालों सोग स्नेहा देने लई कतर जा रहे ने। सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय ने राष्ट्रीय सेहत खोज नीति दे खरड़े ते सुझाव मंगे ने। इस दा उद्देश्य भारत दे सेहत खोज वातावरण नूं मजबूत करन ते मार्गदर्शन देने लई एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना है। यह नीति एक भरोसेयोग, समावेशी, आत्म निर्भर अते प्रभाव मुखी सेहत खोज प्रणाली नूं उत्साहित करन दी कोशिश है जो जनतक सेहत जरूरतां प्रति संवेदनशील अते जवाबदेह होए। खरड़े विच एक राष्ट्रीय सेहत खोज एजेंडा बनाउण दी भी तजवीज़ है। मंत्रालय ने कहा है कि खरड़ा नीति वख-वख हिस्सेदारां नाल व्यापक सलाह मशवरे तों बाद अते उन्हां दे सुझावां अते सिफारशां नूं शामिल करके तैयार कीती गई है। मंत्रालय ने 27 जुलाई तक टिप्पणियां अते सुझाव मंगे ने। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @ANU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ANU-AIR ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਪੇਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਸਪੇਨ ਜਾਣਗੇ। 14 ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਥੇਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲੋਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਪਾਰ ਗੋਲਮੇਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ 16 ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਪਾਰ ਗੋਲਮੇਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ

0: तमिलनाडु में अमोनिया गैस के रिसाव से मुतासिरा झारखंड के कारकुनों के मामले का नोटिस लिया है और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। वियतनाम में किश्ती के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों के जसदे खाकी आज रात वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाए जा रहे हैं। ईरान ने अपने फौजी ठिकानों पर अमरीका के हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दुन, बहरेन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर हमले किए हैं। और ख्वातीन क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर मेजबान इंग्लैंड भारत के साथ तारीखी वाहिद टेस्ट मैच में आज अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत के तायुन का अमल या किसी फर्द को गैर मुल्की करार देने की कार्रवाई मुनसिफाना होनी चाहिए और इसमें अदालती उसूलों से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत आलिया ने 27 अफराद की दाखिल करदा दरख्वास्तों की समाअत करते हुए यह बात कही जिन्हें आसाम में गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल ने गैर मुल्की करार दिया था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने 27 केसों में गुवाहाटी हाईकोर्ट और गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल के अहकाम को रद्द कर दिया। अदालत आलिया ने हिदायत दी है कि मुतालिका ट्राइब्यूनल की जानिब से इन केसों की दोबारा समाअत होने तक दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ डराने धमकाने की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तशकील दी गई खसूसी जांच टीम SIT को हिदायत दी है कि वो अपनी तहकीकात के बारे में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने उन दरख्वास्तों पर मरकजी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किए हैं जिनमें अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए एहतियात में मुबैना खुर्दबुर्द की तहकीकात CBI से कराने की अपील की गई है। इससे कबल उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दरख्वास्त पर 13 जून को 3 अरकान पर मुश्तमिल SIT तश्कील दी थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत के दरख्वास्त गुजार संजीव कुमार अम्बाष्ठा की जानिब से एक उजरदारी दाखिल किए जाने के बाद तमिलनाडु में अमोनिया गैस लीक में मुतासिरा झारखंड के वर्करों के मामले का नोटिस लिया है। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने रोजगार और मेहनत के सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो फौरी जरूरी कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई के सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब हम जहद तरक्की से हर शहरी की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली यकीनी हो जाती है तो इससे मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार मिलती है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क इस बायस तरगीब जज्बे के साथ भारत की सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलंबिया में मुनक्किदा 56वें बैन अल-अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने का तमगा जीतने पर भारतीय दस्ते को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाबी से मुल्क की युवा शक्ति की बेपनाह सलाहियत की अक्कासी होती है। सरकार ने कहा है कि मुल्क में ही तैयार किए गए नए सिलसिले के 4 बहरी जंगी जहाजों को सिर्फ 1 महीने में भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है ताकि मुल्क के बहरी दिफा को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस सिलसिले के तहत INS महिंद्रा गिरी को इस महीने की 11 तारीख को बहरिया में शामिल किया गया है जो मुल्क में ही डिजाइन किया गया नीलगिरी जुमरे का स्टेल्थ फ्रिगेट है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय बहरिया ने पिछले महीने की 21 तारीख को मुल्क में ही तैयार किए गए 3 जंगी बहरी जहाजों को अपने बेड़े में शामिल किया था। इनमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे शामिल है। इन जंगी जहाजों को फजाई शिकन, जमीनी शिकन और आबदोज शिकन जंगी जहाज साजो सामान समेत मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A नए सिलसिले के 7 गाइडेड मिसाइल जंगी बहरी जहाज बनाने का भारतीय बहरिया का जदीद तर्ज का स्टील्थ फ्रिगेट प्रोग्राम है। ये जंगी जहाज बहरिया की कार्रवाई से मुतालिक तमाम शोबों में भरपूर अंदाज से कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं। इन जहाजों को बेशतर मुल्की वसाइल से तैयार किया गया और ये आत्मनिर्भर भारत के नजरिए की अक्कासी करते हैं और इनसे मुल्क के दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इकोनिज़ाम को तकवियत मिलेगी। इन जंगी जहाज़ों से बहरी सिक्योरिटी में इजाफा होगा, बहरी मईशत को तकवियत मिलेगी और एक सरकर्दा बहरी ताकत के तौर पर भारत की पोजीशन मुस्तहकम होगी।

0: अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वियतनाम में फूकोक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूबने के हादसे में मारे गए 15 भारतीय सयाहों के जसद खाकी को वियतनाम एयरलाइंस की परवाज VNN 979 के जरिए आज हो ची मिन्ह शहर से भारत वापस लाया जाएगा। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये परवाज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे हो ची मिन्ह शहर से रवाना होगी और तवक्को है कि भारतीय वक्त के मुताबिक ये परवाज रात 9:35 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। 63 किलोमीटर तवील 6 लेन वाला लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे तवील सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर होने के साथ साथ मुल्क का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे भी है जिसे ऐसी तामीराती टेक्नोलॉजी से तामीर किया गया है जो ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट मशीनों पर मबनी है। बिहार में वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुनक़्क़िदा एक तकरीब में बिहार हेली टूरिज्म और फिजाई खिदमात की स्कीम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि इस स्कीम का आगाज रियासत में सियाहत को बेहतर बनाने और बिहार में कनेक्टिविटी में इजाफा करने के लिए किया गया है।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शो केस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके, बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो, तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का तीसरा मरहला हो रहा है। रियासत के वज़ीर-ए-आला डॉक्टर मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया और 178 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा की मजमुई सरमायेकारी के साथ 20 सनअत यूनिटों का आगाज किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक जमाने में मध्य प्रदेश को सिर्फ खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये रियासत ड्रोन से लेकर मिसाइल तक हर चीज बना रही है। ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी ने उर्दुन, बहरेन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर अमरीका के हालिया हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई के तौर पर ये हमले किए हैं। ईरान की सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक इस कार्रवाई में उर्दुन में प्रिंस हसन फिजाइया के अड्डे, बहरेन में शेख ईसा फिजाइया के अड्डे और कुवैत में अल सालिम और अहमद अल जाबिर फिजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया है। खवातीन क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर वाहिद तारीखी टेस्ट मैच में इंग्लैंड आज दोपहर भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत को कुल 269 रन की सबकत हासिल थी और चाय के वक्त तक भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर खत्म करने का ऐलान किया और इंग्लैंड को 457 रन का निशाना दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली खातून बनी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना, कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार देने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत आलिया ने राम जन्मभूमि मंदिर में अतियात की मुबैना खुर्दबुर्द की तहकीकात करने वाली SIT की कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस के रिसाव से मुतासरा झारखंड के कारकुनों के मामले का नोटिस लिया है और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Chief Minister Yogi Adityanath will inaugurate the Lucknow-Kanpur Expressway this afternoon. A report.
1: 63-kilometer-long, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway, with India's second-longest elevated corridor, is also country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. Equipped with AI-based speed enforcement, emergency call boxes at every 2 kilometers, and two integrated 24/7 control rooms, the expressway is designed for speeds of up to 120 kilometers per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 40 minutes. A car journey between the two cities will cost ₹275 and two-wheelers are not allowed on it. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: In Bihar, Chief Minister Samrat Chaudhary launched the Bihar Heli Tourism and Air Tourism Service Scheme in Patna today. An online booking portal for the service was also inaugurated. Speaking on the occasion, the Chief Minister said the scheme has been launched to improve tourism in the state and to enable people to explore and experience Bihar more conveniently.
2: We want more people to visit Bihar. This initiative is not just about showcasing the state, it is about making Bihar a year-round tourist destination. Our aim is to ensure that tourism becomes a key driver of Bihar's economy. We also want to encourage greater participation from the private sector to strengthen tourism, infrastructure and services.
0: In the first phase of the scheme, the destinations covered are Patna, Valmiki Nagar, Ma Mundeshwari and Rajgir. The state government will provide a subsidy of up to ₹15,422 per ticket. The helicopter tourism service will commence on the 18th of July and will operate every Saturday and Sunday. The MP Tech Growth Conclave 3.0 is being held in Bhopal, Madhya Pradesh. Chief Minister Dr. Mohan Yadav inaugurated the conclave and launched 20 industrial units involving a total investment of ₹178.7 crore. The conclave aims to position Madhya Pradesh as a leading technology and industrial hub in the country. Addressing the conclave, the Chief Minister said India has become one of the fastest growing countries in the world over the last 12 years. He said Madhya Pradesh was once known only for farming, but the state now makes everything from drones to missiles. Dr. Yadav said after his visit to Barcelona last year, companies from Spain, the US and Canada invested ₹28 crore in the state.
3: Madhya Pradesh has attracted more than 28,200 crore rupees in foreign direct investment, FDI, from companies based in Spain, Canada, the United States, the United Kingdom, Japan, South Korea, and several other countries. This is a matter of pride.
0: The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today by a Vietnam Airlines flight. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. The embassy said the respective state governments have been requested to coordinate with the affected families for the onward journey of the mortal remains to their final destinations. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed responsibility for missile and drone strikes on U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait as part of its ongoing Eye for an Eye operation. The attacks were described as retaliation for recent U.S. strikes on Iranian military targets. According to Iran's state news agency, the operation targeted the Prince Hassan Air Base in Jordan, Sheikh Isa Air Base in Bahrain, and Al-Salem and Ahmad al-Jaber air bases in Kuwait. The IRGC claimed it damaged fuel depots, ammunition storage facilities, air defense systems, and radar infrastructure. It also warned against further U.S. military activity in the Strait of Hormuz. New Zealand actor Sam Neill, best known for his roles in Jurassic Park and The Piano, has died at the age of 78. His family said he died in Sydney today following a sudden and unexpected medical event. During a career spanning more than five decades, Neill earned international acclaim for his performances in both acclaimed dramas and major Hollywood films. The government today informed that four new generation indigenous naval platforms were inducted into the Indian Navy in just 1 month to strengthen the country's maritime defense. The latest addition is INS Mahendragiri, the sixth indigenously designed Nilgiri class stealth frigate, which was inducted on the 11th of this month.
4: On 21st of last month, the Indian Navy inducted three indigenously designed and built platforms, namely INS Dunagiri, INS Sansodhak and INS Agraya. These frigates are built under Project 17A for multi-mission roles, including anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare. Project 17A is the Indian Navy's advanced stealth frigate program to build seven next-generation guided missile warships equipped with advanced stealth features, enhanced survivability, a reducer radar signature and a high degree of automation. These warships are capable of undertaking the full spectrum of maritime operations across all dimensions of naval warfare. Built with a high indigenous content, these platforms reflect the vision of Atmanirbhar Bharat and strengthen the country's defense manufacturing ecosystem. With Pallavi Parmar, this is Ankit Kumar, Akashwani News, Delhi.
0: Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent on winning gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026 held in Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. In women's cricket, England will resume their second innings at 130 for six in the historic one-off test at the Lords against India this afternoon. Resuming the penultimate day with an overall lead of 269, India declared their second innings at 341 for seven at the stroke of tee, giving a target of 457 runs. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lords. The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar and Gangetic West Bengal today. The IMD said heavy rainfall conditions will also prevail over northeast, east Uttar Pradesh, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and Uttarakhand during the next 2 to 3 days. Meanwhile, heat wave conditions are likely to prevail in isolated pockets over coastal Andhra Pradesh, while Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal will experience hot and humid weather conditions till tomorrow. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex added 20 points to 77,589, while the Nifty dipped 7 points to 24,200 when reports last came in. In the global crude oil market, Brent crude was trading 3.3% up at $78.51 per barrel when reports last came in. In tennis, top seed Italy's Yannick Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed German Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court says determination of citizenship and foreigner status must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. Sets aside Guwahati High Court's decision declaring 27 appellants as foreigners. Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for six against India in historic one-off test at the Lords. With that, we end the midday news.
5: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को SI का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6th नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
6: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रेय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये
4: युद्ध पोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178

0: केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमेरिका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
1: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ, अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत

0: में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डो को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हुरमुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हुरमुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 2:30।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, इस वक्त समय हो रहा है 2:01।

20 मिनट और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। इस सफर में आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। हिंदी सिनेमा का पर्दा जहां हर दौर में अपनी कुछ ऐसी कहानियां लिखी जिन्हें वक्त भी धुंधला नहीं कर पाया। कुछ चेहरे पर्दे पर दिखाई दिए और सितारे बन गए और कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर सितारों की तकदीर लिख गए। ऐसे ही एक फिल्मकार थे जो है हमारे आज के कलाकार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रकाश मेहरा की। 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे प्रकाश मेहरा ने हिंदी सिनेमा को सिर्फ सफल फिल्में नहीं दी, उन्होंने एक ऐसा सिनेमाई दौर रचा जिसमें गुस्सा भी था, दर्द भी, दोस्ती भी, मोहब्बत भी और जिंदगी के कई रंग भी। उनका सफर आसान रास्तों से होकर नहीं गुजरा। फिल्मी दुनिया में उन्होंने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और साल 1968 में आई उनकी पहली फिल्म हसीना मान जाएगी। बतौर निर्देशक इस फिल्म ने उन्हें एक पहचान दिलाई। शशि कपूर और बबीता अभिनीत इस फिल्म में रोमांस था, हल्का फुल्का मनोरंजन था और खूबसूरत संगीत भी। प्रकाश मेहरा के लंबे फिल्मी सफर की शुरुआत जिस फिल्म से हुई उसका ये गीत आज भी हिंदी फिल्म संगीत की यादों में अपनी जगह बनाई हुई है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस सिनेमाई सफर की इस खूबसूरत गीत के साथ।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की। हसीना मान जाएगी के बाद जिस फिल्म का अभी आपने ये गाना सुना, गायक स्वर थे इसमें लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की। हसीना मान जाएगी के बाद प्रकाश मेहरा का सफर आगे बढ़ा, मेला, समाधि और आन बान जैसी फिल्में आईं, लेकिन साल 1973 में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें न सिर्फ प्रकाश मेहरा के सफर को बदल दिया बल्कि हिंदी सिनेमा को भी एक नया नायक दे दिया। फिल्म थी जंजीर और वो नायक थे हमारे एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। उस दौर में जब पर्दे पर रोमांटिक नायकों का बोलबाला था, जंजीर का विजय अपने भीतर गुस्सा, बेचैनी और व्यवस्था से टकराने का साहस लेकर आया। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की यह मुलाकात आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मी साझेदारियों में बदल गई। जंजीर को अक्सर उसके गुस्से और उसके तीवर के लिए याद किया जाता है, लेकिन इसी फिल्म में भावनाओं का एक दूसरा सिरा भी था। रिश्तों के बनने और बिगड़ने के बीच मन में उठती वह कसक जो कई बार शिकायत बनकर नहीं एक सवाल बनकर रह जाती है। आइए सुनते हैं फिल्म जंजीर का ये गीत।

दोस्तों, उस दौर में जब पर्दे पर रोमांटिक नायकों का बोलबाला था, जंजीर का विजय अपने भीतर गुस्सा, बेचैनी और व्यवस्था से टकराने का साहस लेकर आया। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की यह मुलाकात आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मी साझेदारियों में बदल गई। एक सफल फिल्म जो होती है ना, वो कभी कभी इतिहास बनाती है, लेकिन एक सफल जोड़ी कई इतिहास लिख जाती है। जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन का साथ आगे बढ़ा और फिर आई हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी जैसी फिल्में। इन फिल्मों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, प्रकाश मेहरा अपने नायक को सिर्फ ताकतवर नहीं बनाते थे, उसके भीतर एक दर्द भी रखते थे। उनका नायक दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन अपने भीतर के अकेलेपन से हमेशा नहीं जीत पाता था। और शायद इसी दर्द की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। सिकंदर के पास शोहरत थी, दौलत थी, लेकिन जिसे दिल ने चाहा वह उसका न हो सका। पर्दे पर अमिताभ बच्चन और निर्देशन की कुर्सी पर प्रकाश मेहरा। इस मेल ने एक ऐसी कहानी रची जिसका दर्द आज भी उसके गीतों में जिंदा है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में, आप ये गीत सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। हमारे साथ आप सभी श्रोता जुड़े हुए हैं, आप सभी को इतना जरूर बताना चाहूंगी ये कार्यक्रम आप भी सुन रहे हैं।

एक ही कलाकार हमारे साथ बने रहिएगा दोपहर 3 बजे से 3:30 तक। हम आपके लिए लेकर आएंगे मैटनी मेलोडी और आज उस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन गजलें। हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं उनके नाम बता दूँ, ये हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से। और फिर हमारे साथ हैं आज के सफ़र में हमारे साथ हम सफ़र हैं छत्तीसगढ़ चुनी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद इस्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनके परिवार के सदस्य। फिर हैं बुलंदशहर से एम एस अब्बासी और उनका पूरा अब्बासी परिवार। कस्बा गुन्नौर यूपी से हैं फारूक अली खान और पूरी खान फैमिली, शुक्रिया। फिर हमारे साथ जुड़े हैं सिमरन मुखी, अनिता मुखी, सुदर्शन मुखी जी सोनीपत शांतिनगर से और इन्हें कार्यक्रम प्रकाश मेहरा का अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। ये हैं हमारे संग गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। फिर हमारे साथ जुड़े हैं तुलसी मस्किन जी और नमस्कार कर रहे हैं, शुक्रिया आपको, हमारा भी नमस्कार। और ये लिख रहे हैं गोवर्धन कॉलोनी बिहार, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। इनके साथ हैं वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना। फिर हमारे साथ हमारे और दूसरे दोस्त भी जुड़े हुए हैं, ये हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है उसके लिए धन्यवाद। फिर हमारे संग धर्मेंद्र छिपा जी हैं और बहुत शुक्रिया, और आपकी बातें हमारी भी जानकारी में इजाफा करती हैं और आपको प्रस्तुति अच्छी लग रही है उसके लिए धन्यवाद। फिर हमारे साथ जुड़े हैं फागुराम यादव, संबलपुर कांकेर से, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। हमारे संग बहुत सारे दोस्त और भी जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जानकारी अच्छी लग रही है, ये जानकर हमें अच्छा लगा, शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की। उनकी फिल्मों की एक और खूबी थी, उनके गीत कहानी से अलग नहीं लगते थे। कई बार जो बात किरदार शब्दों में नहीं कह पाता था वही बात गीत कह जाता था। साल 1981 में आई फिल्म लावारिस, उसकी कहानी भी एक ऐसे इंसान की थी जो दुनिया में अपनी पहचान तलाश रहा था। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वह कौन है, सवाल यह भी था कि समाज किसी इंसान को उसके जन्म से पहचानता है या उसके कर्म से। लावारिस की कहानी के केंद्र में पहचान की यही तलाश थी, लेकिन उसके साथ रिश्तों की दूरियां और पिछड़ने के बाद फिर मिलने का एहसास भी था। कभी कभी समय लोगों को एक दूसरे से बहुत दूर ले जाता है। जिंदगी अपनी राह चलती रहती है और फिर किसी मोड़ पर वही चेहरे दोबारा सामने आ जाते हैं जिन्हें हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। ऐसे ही पिछड़ने और फिर मिलने के एहसास को समेटता ये गीत आपकी नजर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म लावारिस का ये गीत। हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं वो हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। फिर हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। हमारे साथ चिरमिरी कुरासिया कालवी से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरी, दिनेश प्रसाद लहरी और कालिंद्री लहरी। फिर गांव फिरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। और हमारे साथ जुड़े हैं तिलीवाला उत्तराखंड घनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, आयान बाबू और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप मक्कड़ जी, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रकाश मेहरा जी की जो हमारे आज के कलाकार हैं। प्रकाश मेहरा की फिल्मों की दुनिया में जिंदगी हमेशा एक ही रंग में दिखाई नहीं देती। उनके किरदार कभी हालात से लड़ते थे, कभी रिश्तों में अपना एहसास या हिस्सा तलाशते थे और कभी सब कुछ होते हुए भी भीतर से अकेले रह जाते थे। 1982 में आए नमक हलाल आज भी अपने संवादों, अभिनय और गीत संगीत के लिए याद की जाती है। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी और वहीदा रहमान जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म प्रकाश मेहरा की उस खासियत को एक बार फिर सामने रखती है जिसमें वे बड़े सितारों और लोकप्रिय सिनेमा के बीच हर किरदार को अपनी अलग पहचान देते थे। और फिर 2 साल बाद आई फिल्म शराबी। विक्की कपूर, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी लेकिन जिंदगी में अपनापन कम था, वह लोगों के बीच था फिर भी कहीं अकेला था। उसके पास बहुत कुछ था लेकिन शायद वही नहीं था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। शराबी में प्रकाश मेहरा ने एक बार फिर दिखाया कि किसी इंसान की जिंदगी को सिर्फ उसकी कामयाबी या दौलत से नहीं समझा जा सकता। हर व्यक्ति की अपनी राह होती है, अपनी तलाश होती है और अपनी मंजिल होती है। कभी मंजिल मिल जाती है, कभी रास्ते बदल जाते हैं और कभी जिंदगी हमें यह समझा देती है कि हर किसी का सफर एक जैसा नहीं होता।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज के हमारे कलाकार प्रकाश मेहता। वो सिर्फ निर्माता और निर्देशक ही नहीं थे, उनके भीतर शब्दों और शायरी के लिए भी खास जगह थी। शायद इसीलिए उनकी फिल्मों में भावनाएं इतनी गहरी से होती थी। 17 मई 2009 को प्रकाश मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कुछ कलाकारों की, कुछ फिल्मकारों की विदाई सिर्फ एक तारीख बनकर नहीं रह जाती, क्योंकि उनका रचा हुआ संसार उनके जाने के बाद भी पर्दे पर चलता रहता है। आज भी जब हम कोई भी गाना, या तो वो बेखुदी में सनम या ओ साथी रे, जब हम ये गाना सुनते हैं तो सिकंदर का दर्द याद आता है। कब के बिछड़े हुए में रिश्तों की दूरियों को हम महसूस करते हैं और मंजिलें अपनी जगह है जिंदगी के सफर को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही एक फिल्मकार की असली विरासत होती है। आज प्रकाश मेहरा की जयंती पर याद उस फिल्मकार को जिसने कैमरे के पीछे रहकर हिंदी सिनेमा के पर्दे पर कई अमर तस्वीरें बनाई। बस आज की सफर यही पर, ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो हम सफर सुनाली के साथ। हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और ये कहूंगी कि आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि 3 बजे से लेकर

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडी। इस सफर में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। कुछ गीत कानों से होकर गुजर जाते हैं और कुछ शब्दों की शक्ल में हमारे भीतर ठहर जाते हैं। गजल शायद संगीत की वही विधा है जहां आवाज ऊंची नहीं होती लेकिन बात बहुत दूर तक जाती है, जहां दर्द को गजल संगीत की वही विधा है जहां दर्द को कहने के लिए शोर की जरूरत नहीं पड़ती और मोहब्बत हमेशा इजहार की मोहताज नहीं होती। हिंदी सिनेमा का एक दौर ऐसा भी रहा जब फिल्मों में गजलें सिर्फ गीत के रूप में शामिल नहीं होती थीं, वे कहानी के भीतर किरदारों की अनकही बात बनकर आती थीं। शायर के शब्द, संगीतकार की धुन और गायक की आवाज जब एक दूसरे में इस तरह घुलते थे कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाए, तब जन्म लेती थीं वे रचनाएं जिन्हें दशकों बाद भी सुनी तो लगता है जैसे समय

कुछ देर के लिए वहीं ठहर गया हूँ। आज मैटनी मेलोडी में सफर हम सफर ये जो तय करेंगे वो हिंदी फिल्मों की ऐसी ही कुछ चुनिंदा गजलों का होगा, और शुरुआत एक ऐसी गजल से जिसमें मोहब्बत किसी से कुछ मांगती नहीं बल्कि सामने वाले के हिस्से का दुख भी अपने नाम कर लेना चाहती है। साल 1964 की फिल्म शगुन, संगीत खयाब का, शब्द साहिर लुधियानवी के और आवाज जगजीत कौर की। साहिर की शायरी की यह खूबी थी कि मोहब्बत उनके यहाँ सिर्फ खूबसूरत एहसास नहीं एक गहरी साझेदारी भी बन जाती थी। किसी से यह कहना कि अपनी परेशानी, अपना अकेलापन, अपने हिस्से का दुख मुझे दे दो, प्रेम का इससे अधिक सहज और निस्वार्थ रूप शायद ही कहीं और मिले। आइए सुनते हैं ये गजल।

जगजीत कौर की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म शगुन की ये गजल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मितनी मेलोडी और आज आपके साथ इस सफ़र में आपकी हम सफ़र हूँ मैं, आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली। फिल्मी गजलों के सुनहरे दौर की बात हो और मदन मोहन का नाम न आए ये लगभग नामुमकिन है। उनकी धुनों में शब्दों के लिए एक खास जगह होती थी। संगीत कभी शायरी पर हावी नहीं होता था बल्कि उसे थाम कर धीरे धीरे श्रोता तक पहुंचाता था। 1973 की फिल्म हंसते जख्म, इस फिल्म में कैफी आजमी के शब्दों को मदन मोहन ने संगीत दिया और लता मंगेशकर की आवाज ने उस एहसास को जैसे पूरा कर दिया। कई बार कोई याद अचानक नहीं आती, वह हमारे साथ ही रहती है, बस हम रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी ओर देखना छोड़ देते हैं और फिर किसी दिन किसी पल वही याद सामने आ खड़ी होती है और मन में दबा हुआ बहुत कुछ आंखों तक चला आता है। इसी एहसास को समेटे सुनते हैं

आप सुन रहे हैं फिल्म हस्ती जख्म से ये गजल, आवाज लता मंगेशकर की। आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं, हौसला बढ़ता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं मितनी मेलोडी, मधुर प्रस्तुति, मोहक गजल्स, मनपसंद मनभावन कार्य। मन से बड़ी वाली बधाई, आपका वर्तमान और भविष्य बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारे साथ जुड़ी हैं संतोष मक्कर, माफ कीजिएगा, संतोष खड़से और विनोद खड़से, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। इन्हें कार्यक्रम अच्छा लगा और इन्हें हमारा पिछला कार्यक्रम

कार्यक्रम। जी हाँ, एक ही कलाकार भी अच्छा लगा उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे साथ हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। आपको हमारे कार्यक्रम अच्छा लग रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गजलों की, सुनहरे दौर की। मोहब्बत की राह आसान होती तो शायद दुनिया की इतनी शायरी जन्म ही ना लेती। कभी समाज की बंदिशें, कभी हालात और कभी खुद इंसान की मजबूरियां। प्रेम के रास्ते में मुश्किलों की शक्लें बदलती रहती हैं। 1973 की फिल्म दिल की राहें, इसकी गजल है रस्में उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, इसी कश्मकश को शब्द देती है नक्शलयालपुरी के शब्द, मदन मोहन का संगीत और लता मंगेशकर की पुरकशिश आवाज। यह शिकायत भी है और बेबसी भी, लेकिन इन दोनों के बीच शायरी की वो गरिमा बनी रहती है जो पुरानी फिल्मी गजलों की खास पहचान थी। आइए सुनते हैं ये गजल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दिल की राहें में से आप सुन रहे थे ये गजल। हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़े हैं गांव फिरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। इन्हें कार्यक्रम बढ़िया लग रहा है, इन्हें गजलें भी अच्छी लग रही हैं, जानकर हमें अच्छा लगा, शुक्रिया। दोस्तों, कभी कभी शायरी अपने समय से आगे निकल जाती है। वह किसी एक किरदार की बात कहते हुए भी समाज की बहुत बड़ी सच्चाई सामने रख देती है। 1970 की फिल्म दस्तक की गजल हम हैं मताई कूचा और बाजार की तरह ऐसी ही एक रचना है। बजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों को मदन मोहन ने संगीत दिया और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज। मता यानी वह चीज जिसे बाजार में बेचने के लिए रखा गया हो, इस एक शब्द के सहारे यह गजल एक ऐसी स्त्री की पीड़ा कहती है जिसे दुनिया एक इंसान की तरह से नहीं अपनी नजर और अपने पैमाने से देखती है। शब्द गहरे हैं लेकिन उनकी जो चोट है वो बहुत शांत है। शायद इसीलिए यह गजल सुनने के बाद खत्म नहीं होती, देर तक हमारी सोच में बनी रहती है। आइए सुनते हैं ये गजल।

की मौजूदगी दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती रहती है। कोई दूर होता है फिर भी उसकी आहट मन पहचानता रहता है। दूरी और मौजूदगी के इसी खूबसूरत एहसास के साथ आइए सुनते हैं ये गज़ल।

अरब इस सफर की आखिरी मंजिल, साल 1981 की फिल्म उमरावजान। कुछ फिल्मों का संगीत लोकप्रिय नहीं होता, विरासत बन जाता है। उमरावजान का संगीत ऐसी ही विरासत है। खयाम का संगीत, शहरयार की शायरी और आशा भोसले की आवाज़, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया रची जहां हर गजल के पीछे एक पूरी जिंदगी सांस लेती हुई महसूस होती है। उमराव की जिंदगी में तलाश बहुत थी, मोहब्बत की, अपनेपन की, उस जगह की जिसे वह अपना कह सके, लेकिन हर तलाश मंजिल तक पहुंची, जिंदगी ऐसा वादा कब करती है। जुस्तजू जिसकी थी सिर्फ किसी एक इंसान को न पा सकने की बात नहीं कहती, यह उन तमाम अधूरी तलाशों की गजल है जिनके पीछे चलते चलते कभी इंसान को यह एहसास होता है कि जिसे खोजता रहा वह नहीं मिला, और इस तलाश में न जाने कितना कुछ पीछे छूट गया।

दोस्तों, आज कार्यक्रम मैथिली मेलोडी में हमने बात की सुनहरे दौर की उन गजलों की जो आज भी हमारे जहन को कुल बुलाती हैं और उनमें पूरी तरह से बसी हुई हैं। ये सफर आपने तय किया था मेरे साथ, यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। इस गजल के साथ आपको छोड़ी जाती हूँ, फिर मिलने के वादे के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस, जिसमें आज आप सुनेंगे रूबरू। इसके अंतर्गत सुनेंगे आप अनवर जलालपुरी, शायर और कलमकार से नोमान शौक की बातचीत।
1: उर्दू मजलिस के सामीन की खदमत में सरफराज आलम का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम रू बरू। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम किसी अदबी, समाजी या किसी माशी शख्सियात से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे बात करें और उनके जो तजर्बात व मुशाहिदात हैं उनसे इस्तेफादा करें। तो इसी सिलसिले के तहत आज जिस शख्सियत से हम और आप रूबरू होंगे, उन्होंने काफ़ी तवील अरसे तक उर्दू मुशायरे की निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दिया है। सामीन, मैं बात कर रहा हूँ मारूफ शायर और मुसन्निफ जनाब अनवर जलाल पुरी की। तो आइए आपसे की गई बातचीत की ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं। आपसे महवे गुफ्तगु हैं नोमान शौक।
2: हजरात, हम गाहे गाहे आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियतों से कराते हैं जो अपने ख़ास मैदान में एक मुनफरिद मुकाम रखती हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे दरमियान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिसे हम मुअल्लिम की हैसियत से भी पहचानते हैं, एक बहुत अच्छे शायर की हैसियत से भी वो सारी दुनिया में जाने जाते हैं, बहुत अच्छे तर्जमानगार, बहुत अच्छी नस्ल लिखने वाले और बहुत उम्दा नज़ामत करने वाले। मेरी मुराद है मोहतरम

0: था। एक ज़माने में मैं मुशायरों में अक्सर ये बात करता था कि उर्दू के बग़ैर हिंदी न सीखी जा सकती है न सिखाई जा सकती, इसलिए कि इतनी कुर्बत दोनों में है कि हज़ार कोशिश के बावजूद अलग नहीं किया जा सकता। आप दर्जा 3 और 4 के किसी भी विद्यार्थी की वर्ड्स मीनिंग की कॉपी उठा लीजिए तो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा, सहायता माने मदद, आज्ञा माने हुक्म,
1: पुस्तक यानी किताब,
0: पुस्तक माने किताब, प्रातः माने सुबह, संध्या माने शाम,
1: बहुत उम्दा बात
0: है, प्रकाश माने रोशनी। तो इस तरह के एक दो नहीं, सैकड़ों अल्फाज। तो मालूम यह हुआ कि उसके अंदर, उसके शऊर में और लाशऊर में रोशनी शामिल है, प्रकाश नहीं शामिल है। तो हम ये कह रहे हैं कि काश ऐसा माहौल बन जाए कि लोग प्रकाश को भी समझें और रोशनी को भी समझें और दोनों को लिखने के तरीके को भी समझ लें। एक दूसरे के करीब आने के लिए कुछ तो एक कदम हमें भी बढ़ाना पड़ेगा, एक कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा हमारी तरफ। तो हम उर्दू वालों ने तो हिंदी सीख कर, हिंदी रस्मुलखत सीख कर, हिंदी ज़बान सीख कर अपना हक अदा कर दिया है, और हमारी ये दुआ है कि हमारे हिंदी के दोस्त जो हैं उनका दिल इतना कुशादा हो जाए कि वो उर्दू रस्मुलखत सीख लें तो बहुत आसानी से दाहिना हाथ जो है, हमारा दाहिना हाथ आपके दाहिने हाथ से मिल जाएगा, हमारा बायां हाथ आपके बाएं हाथ से मिल जाएगा, और ये इतना खूबसूरत हिंदुस्तान बनेगा ज़बान के एतबार से जिसका ख्वाब महात्मा गांधी ने, चिश्ती ने, नानक ने, ये सब ने देखा था, अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन अलिया ने देखा था। हम लोग तो ख्वाब में देखते हैं कि काश ऐसा लिसानी तौर पर ऐसा हिंदुस्तान बन जाता कि जिसमें हमें एक दूसरे को सिर्फ समझने की ज़रूरत होती, समझाने की ज़रूरत ना होती।
1: आमीन, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि इस मरहले में अब काफ़ी पेशरफ्त हो रही है, अलग अलग तबकात से, अलग अलग जगहों से लोग एक जगह जमा हो रहे हैं और इसी बात पर गौर किया जा रहा है कि ये जो ज़बानों के बीच एक मस्नूई फसील खड़ी थी उसे कैसे ख़त्म किया जाए, और इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। अभी आपके तर्जमे के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था, आपने गीता पर जो काम किया है, मुझे याद आता है कि अभी जश्ने रेख्ता में इम्तियाज़ साहब ने, जो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने गीता पर एक तकरीर की थी, तो इसका रिलेवेंस, इसकी मानवीयत आज हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में क्या है, इस पर काफ़ी गुफ्तगू होती रही है, सदियों से होती रही है और सदियों होती रहेगी। इस तरह की किताबें अपने आप में ख़जाने होते हैं जो धीरे धीरे, जिनसे हीरे जवाहरात निकलते रहते हैं। आपने जो तर्जमा किया है, अगर उसमें से कुछ हमें सुनाना चाहें हमारे सामईन के लिए, बहुत इनायत होगी।
0: ये मेरे लिए बड़ी खुशी और खुशकिस्मती की बात होगी। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक ये है कि अंधे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, बताओ युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है, वहाँ दोनों फौजें क्या कर रही हैं। बात सिर्फ इतनी है, इस बात को मैंने जो फैलाया तो यूं बना पहला श्लोक गीता का कि धृतराष्ट्र आँखों से महरूम थे, धृतराष्ट्र आँखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे, उन्हें भी थी ख्वाहिश की दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या, वो एक शख्स संजय पड़ा जिसका नाम, वही उनसे आखिर हुआ हम कलाम, उसे रब ने ऐसी नज़र बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देख ली, धृतराष्ट्र राजा भी थे बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी पाप भी, मोहब्बत से बेटों की सरशार थे, अजब तरह के वो भी किरदार थे, उन्हें थी ये ख्वाहिश की सब जान लें, सभी लड़ने वालों को पहचान लें, कहानी तो संजय सुनाता रहा, है मैदान में क्या बताता रहा, वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए।
1: वाह वाह,
0: यानी जंग से अमन की फसल पैदा हो रही है, ये गीता का बड़ा कारनामा।
1: बहुत रमा दमा तर्जुमा और

0: बातों का अंदाज।
1: ये तो पहला श्लोक था जो मैंने आपको सुनाया। अगर आप इजाजत दें तो मैं कृष्ण अर्जुन की गुफ्तगू जो एक मौके पर हो रही है
0: जी, वो मकालमे के अंदाज
1: मकालमे के जी। उसके मैं कुछ शेर आपको सुना दूं। सुनिएगा कि अजब हाल अर्जुन की आंखों का था, अजब हाल अर्जुन की आंखों का था, बड़ी देर तक सिर्फ आंसू बहा, बढ़ी उलझने और बेचैनियां, लगा उनको घेरे हैं दुश्वारियां, तो फिर कृष्ण ने उससे पूछा यही, बता किससे सीखी है ये बुजदिली, ये सब इल्म से दूर की बात है, जहालत की मजबूर की बात है, भले मानुषों की यह हरकत नहीं, यह हरकत वह है जिसमें बरकत नहीं, यह हरकत न इज्जत दिला पाएगी, न ये तुझको जन्नत दिला पाएगी, अय अर्जुन हवाओं का रुख मोड़ दो, ये नामर्दियों बुजदिली छोड़ दो, ये फितरत तुम्हें जेब देती नहीं, डुबो देना तुमको ये आदत कहीं, उठो जंग के वास्ते उठ पड़ो, लिए हाथ में असलहे उठ पड़ो, ये फरमान अर्जुन ने जब सुन लिया तो फिर दिल में जो कुछ भी था कह दिया, मैं भीषम पितामा पे तानू कमा, मैं भीषम पितामा पे तानू कमा, तो फिर सारे जग में रहूंगा कहाँ, गुरु द्रोण पर मैं चलाऊं जो तीर, तो सब लोग मुझको कहेंगे हकीर, बुजुर्गों की दिल में है इज्जत बहुत, मैं रखता हूँ उनसे अकीदत बहुत, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे ऐशो इशरत नहीं चाहिए, बुजुर्गों को मारूं तो जाऊं कहाँ, निदामत को अपनी छिपाऊं कहाँ, गदागर बनूं मुझको मंजूर है, भिखारी रहूं मुझको मंजूर है, नहीं कुछ खबर क्या है करना मुझे, है किस रास्ते से गुजरना मुझे, कहाँ जीत है और कहाँ हार है, हमें ये समझना भी दुश्वार है, जिन्हें मार कर हम न जी पाएंगे, प्याला न अमृत का पी पाएंगे, वही तो है दुश्मन बने जान के, कि जैसे वो बंदे हैं शैतान के, अय आका ये मुझ पर करम कीजिए, मेरी कश्मकश को समझ लीजिए, जो बेहतर है मुझको दिखा दें वो राह, मैं दामन में अब ले रहा हूँ पनाह, नसीहत हमें कोई फरमाइए, जो सीधा हो रास्ता वो दिखलाइए, मेरा देश हो चाहे जितना विराट, मिले चाहे संसार का राजपाट, मुझे देवता अपना राजा कहें, सभी लोक वाले मेरी ही सुने, मगर दुख मेरा कम न हो पाएगा, हंसेगा न दिल मेरा रो पाएगा, उधर जिक्र संजय ये करने लगा, धृतराष्ट्र के कान भरने लगा, कि लड़ने से अर्जुन का इनकार है, नहीं उनका दिल अब तो तैयार है, कृष्णा से ये कह के खामोश हैं, उन्हें होश ही है न बेहोश हैं, धृतराष्ट्र से उसने ये भी कहा कि अर्जुन है मायूस और गमजदा, मगर कृष्ण देते हैं हिम्मत उन्हें, दिखाते हैं राह शुजात उन्हें, उधर कृष्ण अर्जुन से हैं हम कलाम, सुनाते हैं रूहानियत का प्याम, वो कहते हैं अर्जुन से ऐ सोगवार, तू गम ओढ़ लेता है क्यों बार बार, तेरी बात तो ज्ञान वाली नहीं, कहीं से ये सम्मान वाली नहीं, जो ज्ञानी है जीने पे मरते नहीं, कभी मौत से भी वो डरते नहीं, वो कहते हैं ये जिंदगी कुछ नहीं, कि उनके लिए मौत भी कुछ नहीं, ये मिट्टी की काया हकीकत नहीं, बदन की यहाँ कोई कीमत नहीं, अजल और अबद तो फकत रूह है, हमारी सनत तो फकत रूह है, सदा से हूँ मैं भी सदा से हो तुम, हमें हमेशा से मैं इब्तिदा से हो तुम, ये राजा भी तो हैं शुरुआत से, ये वाकिफ नहीं फिर भी हालात से, सभी लोग कल भी रहेंगे यहाँ, यूं ही सचता जाएगा सारा जहां, बदन जिसमें खून की रवानी भी है, उसी से बुढ़ापा जवानी भी है, इसी से तो वाबस्ता बचपन भी है, कि एक नाम इसका लड़कपन भी है, ये सब जिंदगानी की पहचान है, मगर रूह बिन सब ये बेजान है, वही रूह जब तक कि तन में रहे, तभी तक तो हरकत बदन में रहे, मगर एक दिन छोड़ देती भी है, किसी सिमत रुख मोड़ देती भी है, नए जिस्म की जान बन जाती है, नए तन की पहचान बन जाती है, समझदार गम इसका करते नहीं, जो मरता है साथ उसके मरते नहीं।
0: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इसकी रवानी और इसका जो जोश व खरोश और जो मुकालमे का अंदाज है, उसे आपने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से

0: बहुत ही उम्दा तरीके से आपने उसको यहाँ बयान किया है शायरी में।
1: नुमान भाई, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी दाद है, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा।
0: नवाजिश। और अब हमारे सामेईन ये चाहते हैं कि आप अपनी शायरी अगर अलग से तर्जमे के अलावा कुछ सुनाना चाहें।
1: जी नुमान भाई,
0: इरशाद
1: कुछ गजल के चंद शेर सुनिए।
0: इनायत।
1: कि जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने,
0: जुल्फ
1: को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने। जब मुखातिब किया कातिल को तो कातिल लिखा, जब मुखातिब किया कातिल को तो कातिल लिखा, लखनवी बन के मसीहा नहीं लिखा मैंने,
0: बात
1: लखनवी बन के मसीहा नहीं लिखा मैंने, मैंने लिखा है उसे मरियमो सीता की तरह, मैंने लिखा है उसे मरियमो सीता की तरह, जिस्म को उसके अजंता नहीं लिखा मैंने, जिस्म को उसके अजंता नहीं लिखा मैंने, तू मेरे पास था या तेरी पुरानी यादें, तू मेरे पास था या तेरी पुरानी यादें, कोई एक शेर भी तन्हा नहीं लिखा मैंने।
0: आपकी शायरी हो या आपके तर्जमे हो, आपकी बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो अभी हम चाह रहे थे कि अगर आपके पास और वक्त होता तो काफ़ी देर तक हम गुफ्तगू कर सकते थे। आपके पास इतने सारे मौजूआत हैं, आपने इतना कुछ पढ़ा है, इतना कुछ लिखा है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, लेकिन आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, बहुत नवाजिश करम।
1: बहुत शुक्रिया नुमान भाई।
2: सामीन, अभी आप रूबरू प्रोग्राम के तहत मारूफ शायर और मुसन्निफ जनाब अनवर जलालपुरी से की गई ये बातचीत सुन रहे थे। आपसे महवे गुफ्तगू थे नौमान शौक। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, जिसमें आपने सुना अनवर जलालपुरी शायर और लेखक से नुमान शौक की बातचीत। श्रोताओं, आपसे आपको बता दें, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में। उसके बाद आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। फिर वक्त है 4:15 पर कार्यक्रम युववाणी का, जिसमें आज आप सुनेंगे आज की बात मन से माइक्रोफोन तक, क्विक बस और आज का दिन इतिहास में।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं समाचार।

न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्य SIT का गठन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्भष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सड़क

0: परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने रांची जिले के खलारी जिले के पिपरवार क्षेत्र के करकट्टा वन में अवैध कोयला खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इसमें लगभग 200 टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया है। अधिकारियों ने इस अभियान को क्षेत्र में संगठित कोयला खनन और तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमित कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 146 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Supreme Court today ruled that the process of determining citizenship or declaring an individual a foreigner must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. The Apex Court was hearing a batch of petitions filed by 27 people who had been declared foreigners by the foreigners' tribunals in Assam. The Supreme Court set aside the judgments of the Guwahati High Court that had upheld declarations of 27 appellants as foreigners. A bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta acknowledged that the state has a legitimate and compelling interest in ensuring that those not legally entitled to Indian citizenship do not obtain it through false claims, misuse of legal process or delay, but stressed that due process must prevail. The Supreme Court today directed the Special Investigation Team SIT constituted by the Uttar Pradesh government on alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple to submit a status report on the investigation. The court also issued notice to the Union government, the Uttar Pradesh government and the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust on petitions seeking a CBI probe into alleged embezzlement of donations meant for the Ayodhya Ram Mandir. A bench headed by Chief Justice of India, Surya Kant, and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohan heard the petitions. Earlier on June 13, the UP government constituted a 3-member SIT at the request of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust following allegations of misappropriation of temple donations. Defense Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highway Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, will inaugurate the Lucknow

0: नाम पूनम है, ये निरंजन की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार 18 जून 2026 को देखा गया। पूनम की आयु 23 वर्ष है, शरीर की बनावट मध्यम है एवं कद 5 फीट है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन नंद नगरी दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा महिला का पूरा नाम अफरोजा है। ये स्वर्गीय शमशेर अली की पत्नी है। इनकी आयु 45 वर्ष है, शरीर की बनावट मध्यम है एवं कद 5 फीट 1 इंच है। इन्हें अंतिम बार 29 जून 2026 को देखा गया। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन नंद नगरी दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। लापता पुरुष का पूरा नाम अशोक कुमार है। ये कृष्णपाल के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार 11 मार्च 2026 को इनके घर पर देखा गया। निवासी कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद। इनकी आयु 44 वर्ष है, शरीर की बनावट कमजोर है एवं कद 5 फीट 5 इंच है। रंग गेहुआ है। ये मानसिक रूप से कमजोर है। इनके बारे में जानकारी देने वाले को 5,000 की शुल्क राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम रूबी शुक्ला है। ये विनय पांडे की पत्नी है। इन्हें अंतिम बार न्याय खंड 1 इंदिरापुरम में देखा गया। इनकी आयु 20 वर्ष है, इखरा शरीर है एवं कद 5 फीट 4 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में खोए हुए पुरुष का पूरा नाम सुनील कपूर है। ये अशोक कपूर के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार दिनांक 1 जुलाई 2026 को मकान नंबर 480 झील खुरेजा गीता कॉलोनी दिल्ली में देखा गया। इनकी आयु 45 वर्ष है, भारी शरीर है एवं कद 5 फीट 9 इंच है। सुनील कपूर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।
1: कहते हैं जब सब कुछ खत्म हुआ सा लगता है, तब कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है, और उस शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है उम्मीद। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सिमरन। स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में।
2: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफ अल थानी के निधन पर भारत सरकार ने एक दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।
1: सिमरन, अगर मैं आपसे पूछूं कि उम्मीद की आप क्या समझते हैं उम्मीद से, तो आप क्या कहना चाहेंगी?
2: देखिए निखिल, मेरा मानना तो ये है कि उम्मीद वो इंतज़ार है जो कोई व्यक्ति किसी के लिए बरसों से कर रहा होता है। ये वो एहसास है जो किसी रास्ते को खूबसूरत मोड़ तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। ये वो जरिया है जो जीने का सलीखा सिखाती है, और उम्मीद वो ताकत है जो गिर जाने के बावजूद फिर उठकर चलने का हौसला देती है। शायद से इसी वजह से तो कहते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।
1: बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उम्मीद को समझाया है सिमरन, और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि उम्मीद सिर्फ एक एहसास नहीं है। कई बार यही हमें मुश्किल वक्त में टूटने से बचा लेती है, चाहे पढ़ाई का दबाव हो, करियर की चिंता हो या जिंदगी का कोई एक ऐसा मुश्किल दौर हो। अगर उम्मीद साथ हो तो इंसान हर हार मानने से पहले एक कोशिश और जरूर करता है।
2: सही कहा निखिल, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी करियर की चिंता, तो कभी रिश्तों की उलझने, ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां लगता है कि अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अक्सर एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी ही

0: हमें अगला कदम उठाने की ताकत देती है। याद रखिए, उम्मीद का मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान होगा, उम्मीद का मतलब है कि मुश्किल रास्तों पर भी लगातार आगे बढ़ने का हौसला बना रहना चाहिए।
1: एग्जैक्टली सिमरन, और इसी खूबसूरत विचार के साथ आगे बढ़ते हैं आज के शो में, जहां हम सुनेंगे कुछ दिलचस्प किस्से, एक खास बातचीत, इतिहास में हुए एक बहुत ही अलग कॉन्सर्ट के बारे में भी जानेंगे और आजकल चल रहे ट्रेंड्स पर भी कवर करेंगे।
0: निखिल, आजकल के युवाओं में जिम जाना, फिट रहना सब चाहते हैं, सबको हेल्दी रहना है और अपनी एक फिजिक मेंटेन करनी है, पर आजकल के लोग जिम एटिकेट्स और ट्रेनर टिप को थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। शायद से इसी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सी दिक्कत आने लगती है।
1: सही कहा सिमरन, और इसी विषय को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आज मन से माइक्रोफोन तक में हम सुनेंगे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश शर्मा को, जिनसे बात की है हमारी साथी स्वाक्षी ने। आइए सुनते हैं उनसे की गई ये विशेष बातचीत, जिसमें वे बताएंगे कि किस तरह से सही एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और पॉजिटिव अप्रोच रिकवरी को बेहतर बना सकते हैं।
2: साथियों, हम देखते हैं आजकल हम में से बहुत से लोग फिट रहने के लिए जिम जाते हैं। जिम जाना एक अच्छी हैबिट हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही आजकल जिम रिलेटेड इंजरीज भी बढ़ती जा रही हैं। इसी विषय पर विस्तार से समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेश शर्मा जी को, जो कि एक प्रतिष्ठित फिजियोथेरेपिस्ट है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद साक्षी जी।
2: तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या जिम जाना वाकई जरूरी है या फिर हेल्दी खाना खा के हम फिट रह सकते हैं?
3: दोनों चीजें जरूरी है। आपको जिम जाने के साथ साथ आपको हेल्दी खाना भी बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो जिम नहीं जा सकते, तो वो अपना घर पे ही लाइट वर्कआउट करके भी अपना फिटनेस लेवल मेंटेन कर सकते हैं।
2: जिम इंजरीज के मेन कॉज क्या होते हैं?
3: जिम इंजरीज के सबसे मेन जो कॉज है, उनमें पहला कारण है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब आप बहुत ज्यादा वजन बहुत जल्दी आप उठा रहे हो, जिसको हम ईगो लिफ्टिंग भी बोलते हैं। दूसरा कारण है आपका पोस्चर और आपका प्रोग्रेशन आपका सही नहीं है, आप सही तकनीक के साथ आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। और तीसरा कारण है ओवर ट्रेनिंग, आप किसी मसल को बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहे हो विदाउट उसको रेस्ट दिए बिना।
2: और हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये कोई नॉर्मल पेन नहीं है, इंजरी है? आमतौर पर हम इसको इग्नोर कर देते कि हाँ ठीक है, चोट लगा है, ठीक हो जाएगा।
3: हाँ, यूजुअली लोग यही सोचते हैं कि ये आम पेन है, अपने आप चला जाएगा, लेकिन बॉडी आपको सिग्नल्स देती है कि आपको कहाँ रुकना है। जैसे आपको अगर लगातार पेन हो रहा है, या आपको शार्प शूटिंग पेन हो, या आपको ऐसा लगे कि टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है मसल में, या जोड़ में दर्द बहुत ज़्यादा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऐसे साइन है जहाँ पे बॉडी आपको बताती है कि ये एक इंजरी है, ये नॉर्मल पेन नहीं है।
2: ऑल्सो, क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम पता लगा सके कि वेदर ही और शी वो जिम जाने के लिए फिट है या नहीं?
3: क्राइटेरिया है जिसको हम पार क्यू बोलते हैं, यानी फिजिकल असेसमेंट रेडीनेस क्वेश्चन है। इसमें हम जो पर्सन है उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे हमें ये पता लग जाता है कि वो जिम के लिए कितना फिट है या नहीं है। इसमें हम ये देखते हैं कि उसको कोई प्रीवियस इंजरी है, कोई फ्रैक्चर हुआ है या नहीं है, या कोई और मेडिकल हिस्ट्री उसको है या नहीं है, जैसे कोई हार्ट प्रॉब्लम हो या बीपी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका वर्कआउट प्लान करते हैं, या जो भी उनका ट्रेनर होगा वो उसके अकॉर्डिंग उनका वर्कआउट प्लान करता है।
2: डॉक्टर राजेश, आप मुझे एक और बात बताइए कि इसमें डाइट का क्या रोल होता है? जैसे बहुत लोग जिम जाते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो डाइट को एकदम फॉलो करते हैं कि हाँ हमें आज ये लेना है, आज वो लेना है। कुछ लोग होते हैं उनका माइंडसेट होता है कि कुछ भी खा लो, जिम जा रहे हैं, फिट रहेंगे।
3: देखिए, डाइट का रोल बहुत ज़्यादा है। इसमें हम 70-30% का रूल बोलते हैं। 70% आपका सारा डाइट रोल, 30% आपने एक्चुअल जो आपने वर्कआउट किया वो है। जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप ऑयली फूड खा रहे हैं, आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो आपका जो वर्कआउट आपने किया है वो सारा बेकार है। तो डाइट का रोल 70% है आउट ऑफ 100%। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि हम जो चीजें खा रहे हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
2: नहीं, मैं इसलिए ऐसा आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि जंक फूड एंजॉय कर सके या फिर इस तरह की चीजें खा सके, इसीलिए तो हम जिम जाते हैं ताकि वो बैलेंस रहे। कैसा सच में होता है कि आप कुछ भी खाओ और जिम जाओ तो चीजें बैलेंस रहती हैं?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं, दोनों के ही लिए जंक फूड सही नहीं है।
2: ऑल्सो, प्रोटीन सप्लीमेंट और प्री वर्कआउट ड्रिंक्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। क्या ये लेना सच में हेल्दी है या फिर हेल्थ के लिए इससे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं इससे?
3: देखिए, आप प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट और जो प्रोटीन सप्लीमेंट आप जो बोल रहे हैं ये हेल्दी है, लेकिन ये कितने ऑथेंटिक है ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे नकली प्रोडक्ट भी आ रहे हैं जो कि आपको बेच दिए जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि उसमें क्या मिला हुआ है, एक्चुअली में प्रोटीन है या कुछ और मिला हुआ है उसमें। प्लस डोजेस कि आपको कितनी डोज लेनी चाहिए, आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है, आप 30 ईयर्स के हो,

0: है कि कोई यूथ है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है उन पे ज्यादा इसका असर हो सकता है?
1: किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन हाँ 40-45 प्लस में क्या होता है कि हमारी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हमारा बोन का कैल्शियम कम हो जाता है, तो उसको हमें ट्रेन उस लेवल पे करना चाहिए अपने एज के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हम 30 साल के जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेन करें उसको, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ये चीज आपके जो ट्रेनर है वो आपका आपके एज के अकॉर्डिंग आपका वर्कआउट प्लान करते हैं।
0: आपका कोई एडवाइस यूथ के लिए या फिर जो भी लोग जिम जा रहे हैं?
1: जिम जा रहे हैं उनके लिए मेरा यही एडवाइस है, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी वजह से जिम में इंजरीज ना हो। उनमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले वार्म अप है। वार्म अप में क्या होता है, जिस पार्ट को आज आप वर्कआउट करने जा रहे हो उसको आप रेडी करो। कई लोग इस वार्म अप को ही अवॉइड कर देते हैं तो बॉडी उस चीज के लिए रेडी ही नहीं होती कि आपने एकदम से आपने ओवर वेट उठा लिया, आपको जिम इंजरीज हो जाएगी। प्लस आप करेक्ट फॉर्म में करें, आपका पोस्चर सही होना चाहिए। सबसे ज्यादा कॉमन इंजरीज जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है शोल्डर और बैक की। हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए लेकिन लोग ज्यादातर उसको बेंड करके एक्सरसाइज करते हैं। प्लस आपकी क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लूज कपड़े पहनिए। अगर आप टाइट क्लोथिंग करेंगे तो आप उस रेंज में नहीं एक्सरसाइज कर पाएंगे जिस रेंज में होनी चाहिए। शूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आपके इल फिटिंग शूज हैं तो आपको इंजरीज हो सकती है। प्रॉपर रेस्ट और स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वर्कआउट के बाद में आपको कम से कम 7-8 आवर्स की आपको नींद लेनी ही चाहिए। प्लस आप उस बॉडी को रेस्ट दीजिए जिस पार्ट की आपने एक्सरसाइज करी।
0: कुछ लोग जो होते हैं वो जिम जाकर या फिर जो जिम के ट्रेनर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये डाइट लो, तो बहुत कम पीरियड में, मतलब 1-2 महीने में या तो वो बहुत गेन कर लेते हैं या तो बहुत वेट लूज कर देते हैं। कोई इंसान 80 kg का है और वो 1-2 महीने में 50 kg का हो जाता है, तो क्या इससे उसके हेल्थ पे फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है उसको?
1: डेफिनेटली हो सकता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा कि मुझे कितना वेट रिड्यूस करना चाहिए और कितना मुझे वेट गेन करना चाहिए। ट्रेनर्स आपको बताएंगे कि आप ये चीज करिए आपका इतना वेट कम हो जाएगा, ये चीज करने से आपका इतना वेट गेन हो जाएगा, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि आपको वेट गेन और लूज कितना करना चाहिए।
0: आजकल जो बॉडी क्लॉक है वो पहले जैसा हुआ करता था, अब वैसा नहीं है। कुछ लोग डे शिफ्ट करते हैं, कुछ लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, तो उनको अगर जिम जाना हो तो उनके लिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें फॉलो करना चाहिए?
1: देखिए, वो अपना जिम का वर्कआउट अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिनकी नाइट शिफ्ट है वो आप अपना ऑफिस जाने से पहले जो इवनिंग आवर होते हैं 5-6 के अराउंड आप अपना वर्कआउट करके आप अपना जा सकते हैं ऑफिस में, और जिनकी डे शिफ्ट है वो अपना मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में आके भी कर सकते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैं डाइट बोलूंगा, क्योंकि कई लोग जो ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो नाइट में खाना बहुत खाते हैं तो उनका फिर सारा वर्कआउट जीरो हो जाता है।
0: डॉक्टर राजीव शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे युवा साथियों को इतना अच्छा एडवाइस दिया आपने, हेल्थ से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद साक्षी।
2: निखिल, आज की बातचीत से ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि रिकवरी एक जर्नी है और इस जर्नी में सही ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी उतना ही मायने रखता है। तो चलिए इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: निखिल, आपको पता है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका दर्द बाहर से दिखाई नहीं देता। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाली हूँ।
1: मतलब देखने वाले को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग होती है।
0: बिल्कुल। तो ये कहानी है आदिल की, जो बचपन से ही बहुत कमज़ोर और दुबले पतले हुआ करते थे। स्कूल में बाकी बच्चे दौड़ते, खेलते, हर गतिविधि में हिस्सा लेते, लेकिन आदिल अक्सर पीछे रह जाते थे। लोगों को बस इतना दिखता था कि वो कमज़ोर हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता था इसके पीछे वजह क्या है।
1: तो सिमरन, क्या उनके पेरेंट्स ने उनका मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया था? क्योंकि जब ऐसी कोई स्थिति होती है तो डॉक्टर के पास जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल निखिल, उन्होंने हर डॉक्टर को दिखाया, हर ज़रूरी टेस्ट भी करवाया। हर बार यही उम्मीद रहती थी कि शायद इस बार जवाब मिलेगा, लेकिन कुछ निकलता ही नहीं था।
1: फिर कोई जवाब मिला क्या उन्हें?
0: नहीं, हर रिपोर्ट यही कहती थी कि सब कुछ सामान्य है। सोचिए, जब इंसान तकलीफ में हो लेकिन रिपोर्ट बार बार यही कहे कि सब ठीक है, तब उसके परिवार पे क्या बीतती होगी।
1: यानी बीमारी थी लेकिन उसकी पहचान ही नहीं हो पा रही थी।
0: हाँ, और ऐसे ही बीत गए पूरे 25 साल। फिर एक दिन पता चलता है आदिल को कि उनको एक रेयर जेनेटिक डिजीज है, MNGIE, यानी माइटोकॉन्ड्रियल न्यूरोगैस्ट्रोइंटेस्टिनल एन्सेफेलोपैथी।
1: नाम सुनने में ही इतना मुश्किल लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके साथ जीना कितना कठिन रहा होगा।
0: बिल्कुल निखिल, पर उसके पहले एक ब्रेक लेते हैं।

0: श्रोताओं, ब्रेक लेने से पहले हम एक रेयर डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे और हमने जाना कि ये कितना कठिन रोग है। जो किसी को हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। तो सिमरन, बताइए ये डिजीज़ होता क्या है, इसमें आखिर एक जो पेशेंट है वो किस चीज़ों से जूझता है?
1: मैं बताती हूँ निखिल आपको। इस बीमारी में धीरे धीरे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। लेकिन आदिल की लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं थी, उन्हें बुलिंग का भी सामना करने पड़ा, समाज की बातें सुननी पड़ी, लोगों के ताने भी झेलने पड़े।
0: और सच कहूँ तो कभी कभी बीमारी से ज़्यादा तकलीफ लोगों के शब्द दे जाते हैं सिमरन। हम बिना कोई सच्चाई जाने, किसी के संघर्ष को बिना जाने, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर देते हैं।
1: लेकिन निखिल, हर मुश्किल सफर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उम्मीद बनकर साथ खड़े रहते हैं। आदिल के लिए थे वो उनकी मम्मी और उनके अंकल। उन्होंने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया और कभी उनका हौसला टूटने नहीं दिया।
0: शायद इसीलिए कहते हैं ना, सिर्फ एक इंसान का भरोसा भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है।
1: और यही भरोसा आदिल की सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज वही आदिल पूरी दुनिया में इस बीमारी को लेके लोगों को एजुकेट कर रहे हैं।
0: यानी जिस इंसान को कभी कोई लोग समझ ही नहीं पाए, आज वही इंसान हजारों लोगों को समझाने में मदद कर रहा है।
1: बिल्कुल, आदिल की कहानी सिर्फ एक रेयर डिजीज की कहानी नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान की लड़ाई दिखाई नहीं देती है, इसलिए किसी को जज करने से पहले उसकी कहानी जानने की कोशिश जरूर कीजिए।
0: क्योंकि कभी कभी सबसे बहादुर लोग वो होते हैं जो चुपचाप हर दिन अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं।
1: और ऐसे ही हर रेयर डिजीज वॉरियर को हमारा दिल से सलाम।
0: क्योंकि उम्मीद सिर्फ इंसान को जिंदा नहीं रखती है सिमरन, उम्मीद दूसरों को भी जीने की वजह देती है। आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में, उससे पहले लेते हैं एक

0: तो श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री पर। आज हिस्ट्री में झाके तो एक ऐसी तारीख मिलती है जब म्यूजिक ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया था बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल भी पेश की थी।
1: 13 जुलाई 1985, यही वो दिन था जब लाइव एड कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ। एक ही दिन एक साथ लंदन के वेम्बली स्टेडियम और फिलाडोफिया के जेएफके स्टेडियम में दुनिया की सबसे बड़े म्यूजिशियन ने परफॉर्म किया। उस समय के हिसाब से ये अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल म्यूजिक इवेंट में गिना जाता है।
0: दरअसल उस समय यूथोपिया में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। लाखों लोग भूख और प्यास से जूझ रहे थे। उस दर्द को दुनिया तक पहुंचाने और राहत के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से इस कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था। इसकी पहल म्यूजिशियन बॉब गेल्डोफ और मिज उरे ने की थी।
1: सोचिए, उस दौर में ना सोशल मीडिया था, ना ही इंटरनेट आज जितना तेज था, फिर भी सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट के जरिए उस कार्यक्रम लगभग 150 देशों में लाइव दिखाया गया। अनुमान है कि करीब 1.5 अरब लोगों ने इसे देखा था। उस समय के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
0: बिल्कुल, और इस मंच पर क्वीन, यू2, डेविड बोई, एल्टन जॉन, मैडोना, मिक जैगर और पॉल मैकार्टे जैसे कई दिग्गज कलाकारों ने परफॉर्म किया था। खास तौर पर क्वीन लीड सिंगर फ्रेडी मर्करी की परफॉर्मेंस को आज भी म्यूजिक हिस्ट्री की यादगार परफॉर्मेंसेस में से गिना जाता है।
1: इस कॉन्सर्ट ने वो एहसास दिलाया कि जब पूरी दुनिया एक

0: मकसद के लिए साथ खड़ी हो तो बदलाव लाया जा सकता है।
1: बिल्कुल सिमरन, यही तो वो असली उम्मीद है कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर दुनिया एक साथ खड़ी हो जाए तो रास्ता जरूर निकलता है। और शायद यही वो वजह है कि लाइव एड कॉन्सर्ट को आज भी सिर्फ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक माना जाता है।
0: और इसी बात पे एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं।

0: तो बढ़ते हैं आज के शो के आखिरी सेगमेंट क्विक बस की तरफ, जहां हम आपको हाल फिलहाल के एक ऐसे ट्रेंड से रूबरू करवाएंगे जो आपका दिल दिमाग ध्यान जरूर हमारी तरफ खींच लाएगा।
1: देखिए, जुलाई का महीना रोबोटिक्स और नई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं के लिए काफी एक्साइटिंग बना हुआ है। ऐसे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश भर में वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड WRO इंडिया 2026 के रीजनल राउंड आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी थीम है रोबोट्स मीट कल्चर, जिसमें 8 से 22 साल तक के छात्र अपने इनोवेटिव रोबोटिक सॉल्यूशन के साथ हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि WRO दुनिया के सबसे बड़ी रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन में से एक मानी जाती है, जिसमें 100 से ज्यादा देशों के छात्र हिस्सा लेते हैं।
0: और सिर्फ WRO ही नहीं, आने वाले हफ्तों में आयोजित होने वाली टेक्नोशियन वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप जिसकी तैयारी भी जोरों शोरों पर है। इसके अलावा इसरो के भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन 2026 ने भी देश भर के युवाओं में स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपने आइडियाज दिखाने का शानदार मंच दिया है। यानी आज के युवा सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें डेवलप भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल निखिल, और इस बात को ये घटना प्रूफ भी कर देती है कि हाल ही में गोवा के 5 छात्रों का सिलेक्शन साउथ कोरिया में होने वाली वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप में हुआ है। नेशनल लेवल पर शानदार प्रदर्शन के बाद ये छात्र अब टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि देश भर में हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो रोबोटिक्स और इनोवेशन के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।
0: एकदम सही कहा आपने, ऐसे कॉम्पिटिशन सिर्फ मेडल जीतने का मौका ही नहीं देते, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, क्रिएटिविटी और इनोवेशन जैसी स्किल्स भी विकसित करते हैं। अगर रोबोटिक्स, कोडिंग या टेक्नोलॉजी में आपकी भी रुचि है तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके टैलेंट को नई उड़ान दे सकते हैं। कौन जाने अगली बड़ी इनोवेशन आपकी ही आइडिया से शुरू हो।
1: तो दोस्तों, आप स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 5, यानी हमारे जाने का वक्त हो चला है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी का कार्यक्रम युववाणी, मेरा यानी सिमरन और निखिल के साथ। कल इसी वक्त फिर से मिलना होगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने ही वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिका की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेश को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। जम्मू की एक अदालत ने अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन करने वाली पुस्तकें प्रकाशित और प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार 3 प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विवादित पुस्तकों में पर्सनैलिटीज एंड एजेंट्स ऑफ J&K और ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दों का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमन कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि मुलाकात में संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने और भारत न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से जारी संबंधों को और गहरा करने के महत्व पर जोर दिया गया। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री कानो कोजी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव व्लादिस्लाव बार्तोसिजेस्की और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर सचिव माइकल बरोंस्की से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वियतनाम के फूक्वेक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 186 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शीतल महला भी हमारे भाई सुन रहे थे शीशराम की आवाज में ये भजन।
1: तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं राजपाल सिंह और योगेंद्र की आवाज में अगला भजन।

0: तो श्रोता सुन रहे थे राजपाल सिंह और योगेंद्र की आवाज में ये भजन।
1: जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और सुरेंद्र सिंह की आवाज में सुनवाते हैं ये भजन।

0: तो श्रोता सुन रहे थे सुरेंद्र सिंह की आवाज़ में ये भजन, और इसी के साथ हमारा आज का लोकरंजनी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराजल और संयोजक शिव नंदन लाल।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंजनी, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को है, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
3: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी
4: शिवांश।
3: शिवांश और मैं आपको लेकर चलेंगे खेल जगत में अलग अलग जुड़ी खेल गतिविधियों के साथ। लेकिन इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत, जहां एक तरफ फीफा का खुमार सारी दुनिया पर चढ़ा हुआ है, लेकिन क्रिकेट जगत में हुआ है एक बहुत ही बड़ा कारनामा, क्योंकि भारतीय महिला टीम ने यह कारनामा हासिल किया है। क्योंकि जहां पर यह टेस्ट मैच खेला जा रहा था, वहां पर टीम इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी जो जीत है वो हासिल की है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर भारतीय टीम ने, जो एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। भारत ने खेले गए एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में आखिरी दिन आज स्नेह राणा की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन करते हुए 270 रन के बड़े अंतर से इस मैच को जीत लिया है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं यहां पर कोच ख्याति गुलानी, फॉर्मर क्रिकेटर, इनके साथ जुड़ेंगे और जानेंगे आखिर इस जीत को वो कैसे देखती हैं। ख्याति जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
3: मैम। इतनी बड़ी जीत भारतीय टीम की, और भी लॉर्ड्स जैसे मैदान पर जहां एक इतिहास लिखा जाता है, तो अब ये इतिहास के पन्ने एक बार फिर यहां पर दर्ज किया है भारतीय महिला टीम ने, ये कारनामा किया, क्या कहेंगी आप?
5: जी बिल्कुल, एक क्रिकेटर के लिए डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग मोमेंट। एंड अगर आप देखेंगे, ये तो पहली ऐतिहासिक ग्राउंड है, और यहाँ पे इस तरीके का टूर्नामेंट मिलना, खेलना, वो भी स्पेशली टेस्ट मैच, जो एक किसी भी क्रिकेटर का ड्रीम फॉर्मेट है, और वहाँ पे जीत हासिल करना विमेंस क्रिकेट, आज तक लॉर्ड्स में ये चांस नहीं मिला, और जब ये चांस मिला तो उन्होंने एक इतिहास रच के दिखाया। तो वी ऑल क्रिकेटर्स आर वेरी हैप्पी।
3: पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाए 285 रन, उसमें क्रांति गौड़ ने 5 विकेट जो है चटकाए, जिसकी बदौलत जो इंग्लैंड की टीम थी वो 170 रन पर ऑल आउट हो गई। क्रांति ने जो क्रांति मचाई, उनके लिए क्या कहना है?
5: देखिए, इस क्रिकेटर को मैं काफी 3-4 साल से नोटिस कर रही हूँ, तो ये स्पेशल हैं। डेफिनेटली डोमेस्टिक क्रिकेट में भी एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए खेलती हैं, और जिस साल वो वहां पर फाइनल खेल रही थी मध्य प्रदेश के लिए, बंगाल से इनका मैच था, वहां पे भी उन्होंने 5 विकेट लेके और एमपी को फाइनल का खिताब दिलाया था। तो वहीं पे लग गया था कि ये क्रिकेटर कुछ स्पेशल है, कुछ करके दिखाएगी। फिर उसके बाद वो चैलेंजर्स में मेरी टीम में थी, तो जिस तरीके से वो बॉल को स्विंग कराती हैं, बैटर्स जो उनको काफी बार खेल चुके हैं वो भी नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो हर बार एक सरप्राइज बॉल लेकर आती थी। तो जो उन्होंने इस तरीके से लॉर्ड्स में जो बॉल डाली और 5 विकेट ली, और जिस तरीके से विकेट ली कि पहला बॉल अंदर फिर दूसरा बॉल बाहर, तो वो उनका दिमाग और किस तरीके से वो स्विंग कराती हैं, तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल।
3: और जब दूसरी पारी स्टार्ट होती है, तो दूसरी पारी में भी जो भारतीय लड़कियों की जो ये लय थी वो बरकरार रहती है। दूसरी पारी में 341 रन बनाए, जिसके जवाब में 186 रन पर आउट हुई। लेकिन यात्सिका की बहुत बड़ी भूमिका यहाँ है, उन्होंने इस इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल निभाया, एक पारी खेल के शतकीय है, इस प्लेयर के लिए क्या कहना है?
5: देखिए, यात्सिका भाटिया काफी टाइम से इंजर्ड थी और एनसीए में वो रह रही थी, वो बहुत डिप्रेस्ड भी होती थी, फ्रस्ट्रेट भी हो रही थी, क्योंकि 2 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और अभी वो जब रिटर्न टू प्ले हुई है तो उस टाइम पे भी लोगों ने बहुत ज्यादा ये बोला कि पता नहीं वो कैसा खेलेंगी, क्यों डिसीजन लिया, क्यों उनको डोमेस्टिक क्रिकेट पहले नहीं खिलाया। लेकिन आप देखेंगे ये बड़ी बड़ी गेम्स के लिए बनी है, तो उन्होंने करके भी दिखाया। जिस तरीके का उन्होंने क्रिकेट खेला, जैसी विकेट कीपिंग की, आई थिंक उन्होंने प्रूव किया दैट वो छोटी प्लेयर नहीं है, वो बहुत बड़ी प्लेयर है, और आगे फ्यूचर में काफी आई थिंक उनके हेल्प मिलेगी टीम को।
3: एक मन में एक थोड़ा सा निराशाजनक जो स्थिति बनी थी अभी कुछ समय पहले वर्ल्ड कप में आगे परफॉर्म ना कर पाने की, आपको क्या लगता है भारतीय महिला टीम ने ये जो कारनामा किया है, कुछ दुख कम किया फैंस का?
5: देखिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कप, वो दो साल में तीन साल में एक बार होता है, कभी T20 और वनडे जरूर जीता, उसके अगले ही साल अभी T20 था, लेकिन वर्ल्ड कप का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक अलग ही फॉर्मेट है, उसका एक अलग ब्यूटी है और उसकी फैन फॉलोइंग टोटली डिफरेंट है। जो क्रिकेट को प्यार करते हैं वही टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो कईयों के लिए टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जीत उनके लिए बहुत स्पेशल है। अगर आप सुनील गावस्कर से बात करें, द्रविड़ से बात करें, और वीवीएस लक्ष्मण जो एनसीए के डायरेक्टर है, तो उनके लिए ये जीत आई एम श्योर बहुत बड़ी होगी। बट जो फैंस जिनको सिर्फ उतना समझ आता है कि बस एक वर्ल्ड कप उठाना सब कुछ है, तो उनको लगता है कि T20 क्रिकेट का ये जो खिताब बहुत जरूरी था। लेकिन हम जो एज अ वुमेन क्रिकेटर, इफ यू आस्क मी देन डेफिनेटली फॉर मी बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बट येस दिस इज अ स्पेशल विन।
3: और वो भी इंग्लैंड के साथ जब हम जीतते हैं और वो इतिहास रचा जाता है तो एक अलग ही खुशी होती है। अब जो ये टीम कॉम्बिनेशन है, स्नेह राणा की अगर बात करें तो स्नेह ने भी यहाँ पे काफी स्नेह दे दिया है विकेट्स लेकर, ओवरऑल अब आगे की संभावनाओं के लिए आपको क्या लगता है टीम अब कितनी तैयार है?
5: देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये जीतना हारने से आई थिंक कोई टीम अच्छी या बुरी नहीं होती, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कई बार आपका जो मेन प्लेयर है या आपकी कॉम्बिनेशन आप बना के चलते हैं माइंड में वो नहीं चल पाते, तो आप उसके बाद आप कैसा कमबैक कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे अभी ही 1 वीक पहले ही वो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उसमें हार थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ देखें इस टीम की तो डेफिनेटली इतनी अच्छी थी कि वो इतने बड़े जो जहाँ पे टेस्ट ऑफ स्किल्स बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट को, तो वहां पे अगर परफॉर्म करके जीते हैं तो आई एम श्योर दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड स्नेह राणा की अगर बात करें, वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, और टेस्ट क्रिकेट की ही वजह से उनकी वापसी वनडे में भी हुई थी, तो आई थिंक शी इज अ वेरी स्पेशल प्लेयर फॉर द टीम एंड इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम।
3: तो मुझे लगता है कि एक कोच के नजरिए से और अपने जो हमारी भारतीय टीम है, ये खुशी हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। ख्याति जी आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू सो मच।
3: तो शिवांश, जिस तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया ने ये कारनामा किया है ये अब एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, और अब अगली जो खेल खबर है वो भी ऐतिहासिक ही होने जा रही है क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ग्लासगो में होने वाले हैं, और उसका जो काउंटडाउन है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी एक बार फिर अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे। हमारी इस खास कॉमनवेल्थ काउंटडाउन श्रृंखला में हर एपिसोड में हम एक खेल पर बात करेंगे, जानेंगे उसका इतिहास, भारत की उम्मीदें, और सबसे अहम इस बार क्या नया होने वाला है। आज से शुरुआत करते हैं खेलों की आत्मा कहे जाने वाले खेल एथलेटिक्स से, क्योंकि ट्रैक पर दौड़ से लेकर मैदान में लंबी छलांग और भाला फेंक तक यही बनते हैं नए रिकॉर्ड्स और नए सितारे। चलिए जानते हैं एथलेटिक्स क्यों खास है। एथलेटिक्स कॉमनवेल्थ गेम्स का सबसे पुराना और प्रमुख खेल है जो 1930 में पहले संस्करण से ही इसका हिस्सा रहा है। 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स का इतिहास और अधिक समृद्ध हो गया है क्योंकि इस बार 1500 मीटर की जगह कॉमनवेल्थ माइल की वापसी हुई है और महिलाओं की माइल रेस पहली बार शामिल हो गई है। ऐतिहासिक रूप से अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो स्वतंत्रता के बाद से ही कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए एथलेटिक्स हमेशा से एक बड़ा आकर्षण रहा है। 1958 कार्डिफ, महान धावक मिल्खा सिंह ने 440 गज की दौड़ लगभग 400 मीटर में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलवाई थी। 2010 दिल्ली में कृष्णा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर एक इतिहास रचा था। 2018 में गोल्ड कोस्ट में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। 2022 बर्मिंघम में अविनाश सांबले ने स्टीपल चेज में रजत और एल्हॉन्स पॉल ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास लिखा था। चलिए जानते हैं कि 2026 ग्लासगो गेम्स में एथलेटिक्स में क्या कुछ खास है। ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में आयोजकों ने खेलों की सूची को 10 खेलों तक सीमित कर दिया है, लेकिन एथलेटिक्स के खेलों को पूरी तरह से 43 स्पर्धाएं और 16 पैरा एथलेटिक्स खेलों के साथ बरकरार रखा गया है। इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। करीब 60 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में माइल रेस की वापसी हो रही है। इसकी जगह पहले 1500 मीटर दौड़ होती थी, अब पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में कॉमनवेल्थ माइल आयोजित होगी। महिलाओं के लिए ये पहली बार होगा कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में माइल रेस में हिस्सा लेंगी। पहली बार मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले होगी। ग्लासगो 2026 में पहली बार मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले शामिल की गई है। इसमें पुरुष और महिला एथलीट एक ही टीम का हिस्सा होंगे। ये प्रतियोगिता जेंडर इक्वालिटी और टीम वर्क को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में सबसे बड़ा पैरा एथलेटिक्स कार्यक्रम होगा। 16 पैरा एथलेटिक्स पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को पहले से ज्यादा अवसर मिलेंगे। इस बार मैराथन और रोड रनिंग जैसी आउटडोर रोड स्पर्धाएं कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगी। सभी ट्रैक एंड फील्ड मुकाबले स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में आयोजित होंगे। आइए अब नजर डालते हैं भारत की स्पर्धाओं पर। AFI ने भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स टीम में 22 पुरुष और 10 महिला एथलीटों को शामिल किया है। ज्यादातर एथलीट ने फेडरेशन कप और इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में क्वालिफाइंग मार्क हासिल करके अपनी जगह बनाई थी। ये दो इवेंट AFI द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स सिलेक्शन ट्रायल के तौर पर तय किए गए थे। हालांकि कुछ एथलीटों को छूट दी गई थी जिन्होंने पहले से इजाजत मांगी थी, जिससे उन्हें विदेश में होने वाले मुकाबलों में एंट्री स्टैंडर्ड को पूरा करने की अनुमति मिली। छूट पाने वालों में पारुल चौधरी, जिन्होंने फ्रांस में 5000 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था, लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह, शॉर्ट पुटर मनप्रीत, रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी और लॉन्ग जम्पर लोकेश सत्यनाथन जैसे खिलाड़ी शामिल थे। शॉर्टलिस्ट में स्प्रिंटर गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर, लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर, पूर्व एशियाई चैंपियन शॉर्ट पुटर तजिंदर पाल सिंह तूर और पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले देव मीणा और कुलदीप कुमार भी शामिल हैं। 400 मीटर की दौड़ 45 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले भारतीय पुरुष विशाल टीके को राजेश रमेश, अंसा बाबू, नीरू पाठक और रशदीप कौर के साथ मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले पूल में शामिल किया गया है। आइए नजर डालते हैं भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की एथलेटिक्स टीम पर। पुरुषों की यदि बात करें तो पुरुषों में गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, गुलवीर सिंह, तेजस शिरसे, यशस पलक्ष, संतोष कुमार तमिल रासन, सर्वेश कुशारे, आदर्श राम, देव मीणा, कुलदीप कुमार, मुरली श्रीशंकर, लोकेश सत्यनाथन, प्रवीण चित्रवेल, सेल्वा प्रभु, समरदीप सिंह गिल, तजिंदर पाल सिंह तूर, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, यशवीर सिंह, तेजस्विन शंकर, विशाल थेनारासु, राजेश रमेश। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की टीम में पारुल चौधरी, पूजा सिंह, मनप्रीत कौर, सीमा, निधि रानी, रवीना, प्रियंका गोस्वामी, रशदीप कौर, अंसा बाबू और नीरू पाठक शामिल हैं। भारत में एथलेटिक्स के इतिहास पर और एथलेटिक्स में हमारे खिलाड़ियों की संभावनाओं को लेकर हमने बात की है सीनियर खेल पत्रकार जी राजा रमन से। एथलेटिक्स में भारत की किस तरह की संभावनाएं रहने वाली हैं, इस पर जी राजा रमन कहते हैं,
4: इसे मदर स्पोर्ट कहा जाता है अलोंग विद स्विमिंग और जिम्नास्टिक्स। और मदर स्पोर्ट में भारत का प्रदर्शन काफी कमजोर ही रहा है, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक गेम्स या विश्व स्तर पर कोई खेल हो, वहां पे एथलेटिक्स में जरा कमजोरी रहा है भारत का दबदबा। हालांकि अभी हम देखते हैं कि नीरज चोपड़ा के 2 ओलंपिक में मेडल है और फिर 2 विश्व चैंपियनशिप में मेडल है, लेकिन जो हमारी आबादी है, जो हम खेलते हैं, उसको लेके इसको कमजोरी मानना पड़ेगा। नंबर ऑफ मेडल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, परफॉर्मेंसेस भी कोई उच्च स्तर के नहीं रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में खास करके। हालांकि जब दिल्ली में हुए थे वहां पे बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिले थे। मुझे याद है अभी भी के डिस्कस थ्रो में पोडियम स्वीप हुआ था भारत का महिलाओं के डिस्कस थ्रो में। लेकिन ओवरऑल मैं भारत को कमजोरी मानूंगा कॉमनवेल्थ गेम्स के हिसाब से, जहां पे एथलेटिक का कॉम्पिटिशन हो। तो इसका बहुत सीधा रीजन है और वो ये है कि जहां पे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देश आगे हो, जिनके पास वर्ल्ड चैंपियंस है, जिनके पास ओलंपिक मेडलिस्ट है, वहां पे भारत का जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वो जरा कम ही मानना पड़ेगा। और अब की बार की अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा से उम्मीदें जरूर रहेंगी, और जो भी बाकी मेडल्स आ गए वो बोनस होंगे। हालांकि मुरली श्रीशंकर से उम्मीदें रहेंगी, तेजस्वी शंकर से उम्मीदें रहेंगी, और फिर हाई जंपर सर्वेश कुशारे से उम्मीदें रहेंगी, और शायद पारुल चौधरी कुछ कमाल कर दिखाएगी 3000 मीटर स्टीपल चेस। पैरा में भी जो भारत का जो स्ट्रेंथ है, जैसे जैवलिन हो गया या हाई जंप हो गया, इनके कॉम्पिटिशन नहीं है। अब पैरा को एक एक्स्ट्रा इवेंट लगाया है, कुछ कुछ इवेंट होंगे, बहुत सारे इवेंट नहीं होंगे पैरा के, जो हमको पैरालंपिक्स में देखने को मिलता है, जो पैरा एशियन गेम में देखने को मिलता है, वो यहाँ देखने नहीं मिलेगा। एथलेटिक्स में मेडल्स का स्कोप जरा कम ही है, ये हमको मानना पड़ेगा। हालांकि इस साल प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है भारतीय एथलीट्स का, 36 नेशनल रिकॉर्ड, लोग 26 कहते हैं, मेरे हिसाब से वो 36 नेशनल रिकॉर्ड के आसपास इस साल हुए हैं। लेकिन हमारा नेशनल रिकॉर्ड और जो कॉमनवेल्थ का स्टैंडर्ड है उनमें अंतर है, वो शायद हमें आसानी से दिखता नहीं है।
3: कुल मिलाकर अब जो टीम जा रही है उसमें फिर भी अगर एक प्रेडिक्शन आपकी ली जाए तो कितने मेडल्स की लगता है यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं हम?
4: उम्मीद तो आपको 7 या 8 मेडल जरूर कर सकते हैं। हमारे खिलाड़ी अभी बेहतर होते आ रहे हैं, दे आर बिकमिंग वर्ल्ड स्टैंडर्ड। विश्व चैंपियनशिप में 7-7, 8-8 फाइनलिस्ट हो जाते हैं एक साथ हमारे, हालांकि पिछली बार टोक्यो में 3 ही थे, लेकिन हमारे एथलीट्स आर नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड, पहुंच ही रहे हैं वहां पर। और देखना ये होगा कि इस बार प्रदर्शन हमको किस दिशा में ले जाता है। वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, क्या वो सही दिशा है, क्या वो जो टैक्टिक्स अपनाते हैं वो सही होंगे, ये देखने वाली बात है। एक मेडल शायद आपका गारंटी है, वो जैवलिन थ्रो मैन में नीरज चोपड़ा का, बाकी 5 या 6 मेडल आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं।
3: तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा की अगुवाई में भारतीय एथलेटिक्स टीम ग्लासगो में पदक की सबसे बड़ी दावेदार है। अब देखना होगा कि ग्लासगो में भारतीय एथलीट कितने सफल होते हैं और कितने पदक जीतते हैं।
6: दिस इज द कॉमनवेल्थ गेम्स, दिस इज ग्लासगो 2026।
3: तो अब हम तैयार हैं उस चीज को करने के लिए जिसका इंतजार हमने बहुत समय से किया हुआ है, और अब देखना यही होगा कि कैसे यहाँ पर जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो पदक जीत करके आते हैं। लेकिन फिलहाल हम चलेंगे अपने सहयोगी शिवांश के पास और जानेंगे कि उनके पिटारे में क्या है।
7: जी कविता, तो श्रोताओं, अगली खबर जुड़ी है अंडर 23 एथलेटिक्स से, आइए जानते हैं क्या कुछ खास है। किसी भी देश के खेलों का भविष्य सिर्फ उसके स्थापित सितारों से नहीं, उन युवा खिलाड़ियों से भी पहचाना जाता है जो पहली बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतरते हैं और अपने प्रदर्शन से आने वाले कल की तस्वीर दिखाते हैं। चीन के ऑर्डोस में आयोजित पहली एडिशन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश की। 4 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया। 54 सदस्यीय भारतीय दल के लिए यह अभियान ट्रैक से लेकर फील्ड इवेंट्स और रिले तक कई यादगार प्रदर्शनों का गवाह बना। भारत की अभियान की शुरुआत ही शानदार रही। प्रतियोगिता के पहले दिन अस्तिक प्रधान, सेंड्रामोल साबू, सेतु मिश्रा और श्रावणी सचिन सांगले की भारतीय चौकड़ी ने मिश्रित 4x400 मीटर रिले में 3:18.64 का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। मुकाबला बेहद करीबी रहा और भारतीय टीम ने मेजबान चीन को केवल 10वें हिस्से के अंतर से पीछे छोड़ा। पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ में भारत को दोहरी सफलता मिली। शिवाजी परशुराम ने 14:08.19 के साथ रजत पदक जीता, जबकि विनोद सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं की 3000 मीटर स्टिपल चेस में प्राची अंकुश देवकर ने कांस्य और पुरुषों के डिस्कस थ्रो में भारत प्रीत सिंह ने 52.91 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। दूसरे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में शकील ने 1 मिनट 48.78 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में भुवनेश्वरी देवी 2 मिनट 10.20 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही, जबकि पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में अभय सिंह ने 20.96 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक हासिल किया। तीसरे दिन शिवाजी परशुराम एक बार फिर पोडियम पर पहुंचे। पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता और इस चैंपियनशिप में अपना दूसरा पदक हासिल किया। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में श्रावणी सांगले ने कांस्य पदक जीतकर अपने अभियान में एक और पदक जोड़ा, जबकि महिलाओं की डिस्कस थ्रो में प्रिया ने 50.44 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने आखिरी दिन अपने अभियान का सबसे दमदार समापन किया और 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। पुरुषों के भाला फेंक में आनंद सिंह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू को यादगार बनाते हुए अंतिम प्रयास में 80.57 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने पहली बार 80 मीटर की प्रतिष्ठित सीमा भी पार की। इसी स्पर्धा में शिवम ने 77.70 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीतकर भारत को दोहरा पोडियम दिलाया। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने 3 मिनट 33.62 सेकंड का समय लेकर भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा महिलाओं की 4x100 मीटर रिले टीम ने रजत पदक हासिल किया, जबकि पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने 3 मिनट 4.24 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीतकर भारतीय अभियान को शानदार अंत दिया। इस चैंपियनशिप में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ 16 पदकों की संख्या नहीं रही। पदक छोटी और लंबी दूरी की दौड़, बाधा दौड़, स्टिपल चेज, डिस्कस और भाला फेंक से लेकर अलग अलग रिले स्पर्धाओं तक आए। ये प्रदर्शन भारतीय युवा एथलेटिक्स में उभरती हुई गहराई की ओर भी इशारा करता है। शिवाजी परशुराम ने 2 रजत पदक जीते। श्रावणी सांगले ने मिश्रित रिले के स्वर्ण के साथ 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य हासिल किया, जबकि सेतु मिश्रा भी मिश्रित रिले के स्वर्ण के बाद पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। और फिर आनंद सिंह का 80.57 मीटर का थ्रो, जिसने भारतीय अभियान को एक यादगार शिखर दिया। ऑर्डोस में जब 4 दिनों की प्रतियोगिता समाप्त हुई तो भारत के खाते में 16 पदक थे और पदक तालिका में 4th स्थान। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे इससे बड़ी कहानी उन युवा खिलाड़ियों की है जिन्होंने एशिया के मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आज इनमें से कई नाम भारतीय खेल प्रेमियों के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भविष्य अवसर ऐसे ही मंचों पर मिलते हैं। ऑर्डोस से भारत सिर्फ 16 पदक लेकर नहीं लौटा, बल्कि कई ऐसे युवा नामों के साथ लौटा है जिनकी अगली मंजिल अब सीनियर स्तर पर एशिया और दुनिया के बड़े मंच होंगे।
3: तो बड़े मंचों के लिए भी भारत जो है लगातार प्रयासरत है, और अब तो खेलों का स्तर इतना ज्यादा ऊपर उठ चुका है इंडिया का, जिसमें कि फिलहाल ये देखने वाली बात ही होगी कि आगे जब हम और आगे बढ़ेंगे तो कितने पदक हमारी झोली में आते हैं। फिलहाल एथलेटिक्स के ग्राउंड से निकलकर अब आपको लिए चलते हैं टेनिस कोर्ट पर, जहां पर मेरे साथी शिवांश तैयार है अगली खेल खबर के साथ।
7: टेनिस की दुनिया में कुछ मुकाबले सिर्फ जीत और हार का फैसला नहीं करते, वो ये भी बताते हैं कि दबाव के सबसे बड़े क्षणों में कौन अपने खेल, अपने धैर्य और अपने इरादों पर सबसे अधिक भरोसा रखता है। लंदन के ऐतिहासिक सेंटर कोर्ट पर रविवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां यानिक सिनर ने शुरुआती सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए अलेक्जेंडर को हराया और लगातार दूसरी बार विंबलडन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के सिनर ने 4 सेट तक चले रोमांचक फाइनल में अलेक्जेंडर को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से मात दी। 3 घंटे 46 मिनट तक चले इस मुकाबले की शुरुआत बेहद कड़ी रही। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सर्विस पर मजबूत पकड़ बनाए रखी और फैसला टाई ब्रेक में हुआ। अलेक्जेंडर ने दबाव के क्षणों में बेहतर खेल दिखाते हुए टाई ब्रेक 9-7 से जीत लिया और पहला सेट अपने नाम कर सिनर को शुरुआती झटका दिया। दूसरे सेट में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच बराबरी की टक्कर जारी रही। 12 गेम तक कोई भी खिलाड़ी दूसरे की सर्विस नहीं तोड़ सका और एक बार फिर सेट टाई ब्रेक में पहुंचा, लेकिन इस बार सिनर पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने टाई ब्रेक में शुरुआत से बढ़त बनाई और उसे 7-2 से जीतकर मुकाबला 1-1 सेट की बराबरी पर ला दिया। यहीं से मैच तस्वीर बदलने लगी। तीसरे सेट में अलेक्जेंडर को सिनर की सर्विस तोड़ने का एक मौका मिला, लेकिन सिनर ने उसे बचा लिया। इसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर की सर्विस तोड़कर बढ़त हासिल की और तीसरा सेट 6-3 से जीत लिया। चौथे सेट में भी सिनर ने अपना संयम बनाए रखा। 7वें गेम में उन्होंने अलेक्जेंडर की सर्विस तोड़ी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार 6-4 से चौथा सेट जीत

0: हुए सिनर ने खिताब अपने नाम कर लिया। तो आइए जानते हैं इस जीत के बाद सिनर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: Amazing achievement from my side. Very tough match today against Sasha. Felt like both very high level because it was not easy to play. It was very dusty, breezy. As we're standing here again as champion means a lot to me. I think every Grand Slam is different. Different story, different environment, different feelings before the tournament. For me, this one means a lot because it was a tough one after Paris again. But coming here, you know, I try to put myself in the best possible position to be as competitive as possible and put in a lot of work. Sacrificing a lot of my time and everything to be in this position, you know. So having this achievement means a lot to me and it was an amazing day.
0: सिनर ने पूरे मुकाबले में 58 विनर्स लगाए और अपने खिलाफ आए एकमात्र ब्रेक पॉइंट को भी बचाया। वहीं अलेक्जेंडर ने अपनी पहली सर्विस का 76% हिस्सा कोर्ट में डाला और शुरुआती दो सेटों में सिनर को कड़ी चुनौती दी, लेकिन तीसरे और चौथे सेट में सिनर ने एक एक निर्णायक सर्विस ब्रेक हासिल कर मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। इस जीत के साथ 24 वर्षीय यानिक सिनर लगातार दो बार विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों की खास सूची में शामिल हो गए। वो विंबलडन पुरुष एकल का सफलतापूर्वक बचाव करने वाले 10वें खिलाड़ी बने। ये उनके करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। दूसरी ओर अलेक्जेंडर के लिए भी ये विंबलडन यादगार रहा। अपने पिछले 9 प्रयासों में वो कभी क्वार्टर फाइनल से आगे कभी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई। वो 1995 के बोरिस बेकर के बाद विंबलडन पुरुष एकल फाइनल में पहुंचने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी भी बने। तो आइए जानते हैं इस मैच में हार के बाद अलेक्जेंडर ने क्या कहा।
1: I think overall, compared to where I was last year, it's obviously a very different championship for me. And of course, I would have loved to lift the trophy, but he was better than me. And then I was struggling to push off on the serve a little bit. So my serve speed went down, but everything else was fine. I was moving fine from the baseline and playing from the baseline fine, but from on the serve, I was struggling a bit more than you.
0: लेकिन रविवार का दिन यानिक सिनर के नाम रहा। पहला सेट हारने के बाद उन्होंने न जल्दबाजी दिखाई, न अपने खेल की दिशा बदली। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और जब मौका मिला उसे जाने नहीं दिया। विंबलडन के सेंटर कोर्ट पर आखिर में ट्रॉफी एक बार फिर उन्हीं हाथों में थी जिन्होंने एक साल पहले इसे पहली बार उठाया था। फर्क बस इतना था कि पिछली बार सिनर ने विंबलडन जीता था और इस बार उन्होंने साबित किया कि इस जीत को दोहराना भी जानते हैं।
2: तो खेल के मैदान में हर दिन होता है कुछ ना कुछ नया, हर दिन बनते हैं चैंपियन, लेकिन कई बार इतिहास दोहराए भी जाते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं बॉक्सिंग की। और बॉक्सिंग में अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का जो शानदार प्रदर्शन है वो जारी है। मैं बात कर रही हूँ एशियन अंडर 19 और एशियन अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, जिसमें अगर अंडर 19 की बात करें लड़कियों की, तो यहाँ पर हमारे जो टोटल मेडल है वो रजत पदक की संख्या अब तक 13 हमारे भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कर ली है, जिसमें भारत की गुंजन ने, चंद्रिका ने, इसके साथ साथ यहाँ पर जो श्रीदेवी, प्राची चाहत, अंशिका, मेघा, प्राची टोकस, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे निशा की, इसके साथ निकिता चंद, काजल, मुस्कान और प्रियंका ने अपने अपने वेट कैटेगरी में जो आगे के मुकाबले हैं उनके लिए यहाँ से रास्ता जो है वो तय कर लिया है। और अपने ओपोनेंट को हराकर ये सभी लड़कियां अब अगले दौर में खेलेंगी 15 जुलाई को, जो कि होगा यहाँ पर पदक चेंज, उसका कलर जो है वो बदलने के लिए मुकाबले। देखते हैं कि अब इन भारतीय महिला मुक्केबाजों में से किसके मेडल का कलर बदलता है और कौन घर पर लेकर आता है पंच सोने या चांदी पर लगाकर। फिलहाल अब बॉक्सिंग की खबर को यहीं पर विराम देकर चलते हैं शिवांश के पास अगली खबर के लिए।
0: एक महीने पहले अंताल्या में भारतीय तीरंदाजों के निशानों पर सोना था। धीरज ने पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीता था और कुमकुम अनिल मोहम्मद के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में भी भारत को चैंपियन बनाया था, लेकिन मैड्रिक में विश्व कप के चौथे और आखिरी चरण में कहानी कुछ अलग रही। इस बार भारत ने एक रजत और एक कांस्य सहित कुल 2 पदक जीते और दोनों पदकों में शामिल रहा सिर्फ 17 साल की प्रतिका प्रदीप का नाम। महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेखा, प्रतिका प्रदीप और चिकिता की भारतीय तिकड़ी ने रजत पदक जीता। सेमीफाइनल में भारत ने मजबूत दक्षिण कोरियाई टीम को 231-228 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन खिताबी मुकाबले में कोलंबिया ने भारत को 232-228 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टीम स्पर्धा के रजत के बाद प्रतिका ने व्यक्तिगत कंपाउंड में भी भारत को पदक दिलाया। कांस्य पदक के मुकाबले में उन्होंने तुर्की के हजल को 145-142 से हराकर अपने विश्व कप करियर का पहला व्यक्तिगत पदक जीता। एक ही चरण में टीम रजत और व्यक्तिगत कांस्य जीतकर प्रतिका मैड्रिक में भारत के अभियान का सबसे सफल चेहरा रही। लेकिन जहां महिला कंपाउंड तीरंदाजों ने भारत का पदक खाता संभाला, वहीं रिकर्व का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। ये निराशा इसलिए भी अधिक रही क्योंकि अंताल्या में भारत के दोनों स्वर्ण पदक रिकर्व से ही आए थे। मैड्रिक में पुरुष और महिला दोनों रिकर्व टीमें क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई। युवा कीर्ति शर्मा ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में अंतिम चार तक पहुंचकर पदक की उम्मीद जगाई, लेकिन सेमीफाइनल और फिर कांस्य पदक का मुकाबला हार गई। रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में भी भारत पदक के बेहद करीब पहुंचा। धीरज और कीर्ति शर्मा की जोड़ी ने इटली के खिलाफ कांस्य पदक मुकाबले में 3-1 की बढ़त बनाई, लेकिन इसे जीत में नहीं बदल सकी और 3-5 से हार गई। अंताल्या में दो स्वर्ण जीतने वाले धीरज भी मैड्रिक से बिना पदक लौटे, जबकि भारतीय कंपाउंड पुरुष तीरंदाज भी पोडियम तक नहीं पहुंच सके। इस तरह विश्व कप के दो लगातार चरणों ने भारतीय तीरंदाजी की दो अलग तस्वीरें दिखाई। अंताल्या में रिकर्व ने भारत को दोनों स्वर्ण पदक दिए थे, जबकि मैड्रिक में भारत के दोनों पदक महिला कंपाउंड से आए, और इन दो पदकों के बीच सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरी प्रतिका प्रदीप। सिर्फ 17 साल की उम्र में एक टीम रजत और पहला व्यक्तिगत विश्व कप कांस्य भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी के लिए एक उत्साहजनक संकेत है। मैड्रिक से भारत दो पदक लेकर लौटा, लेकिन साथ ही रिकर्व में निरंतरता की चुनौती भी सामने आई।
2: तो अनिल मोहद के साथ यहाँ पर ये रिपोर्ट हम कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही शिवांश को और मुझे अपने प्रोड्यूसर शहनवाज सर के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: एक महीने पहले
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
4: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की।

0: भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। In women's cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur today recorded a historic win in one-off test against host England at the Lord's. India defeated England comfortably by 270 runs in the first ever women's test held at Lord's. Chasing a target of 457 runs, the hosts were all out for 186 in their second innings before lunch on day 4. For India, Sneha Rana took 4 wickets, while Sayali Sadghare, Kranti Gaur and Deepti Sharma bagged 2 wickets each. India had declared the second innings at 341 for 7 yesterday at the stroke of tea, giving a target of 457 runs. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at the Lord's. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway this afternoon. The 63-kilometre, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway, with India's second longest elevated corridor, is also the country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. The expressway is designed for speeds of up to 120 kilometers per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 45 minutes. Supreme Court today directed the Special Investigation Team or SIT constituted by the UP government to submit a status report on alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. The court also issued notice to the Union Government, the UP government and the Sri Ram Janmabhoomi Tir Kshetra Trust on petition seeking a CBI probe into alleged embezzlement of donations meant for the Ayodhya Ram Mandir. A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joy Malia Bagchi and V. Mohan heard the petitions. The Supreme Court today stayed a Madras High Court order which directed the Tamil Nadu government to ensure that no cow or calf is slaughtered in the state. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta passed the order while hearing a plea filed by the state government challenging a May 27 order of the High Court. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The ministry said the total imports, merchandise and services combined for June this year is estimated at $88.76 billion, registering a positive growth of over 26% as compared to the same month last year. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, will begin tomorrow at Bharat Mandapam in New Delhi. The four-day event will showcase India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology,

0: सम्बोधयन् मुख्यमंत्री अवदत् यत् विगत द्वादश वर्षेषु भारतं विश्वस्य शीघ्रतम विकासमान देशेषु अन्यतमं जातम्। असौ अवदत् यत् पूर्वं मध्य प्रदेशः केवलं कृषेः कृते प्रसिद्धः आसीत्, किन्तु अधुना राज्ये ड्रोन यानात् आरभ्य प्रक्षेपणास्त्रपर्यन्तं निर्माणं क्रियते। भारत जापान देशौ अद्य स्वतन्त्रं मुक्तं नियमाधारितं च हिन्द प्रशांत प्रदेशं प्रवर्धयितुं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः सुदृढीकृतवन्तौ। जापान देशस्य टोक्यो नगरे आयोजिते अष्टमे रक्षा नीति संवादावधौ उभौ देशौ विद्यमानस्य क्षेत्रीय वैश्विकयोः सुरक्षा पर्यावरणस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। टेनिस क्रीडायां इटली देशस्य यैनिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति इति वार्ताः।
1: हाँ,
2: Namaskar and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we shall be taking your calls on your market-related queries. But please do remember, friends, that we do not address stock or company-specific queries. Well, you may call us on the numbers, and the numbers are 233-144-4.
3: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। शीतल बहन, देखिए आज हम ग्राम संसार में लेके आए हैं कुछ उपदेश, कुछ जानकारी और कुछ बातचीत भी है और योजनाओं के बारे में भी हम अपने भाइयों को जानकारी देंगे।
4: जी बिल्कुल, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे विषय पे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो नई दिशा दे रहा है, और वो है ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य
3: खाद्य प्रसंस्करण। जी हाँ, और इसके उपलक्ष्य में जब हमारी जो बहनें हैं वो जो काम कर रही हैं उसके लिए ये होता है कि जो वो जमा पूंजी है उनकी, उससे कोई रोजगार शुरू करती हैं तो कोई भी खाने की चीज़ है उसको पैकेट में, जैसे अचार मुरब्बा ये सब चीज़ें होती हैं, वो बनाती हैं और फिर उसको पैक करके बेचती हैं, तो ये संभावनाएँ हमारे गाँव में बहुत चल रही हैं।
4: इसी संबंध में अपने श्रोताओं को सुनाते हैं बातचीत ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं। डॉक्टर रितु सिंह, आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र ऊर्जवा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं यमुना देवी। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई बहनों के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है उनका आर्थिक स्तर सुधारने के लिए। आइए सुनते हैं।
5: जी मैम, ग्रामीण क्षेत्र से बहुत से ऐसे हुनर अपने हाथों में लेकर के बाहर निकल रहे लोग, और आज के ज़माने में देखा जाए तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती जो घर में बनाई जाती थी बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, आज उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और ख़ास करके हम बात करें तो जो उद्योग के तौर पे स्थापित हो सकता है वो पहले नहीं हो पाया लेकिन आज होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है खाद्य प्रसंस्करण की अगर बात करें तो उद्योग की बहुत ही संभावनाएं हैं, लेकिन ये हम थोड़ा बहुत जानते हैं और विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे, खास करके क्योंकि हम इसी विषय से संबंधित विशेषज्ञ को आमंत्रित किए हैं। तो इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु सिंह जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। तो चलिए उनसे ही विस्तार में जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कितनी संभावनाएं हैं।
6: देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगी खाद्य प्रसंस्करण क्या है। किसान को वर्ष भर पूरी मेहनत करता है, फसल लगाता है और फसल लगा के जो उपज उसको आती है और उसको बाजार करता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसको उसका दाम उतना नहीं मिल पाता जितना उसने मेहनत कर फसल उगाई है। पर ऐसे में क्या होता है कि अगर हम जब दाम नहीं मिल रहा तो ऐसे में उस उत्पाद को, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें गेहूं की, अगर गेहूं का उसको दाम नहीं मिल रहा है तो ऐसे में वो अगर उसने गेहूं का आटा बना लिया और उसका आटा बना के फिर रख भी लिया और फिर बाजार कर दिया, या जैसे सब्जियों की बात करें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो ऐसे में उसी समय अगर बेचा तो बेच दिया, नहीं तो अगर खराब हो जाएगा तो ऐसे में उसका रूप बदल दे। टमाटर का दाम अगर मान लीजिए 40 रुपए किलो है तो वही अगर टमाटर से आप सॉस या प्यूरी बना लेते हैं तो 200-300 रुपए किलो चला जाता है। तो ये होता है प्रसंस्करण, मैंने उस उपज का रूप बदल दिया जिससे उसकी एक तो लाइफ बढ़ गई, टिकाऊ हो गया, दूसरा दाम बढ़ गया, तो ये प्रसंस्करण कहलाता है। तो ये है आपका खाद्य प्रसंस्करण। तो हमारी जो भी फसलें हैं, हमारी जितनी फसलें, हम सभी का प्रसंस्करण कर सकते हैं।
5: बिल्कुल, आपने संभावनाएं भी बताई और साथ साथ आपने ये भी बताया कि खाद्य प्रसंस्करण क्या है, उसका परिवर्तित रूप क्या है। टमाटर से केचप बन रहा है तो उसका क्या परिवर्तित रूप है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण में क्या क्या शामिल है, जैसे बहुत सी चीजें होती, विस्तार में अगर जानने की हम कोशिश करें तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं।
6: मैंने कहा जैसे हमारी सारी फसलें, चाहे अनाज हो, दालें हो, आजकल हमारा श्रेयन भी शामिल हो रहा है, सब्जियां है, दूध है, मांस मछली अंडा, ये सभी आपका प्रसंस्करण में आते हैं। और यही नहीं, इसमें हमारी वो भी शामिल हो रहे हैं, आप जैसे हम कहते हैं एलोवेरा है या आपका ग्वार पाठा है, ये सब भी हमारे धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण में, क्योंकि इनकी जैसे जैसे महत्वता पता लग रही है कि हाँ शरीर के लिए अच्छे हैं, पौष्टिक हैं, और हमारे देश में जैसे कुपोषण की समस्या भी काफी है, इन सब से निपटाने के लिए तो इनका प्रसंस्करण करके हम लोग कई उत्पाद भी बना सकते हैं। तो अनाज से बात करें तो हमने जैसे आटा, दलिया, सूजी, और फिर उसी के और उत्पाद, आजकल अगर शहरों की तरफ बात करें तो उसी से आप बेकरी के उत्पाद बना सकते हैं, ब्रेड, बिस्किट वगैरह। अगर और कोई और उत्पाद बनाना चाहते हैं तो पास्ता, नूडल्स, ये सब बना सकते हैं। एक मैं कहूंगी लंबी कड़ी है जिसमें सभी वर्ग के लिए प्रसंस्कृत उत्पाद है, मतलब बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, सभी संभावनाएं हैं।
5: और एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है कुछ करना चाह रही है, उसके हाथ में हुनर है, वो जानती भी है कि इस चीज को ऐसे बनाया जा सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबकी बात कर रहे हैं, तो अगर वो जुड़ना चाहते हैं इस क्षेत्र से तो कैसे जुड़े, क्या तरीका है?
6: बिल्कुल, देखिए सभी को, जैसे हमारी खासकर महिलाओं की बात करें, उनको क्योंकि घर में खान पान का भी वही ध्यान रखती हैं, तो प्रसंस्करण उन्हें कुछ हद तक आता है, पर कई बार उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है कि वो लंबे समय तक टिकाऊ उत्पाद नहीं बना पाती। जानकारी है पर पूरी तरीके से नहीं हो पाती उनसे, तो इसीलिए ऐसे में हम कहते हैं कि प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है इसी प्रसंस्करण को, अगर आपने एक उद्योग के रूप में शामिल करना है तो। क्योंकि जैसे बात करते हैं हम लोग कि खेती से हमारी आय इतनी नहीं होगी, पर अगर हमने खेती के साथ खाद्य प्रसंस्करण को जोड़ दिया, जो हमारा सपना है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का, जिसमें हम किस किसानों की आय दुगनी हो, ये तभी संभव है अगर हमने खेती के साथ खाद्य प्रसंस्करण को जोड़ दिया। तो इसी में कहूंगी प्रशिक्षण ले, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के काम आपका अधूरा रहेगा। और देश के जैसे 731 जिलों में सभी में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ प्रशिक्षण दिए जाते हैं, साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि अनुसंधान संस्थान है, आप और राज्यों के भी आपके विभाग होते हैं, कृषि विभाग, वहां से भी प्रशिक्षण लें। तो प्रशिक्षण जरूर लेनी चाहिए खाद्य प्रसंस्करण में, तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं।
5: एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे आपने भी बताया कि यहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं, अगर कोई कॉन्टेक्ट नंबर हो, संपर्क सूत्र हो, तो आप हमारी कार्यक्रम में बताइए जिससे वो जुड़ सके, अगर कोई महिला जो हमारे कार्यक्रम या कोई पुरुष जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं वो इसका फायदा उठा सके।
6: मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र जो कि हमारा दिल्ली में स्थापित है, और हम लोग समय समय, अभी हमने पिछले हफ्ते ही आम के प्रसंस्करण पर एक हफ्ते का प्रशिक्षण आयोजित किया था, क्योंकि मौसम के अनुसार भी हम लोग करते हैं, मौसम में जब उपलब्ध उत्पाद हो तो उसको कैसे प्रसंस्कृत कर सकते हैं। तो मेरा नंबर चाहे तो नोट कर लें, 9818550652, इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और कभी भी हमसे जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं। प्रशिक्षण हम लोग समय समय पे आयोजित करते हैं, और एक और बात बता दूं, निशुल्क होते हैं, ताकि हमें ज्ञान देना है और आप एक उद्यमी के रूप में खड़ा करना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो ये हम लोगों का विजन रहता है कि हमें उन्हें एक उद्यमी के रूप में खड़ा करना है।
5: एक बार नंबर और बता दें आप।
6: जी मैं हिंदी में बोल देती हूँ, 9818550652।
5: और एक बात और है कि जैसे एक दो महिला तो चलो दिमाग में आया कि हमें ये चीज करना चाहिए, इससे हमें ज्यादा फायदा हो सकता
6: बिल्कुल,
5: है
6: बिल्कुल।
5: आपने प्रसंस्करण की जैसे बात की, उसके परिवर्तित रूप की, एक दो महिला नहीं बल्कि 7-8 महिला एक साथ जुड़ना चाह रही, तो उसके लिए क्या करें वो?
6: जी, उसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है कि स्वयं सहायता समूह, जो कि हमारा बहुत सालों से चला आ रहा है, जिसमें आपका 10 महिलाओं का या 20 महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा एक समूह होता है, जिसमें वो हर प्रति माह एक आय निर्धारित कर लेती है, कितनी राशि हम प्रति माह जमा करेंगे, वो एक जगह जमा होता है, उसी समूह के नाम से बैंक में खाता भी खुल जाता है, वो रजिस्टर्ड होता है। तो उससे बैंक से खाता खुलने से ये फायदा होता है कि कभी किसी इन महिलाओं ने मान लीजिए खाद्य प्रसंस्करण में कोई प्रशिक्षण ले लिया, अब ये उद्योग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि पूंजी की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग को शुरू करने में, और सभी के पास इतना नहीं होता, तो ऐसे में बैंक उनको सहायता देता है। तो स्वयं सहायता समूह हूँ, अगर बैंक से ऋण लेना चाहता है तो उनका ब्याज दर भी काफी कम होता है, तो सबसे बड़ा फायदा तो एक ये हो गया। और फिर उनकी एक राशि निर्धारित की जाती है कि प्रतिमाह आप इतना ईएमआई के रूप में वापस कर दें। तो ये सबसे अच्छा है कि स्वयं सहायता समूह बना लें, क्योंकि हर महिला में या हर पुरुष में एक ना एक गुण है, तो समूह में ये फायदा हो जाएगा कि एक महिला को बनाना आता है, अकाउंट संभालना बहुत अच्छा आता है, एक को बाजार करना बहुत आ जाता है, तो ग्रुप में ये एक सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। क्योंकि अगर एक अकेला करना चाहेगा तो उसको बेचारे को बनाना भी है, पैक भी करना है, अकाउंटिंग भी करनी है और बाजार भी करना है, तो वो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है और आखिरकार वो हताश होके छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं समूह में आइए, और समूह में आपका एक तो जो पूंजी है वो भी आपकी बराबर में बट के जा रही है, आप पे भार भी नहीं आ रहा कि मैंने इतनी सारी पूंजी लगा दी, आप मिलके पूंजी लगा रही हैं और जो मुनाफा है आप सब में बराबर बट रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि समूह में आके प्रशिक्षण लेके काम को शुरू कर सकते हैं।
5: जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं इस समय, तो जो ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, आप चीज बनाओ बहुत तेजी से वायरल हो जाता है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की आप बात बताएं कि कैसे ये विस्तार में एक उद्योग के रूप में स्थापित करवा सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म।
6: बिल्कुल बहुत कर सकता है, क्योंकि आज की बात करें तो सबके हाथ में मोबाइल है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, सबके हाथ में मोबाइल है। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम मोबाइल को एक कहेंगे कि एंटरटेनमेंट के रूप में देख रहे हैं, पर अब इसे हम अगर उद्योग के रूप में देखें, यानी कि हमें उससे क्या क्या फायदा हो सकता है उसके रूप में देखें, तो क्या नहीं कर सकते आप। बहुत बड़ा एक आपका ये हथियार है मोबाइल आज के लिए, अगर आप उद्योग के रूप में इसको देखेंगे तो। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग बात करिए, आपके इतने सारे सोशल मीडिया एप्स हैं हमारे, कोई भी आप ले लीजिए, आपकी भाषा में भी वो ऐप हो गए हैं, जहाँ के भी आप हैं आपकी उस भाषा में भी वो ऐप हो गए हैं। तो वही आप करके आप उसमें अपने उत्पाद डालिए, लोगों को पता लगे, उसको उसमें बनाने का तरीका डालिए, आपने जहाँ से प्रशिक्षण लिया है, क्योंकि वहां से आपको प्रमाण पत्र ही मिलता है, तो उससे आ जाता है कि आपने हाँ सही प्रमाणित संस्था से आपने प्रशिक्षण लिया, तो वो आपको और वैल्यू आपके काम की बढ़ाता है कि आपने सही जगह से लिया है तो आपका उत्पाद सही होगा,
5: रेट भी आपको अच्छा मिलेगा।
6: बिल्कुल, आप फिर श्योरिटी से कह सकते कि नहीं मेरा उत्पाद है और इतने दिन चलेगा, इतना दिन टिकाऊ है। जैसे कोई भी खाद्य उत्पाद के लिए हमारी एक अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनसे हमें प्रमाणीकरण दिलाना आवश्यक होता है कि हाँ मेरा उत्पाद सही है, सेफ है, तो वहां से भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि हम प्रशिक्षण के दौरान बताते भी हैं कि कैसे आपने उसको लेना है प्रमाणीकरण, तो वो भी आपका नंबर लग जाता है, तो उससे आपके उत्पाद की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो डिजिटल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है मैं तो कहूंगी, और सभी को आता भी है, पढ़ी लिखी भी हो हमारी महिला या ना भी पढ़ी लिखी हो,
5: कड़ी
6: होती है कि
5: बस, लेकिन प्लेटफॉर्म
6: भी पता होता, बस उनको जानकारी नहीं होती, तो इससे काफी आप अच्छा फायदा उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए जब सबके हाथ में है ये चीज।
5: ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बात हुई खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग की संभावनाओं की, सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे
6: हैं? बहुत हैं योजनाएं, और इसका तो हमारा एक मंत्रालय ही है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, जिसमें छोटे उद्योग के लिए और बड़े उद्योग के लिए सभी के लिए योजनाएं हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक हमारा एक उसी योजना में एक नाम है कि एक जिला एक उत्पाद, जिस जिले में जो चीज बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उस योजना में उसके उत्पादन से लेके बाजार तक की सारी चीजें शामिल, चाहे वो उसकी मशीन की बात हो, चाहे उसकी पैकिंग के लिए बात हो, चाहे उसके रजिस्ट्रेशन के, चाहे उसके में उसी उत्पाद के अलग अलग उत्पाद बनाने के प्रशिक्षण की बात हो, तो उसमें से किसी भी योजना को लेके आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत कम ब्याज दर पे आपको ऋण के रूप में दिया जाता है, आपको मशीन खरीदनी है, जैसे मान लीजिए आंवला है, आंवला सुखाने की मशीन चाहिए तो आंवला का क्षेत्र, जैसे हमारा यूपी का एक क्षेत्र है जो कि आंवला का भरपूर माना जाता है, तो वहां पे उस मशीन का आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे 2 लाख की मान लीजिए मशीन है तो आपको 50,000 की रियायत मिल गई तो 1.5 लाख आपका लगा, तो काफी फायदा हो जाता है। तो उस मशीन का इस्तेमाल करके अपना सुखा के आप पैक करके आप बाजार कर सकते हैं। तो ये योजनाएं हैं, पर मैं कहूंगी योजनाओं के बारे में आपको पता कैसे लगेगा, इसके लिए आप प्रशिक्षण जब लेने आएंगे किसी भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में या किसी संस्थान में, वहां पे भी आपको इन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे फायदा उठा सकती हैं। हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें सिर्फ उनको सिखाना है और भेज देना, हमारा होता है कि उनको सिखाना है, उनको बताना है, उनको जागरूक करना है कि क्या योजनाएं आपके लिए हैं जो सरकार इतनी मेहनत करके दे रही है, तो उनका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं ताकि आप एक सफल उद्यमी के रूप में खड़े हो सकें।
5: आपने सफल उद्यमी की बात की
6: जी,
5: तो कोई बहन हो या भाई हो जो भी इस व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने खाद्य प्रसंस्करण को के जरिए उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं, तो ये सफल उद्यमी बनने के लिए क्या क्या उनके अंदर गुण होने चाहिए, बहुत जरूरी है जानना।
6: सफल उद्यमी के लिए सबसे पहले कि एक संयम, देखिए हमें कोई भी अगर उद्योग शुरू करना है तो ये ना चले कि हमें कल ही सफलता मिल जाएगी, तो इसीलिए संयम का होना बहुत जरूरी है। पर एक बार आपने जब उस मुकाम पे पहुंच गए फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। फिर दूसरा आपका परिवार का साथ, क्योंकि अगर जब तक हमारे परिवार का साथ नहीं होगा उस काम के लिए तो हम उस काम को नहीं कर सकते, अगर साथ होगा तो हम और अच्छे से बढ़ चढ़ के कर सकते। एक आपस में आपसी पन आता है जो कि थोड़ा थोड़ा आजकल हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है, पर उससे और जुड़ाव होता है आपस में आपका कि हम समझते हैं कि नहीं हमारा व्यवसाय है हमें करना है,
5: बल्कि संयुक्त परिवार और इसका फायदा उठा सकते हैं।
6: तो परिवार का साथ एक तो बहुत जरूरी है, और फिर आपको जानकारी लेने की रुचि निरंतर रहनी चाहिए भले ही आप कितने स्तर पे पहुंच गए हों।

0: जी,
1: सीखने की, मतलब आपकी
0: लालसा
1: सीख
0: होनी चाहिए
1: लालसा
0: सिर्फ।
1: रहनी चाहिए, तो आपका एक सफल उद्यमी आप बन सकते हैं।
0: अगर सच कहें तो, अगर लालसा है मन में, जिज्ञासा है किसी
1: जी
0: चीज की जानने की,
1: जी
0: सीखने की, और
1: जी
0: संयम है सुनने की,
1: जी
0: सुनाने की नहीं,
1: बिल्कुल,
0: सुनने की
1: सुनने
0: भी,
1: की
0: सुनने की भी संयम है, तो ये मानना चाहिए कि आप आगे बढ़ने वाले हो,
1: जी।
0: और थोड़ा सा सबका सहयोग मिलेगा तो जरूर आप आगे बढ़ जाओगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो डॉक्टर रितु जी, चलते चलते
1: जी,
0: इस कार्यक्रम के जरिए और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो किसान भाई इतनी मेहनत करके फसल
0: जी
1: उगा रहे हैं,
0: जी
1: तो उसके साथ अगर हम खाद्य प्रसंस्करण को जोड़ दें
0: जी
1: तो हमारे देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता, और इस सब में हम सबका साथ होके चलना बहुत जरूरी है।
0: साथ लेकर के चलेंगे, और जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि आप भी आगे बढ़िए, अगर आपके अंदर हुनर है, कुछ आता है। और डॉक्टर रितु जी ने जो बताया कि प्रशिक्षण केंद्र भी है, और इन्होंने कांटेक्ट नंबर भी बताया है,
1: जी
0: तो एक बार और रितु जी बता दें कांटेक्ट नंबर।
1: मेरा नंबर है 9818550652।
0: तो डॉक्टर रितु सिंह जी, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं के विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं।
3: जी हाँ, और हमारे अभी हमारे जो बातचीत कर रहे थे वो है डॉक्टर रितु सिंह, जो वैज्ञानिक थी कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रही थी यमुना देवी।
2: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने श्रोताओं का कराते हैं मनोरंजन, और सुनते हैं राजेंद्र जाटव से ये उपदेश।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे उपदेश राजेंद्र जाटव से। और देखिए आगे बढ़ते हैं, शीतल बहन और अपने भाइयों से बातचीत करते हैं कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो ई कॉमर्स के माध्यम से बाजार से कैसे जुड़ सकती हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने वंदना बहन की, जैसे कि जो ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का नया रास्ता खुल रहा है, वो विषय है ग्रामीण महिलाओं के लिए ई कॉमर्स का अवसर।
0: जी बिल्कुल,
1: आज इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच ने गाँव की महिलाओं को भी देश विदेश के ग्राहकों तक पहुँचने का अवसर दिया है।
0: बिल्कुल, और भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो ये ई कॉमर्स का ऐप बनाया है, उससे हम मोबाइल से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और एक अपने हुनर को एक नई पहचान दे सकते हैं।
1: अब ऐसे में सवाल उठता है, जैसे कई हमारी बहनें हैं, ग्रामीण बहनें हैं, जिनको नहीं पता है कि ई कॉमर्स क्या है और इसके लाभ क्या हैं। तो ई कॉमर्स एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी वस्तुओं, सेवाओं और किसी भी सामान की खरीद बिक्री डायरेक्ट आप ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि कोई महिला घर में अचार, पापड़, मसाले, बाजार या मिलेट से बने उत्पाद या अपने हाथ की बनी चीजें, जैसे कि आजकल होता है ना
0: हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य उत्पादन जो भी है वो बनाती हैं, अचार, मुरब्बा,
1: आप देखते भी होंगे जैसे आजकल कई बहनें हैं जैसे जिनको बुनाई बहुत अच्छी आती है, ऊन के कपड़े वो बुन के कभी स्कार्फ बनाती हैं, टोपे, कभी स्वेटर बना बना के बेच रही हैं, तो वो भी एक ई कॉमर्स के जरिए लोगों को, मतलब ग्राहकों को पूछती हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके जरिए वो अपना सामान बेच के उपलब्ध भी कराती है, उनके पास ये चीजें हैं जो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है।
0: और देखिये इसमें बिचौलियों का संबंध बिल्कुल खत्म हो जाता है, सीधे आप बाजार से जुड़ते हैं और सीधे आपके बैंक में ही पैसे आते हैं।
1: इससे आपको क्या होता है, घर बैठे व्यवसाय आपका शुरू हो जाता है, पूरे देश में आपकी ग्राहक तक पहुंच पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी बिचौले की जरूरत होगी कि आप ग्राहक लाइए या वो आपके बीच में पैसा खाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप डायरेक्ट अपने जो ग्राहक होंगे, कस्टमर होंगे, उनसे डायरेक्ट डील कर पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं वंदना बहन, और सुनते हैं राजेश कुमार अट्टा की आवाज में अगला उपदेश।

0: सुन रहे थे राजेश कुमार अट्टा की आवाज में ये उपदेश, और
1: जी
0: इसी के साथ हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारा सर और संयोजक शिव नंदन लाल। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
3: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
2: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
4: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्योरपो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव

0: से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:05 हो चुके हैं श्रोताओं, और ये समय है अपने कार्यक्रम कृषि जगत का।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, आप जैसे देख रहे हैं कि मौसम में किस तरीके से अचानक से बदलाव हो रहा है।
3: जी बिल्कुल,
2: हर घर में आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत खांसी जुखाम हो गया है, क्योंकि मौसम इस तरीके से बदल रहा है, किसी के हाथ की बात नहीं है। कहीं एकदम गर्मी हो जा रही है, कहीं बारिश के मौसम से मौसम ठंडा हो जा रहा है। तो इंसान क्या ठंडा गर्म पे ध्यान नहीं दे रहा है, चीजें चेंज हो रही है। सेम उसी तरीके से बात करें हमारी जो फसलें हैं, कि जलवायु परिवर्तन एवं खरीफ फसलों की सुरक्षा ऐसे में कैसे की जाए, कैसे उनका बचाव की जाए। क्योंकि क्या हो रहा है कि कभी भी बारिश हो जा रही है, कहीं भी सूखा पड़ जा रहा है, कहीं ओलावृष्टि हो जा रही है तो कहीं तेज हवाएं आ जा रही है।
3: बिल्कुल, और ऐसे में खरीफ फसलों को जो नुकसान होता है वो हमारे वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि हम किस तरह से उनकी देखभाल करें या उनको कैसे सुरक्षा प्रदान करें।
2: जी बिल्कुल, इसी से संबंधित अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक बातचीत, जलवायु परिवर्तन एवं खरीफ फसलों की सुरक्षा। और इसमें हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर ओपी सिंह, आप पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल।
4: किसान भाइयों नमस्कार। आप फसलें उगाते हैं और उसको उगाने के लिए आपको मौसम, जलवायु और वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, और जब ये वर्षा समय के साथ न हो और आपको आसमान की तरफ देखना पड़े, या कभी कभी आपने बिजाई कर दी है, एकदम बरसात ज़्यादा हो जाए, तो आपको जो फसलों से उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, तो इस पर आज हम डॉक्टर ओपी सिंह जी से विस्तार से बात करेंगे। आप प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर ओपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और उससे जो हमारी फसलें हैं उनकी सुरक्षा की बात। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एकदम बरसात एकदम धूप, क्या यही जलवायु परिवर्तन है या ये कुछ और है?
5: देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे कि जलवायु परिवर्तन का जो मौसम बदल रहा है, वो मौसम बदलने के कारण हमारी जो फसलें हैं और उनमें खरीफ की फसलों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और अभी हमने देखा है कि हमारे दिल्ली और NCR के एरिया में लगभग 28 जून को बरसात आती है, लेकिन किसी कारणवश वो लगभग 8 से 10 दिन देर से हुई है, और इसकी वजह से जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उन पे उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ज़्यादा तापमान होता है या ज़्यादा भारी बारिश होती है और सूखे की स्थिति भी बनती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को कम समय की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए, और साथ ही जैसे मल्चिंग है या खेतों की मेड़बंदी है उसको करके हम खेतों के अंदर जल को भी संरक्षित कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी एक भारतीय योजना है भारत सरकार की, यदि हमें फसलों से नुकसान होता है तो उन फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ उठा सकते हैं किसान भाई। और इसके अलावा यदि हम देखें तो खरीफ की फसलों से जो होने वाले नुकसान हैं उनमें मुख्य रूप से

0: जो है यदि देखें तो उसमें अनियमित वर्षा है या सूखा है, इसकी वजह से खरीफ की फसलों में नुकसान होता है। और उनमें जो मुख्य फसलें हैं उनमें जैसे धान की फसल है उसमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और मानसून में देरी होने से या सूखे के कारण ये फसल सूख जाती है और पैदावार में इसका भारी गिरावट आती है। इसके अलावा यदि हम देखें कि अत्यधिक बारिश हो रही है या बाढ़ है, उसके अलावा भी अचानक भारी बारिश होने से या जल भराव जिसको वाटर लॉगिंग कहते हैं, उससे फसलों की जड़ें सड़ जाती हैं और पौधे नष्ट होते हैं जिससे हमें पैदावार में गिरावट आती है। यदि हम देखें कि तापमान जैसे बढ़ रहा है तो जिसको हीट वेव कहते हैं या उच्च तापमान है, इसके कारण जो परागण की प्रक्रिया है फसलों में वो भी बाधित होती है और दानों का विकास ठीक से नहीं होता है। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे जैसे कि फसलों की हम सुरक्षा के कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, जलवायु के अनुकूल जो किस्में हैं उनका हमें चुनाव करना चाहिए, जो लंबे समय तक पानी की कमी झेलने वाली या कम अवधि में तैयार होने वाली जैसे धान की फसल है, मक्का की है, बाजरे की है, इन किस्मों का चयन करना चाहिए। साथ ही जो जल संरक्षण है और उसका उचित प्रबंधन पे भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें खेतों के चारों ओर मजबूत मेड़बंदी करें ताकि बारिश का पानी वो खेत में ही संचित रहे, और भारी बारिश की स्थिति में अतिरिक्त पानी निकालने के लिए ड्रेनेज की भी उचित व्यवस्था करें, यानी कि जल निकास की। जैसे भारी बारिश की स्थिति है तो इसके अलावा पानी निकालने के लिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यदि हम देखें तो हमारे जो ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति है, इसका भी उपयोग करें ताकि सूखे की स्थिति में जो सीमित पानी है उसका उपयोग करके हम अपनी फसलों से पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और जो मिट्टी की उर्वरता है उसको भी बढ़ाने के लिए हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैसे कि आप जान रहे और भारत सरकार भी पिछले दिनों से इस पे जोर दे रही है कि किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करें और उसके द्वारा जो सुझाई गई उर्वरकों की मात्रा है उसका ही अपनी फसलों में प्रयोग करें ताकि हमारी फसलों से अधिक उत्पादन मिल सके और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। और जैसे कि जैविक खाद है, आप जानते हैं कंपोस्ट खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, इसका उपयोग करें जिससे कि मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और उससे हमारी फसलों में ज्यादा पैदावार भी मिलती है। इसके अलावा यदि हम देखें फसल विविधीकरण जिसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, इसमें पानी की कमी होने से उसमें केवल जैसे धान की फसल है उस पर निर्भर रहने के बजाय हमें अन्य खरीफ फसलों का चुनाव करना चाहिए, जिनमें जैसे दाल वाली फसलें हैं, दलहन की फसलें मूंग है, उड़द है, तिलहन है, या मोटे अनाज में आप देख रहे हैं बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इन फसलों का हमें चुनाव करके हमें उनका अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके उत्पादन लेना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जैसे अभी ज्यादा एकदम बरसात हो जाती है और मान लीजिए किसी किसान ने फसल बो रखी है तो उसको क्या करना चाहिए?
0: जिस किसान ने फसल बो रखी है यदि हम देखें तो खेत में पानी ज्यादा भर जाता है तो जल निकास की उचित व्यवस्था करें, एक तो यह है। दूसरा यह है कि यदि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, उसमें जड़ें उसकी गल जाती हैं या फसल मरने की संभावना रहती है, तो उसमें पानी का निकास जितना हो सके वो करें, और नहीं तो जैसे ही वो खेत में फसल हो जाए उससे अनाज तो नहीं मिलेगा लेकिन उसकी जुताई करके उससे हरी खाद के लिए उसको उपयोग खेत में कर सकते हैं। साथ ही जो है यदि हम देखें कि हमारे पास अगर तालाब की व्यवस्था है कहीं नीचे की तरफ तो उस पानी को उसमें भी निकास करके वहां पे इकट्ठा करके और हम रबी के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो आसपास में बोरिंग है, कुएं हैं, उनमें जल की मात्रा बढ़ती है और वो रबी की फसलों के लिए काम आती है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि जैसे बरसात है कि कभी और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे बरसात नहीं हो रही है या देर से हो रही है, तो क्या ऐसी कुछ किस्मों का भी विकास किया गया है या आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कौन सी फसलें लगाएं और उसमें किस्मों के बदल में क्या ध्यान रखें?
0: देखिए, जहाँ देखते हैं कि जहाँ हमें वर्षा की आवश्यकता है और वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है और सिंचाई के साधन भी नहीं है किसानों के पास, तो ऐसी अवस्था में उनको कम पानी वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनमें पानी की कम आवश्यकता हो। यदि सूखे की स्थिति पड़ती है तो उसमें हम जो है जैसे हमारी मोटे अनाज में मैंने बताया ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन फसलों को बो सकते हैं, इनमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और कुछ दलहन की फसलें हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि मान लीजिए किसी ने पहले से बिजाई कर दी है और बीच में गैप आ गया काफी कि बरसात नहीं होती है, तो उस स्थिति में किसान भाई
0: उस स्थिति में किसानों को यही सलाह दी जाती है, यदि उनको लाइफ सेविंग इरिगेशन उनके पास है तो ऐसी स्थिति में अगर फसल खेत में खड़ी है और बारिश नहीं हो रही है और सूखे की स्थिति झेल रही है, तो फसल के लिए अगर अतिरिक्त सिंचाई का कहीं साधन है तो उससे हम सिंचाई कर सकते हैं, और यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो हमें बारिश का इंतजार करना ही पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी किसान भाइयों की फसल तैयार होती है
0: जी
1: और उस समय एकदम बारिश आ जाती है और ज्यादा बारिश हो जाती है, फसल गिर जाती है, कभी कभी उसमें बहुत नुकसान हो, ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या करते हैं?
0: ऐसी स्थिति में यही है कि जैसे हमारी फसल तैयार है और बहुत ज्यादा बारिश हो गई या और कोई ऐसी जलवायु परिवर्तन की ऐसी कोई समस्या आ गई जिससे कि फसल में पैदावार में नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में यही है कि एक तो भारत सरकार ने जो है एक योजना चलाई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके यदि उस फसल के लिए बीमा करवा दें तो आपको उसके नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा दी जा सकती है। और साथ ही यदि हम देखें कि ऐसी स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि जैसे उनको नुकसान हुआ है तो अगली फसल में फसल चक्र को अपना के या और दूसरी फसल से भी उसकी भरपाई को किया जा सकता है। दूसरी यह है कि यदि एक फसल को ना करके हम विविधीकरण फसल का करें तो उसमें यह होगा कि एक फसल से यदि नुकसान हो रहा है तो दूसरी फसल से उसकी भरपाई हो सकती है, जैसे बागवानी हम कर सकते हैं। तो बागवानी के साथ अगर हम खेती करेंगे तो हमें जो फसल को नुकसान होता है सूखे की वजह से या ज्यादा बारिश की वजह से तो वो दूसरी फसल से उसकी भरपाई की जा सकती है। और साथ ही मैंने बताया कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका भी लाभ उठाएं और उससे भी आपको नुकसान से बचा जा सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे फसल बीमा योजना का आपने जिक्र किया, फसल बीमा योजना अगर किसी ने फसल बिजाई करी है बीमा उसका उसी समय होता है कि क्या प्रक्रिया है उसकी?
0: उसकी प्रक्रिया के लिए यही है कि वो जाके अपने पास के जो कृषि विभाग हैं वहाँ पे अपना आधार कार्ड और अपने फसल का खेत का खसरा नंबर लेके उससे पास के जो कृषि अधिकारी हैं उनके यहाँ पे उसका पंजीकरण करवा सकते हैं और साथ ही उस फसल का नाम लिखवा सकते हैं और खेत का एरिया लिखवा सकते हैं। तो यदि किसी कारणवश सूखे की वजह से या ज्यादा बारिश की वजह से फसल को नुकसान होता है तो उनको उसकी भरपाई फसल सुरक्षा के तौर पर सरकार के द्वारा उनको दी जाती है जिससे कि उनकी पैदावार से जो होने वाली आमदनी को नुकसान होता है वो भरपाई हो सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जो फसल बीमा योजना में कुछ किसानों से भी तो किस्त पड़ती है?
0: हाँ, किस्त जैसे आती है तो वो किस्त भी उसको वो भरते हैं, उसका भी फिर टाइम होता है, यदि किसी कारणवश फसल को नुकसान होता है तो वो किस्त को फिर दूसरे सीजन में उनको उसकी रियायत दी जाती है।
1: तो जैसे जो हमारे किसान भाई खरीफ फसलों का बीमा कराते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि 3% देना पड़ता है, और जो किसान भाई रबी फसलों का बीमा कराते हैं उसके लिए 2%
0: देना पड़ता,
1: और जो बागवानी फसलें हैं उसके लिए 5%। तो ये अगर प्रीमियम दे करके उनको फसल बीमा योजना मिलती है, और जब उनका कोई नुकसान चाहे फसल की बिजाई से लेकर के उनकी कटाई घर तक आने तक की जिम्मेदारी होती है
0: जी।
1: अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो जिस भी कंपनी से या भारत सरकार की कोई योजना है उसके द्वारा अगर अपनी फसल का बीमा कराते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उसकी भरपाई
0: होती है और नुकसान से आपको कम नुकसान होता है और आपको जो है उसकी आमदनी लगभग उतनी ही होती है।
1: लेकिन हमारे किसान भाई फिर भी काफी शिकायत करते हैं कि जब उनकी फसल का नुकसान हो जाता है लेकिन उसका आकलन ठीक से नहीं किया जाता है कि नुकसान ज्यादा हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे नुकसान नहीं
0: ऐसा नहीं है। उसके लिए यह है कि यदि आप किसान भाइयों को ये लगता है कि हमारी फसल को नुकसान हुआ है और आकलन नहीं है तो उसकी एक प्रक्रिया है, वो सरपंच के माध्यम से अपने जिले के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और उनके द्वारा जो जिला के जो कृषि अधिकारी हैं या जो गांव स्तर पर जो कृषि अधिकारी काम कर रहे हैं जैसे पटवारी वगैरह उनसे अपने आवेदन दे करके उससे अपनी फसल का आकलन सही करवा के उसका उचित बीमा प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, किसान भाई अपनी फसलों को जलवायु परिवर्तन से बचाए रखें और अपनी फसलों की फसल सुरक्षा सही तरीके से कर लें, इसके लिए आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हम तो किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन आजकल आप देख रहे हैं कि कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, अनियमित बारिश होती है, या कहीं पे हमें जब जरूरत होती तब नहीं होती है, ऐसे में बारिश होती है। तो उसके लिए बचाव के लिए यही है कि किसान भाई जो है ऐसी फसलों का चुनाव करें जिससे कि उन्हें नुकसान कम हो और साथ ही अपनी फसलों में ज्यादा विविधीकरण अपनाएं, फसल चक्र का पूरा उपयोग करें और बरसात के मौसम में खेतों की ऊंची ऊंची मेड़बंदी करके जल को संरक्षित करें जिससे कि खेत का पानी खेत में ही रहे और उससे अगली फसल को उनसे ज्यादा पैदावार उसकी मिल सके। तो इसके लिए और भी जो है किसान भाइयों के कि बागवानी का चुनाव करें, पशुपालन रखें, तो उससे क्या है कि यदि हमें किसी कारणों से एक फसल से नुकसान होता है या एक व्यवसाय से तो दूसरे व्यवसाय से उसकी भरपाई हो सकती है। तो यही किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप फसलों का विविधीकरण करें, फसल चक्र अपनाएं और हमारी जो उन्नत कृषि प्रणालियां हैं या उन्नत किस्म की प्रजातियां हैं या कृषि तकनीक है उसका उपयोग करें में। और जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमारा जो फसल विविधीकरण है या जो हमारा फसलों का जो एक फसल के बाद दूसरी फसल ऐसे बोए तो उससे हमें नुकसान की कम अवसर होता है और उससे जो दूसरी फसल उससे भरपाई उसकी हो सकती है। सब्जियां लगाएं, अगर पानी ज्यादा है तो मछली पालन भी कर सकते हैं और बागवानी भी लगा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने काफी विस्तार से बताया किस तरीके से हमारे किसान भाई जलवायु परिवर्तन से अपनी फसलों को बचाकर अपनी फसलों की फसल सुरक्षा कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर ओपी सिंह जी, आप कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, निश्चित तौर पर किसान भाई से फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जलवायु परिवर्तन एवं खरीफ फसलों की सुरक्षा, डॉक्टर ओपी सिंह से बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल
3: जी।
2: और आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे जो किसान भाई हैं या बहनें हैं हमारी, वो उनके लिए एक पीएम कुसुम योजना जो बहुत ही लाभकारी है हमारी बहनों के लिए, खास तौर से कि जो उनको ये इस योजना से जो हमारी किसान बहनें हैं वो अपनी आय तो बढ़ा ही सकती हैं, साथ साथ बढ़ाने के साथ साथ डीजल मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण योजना। इसके तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए कुल लागत का 60% तक सब्सिडी दी जाती है और इसमें हमारी जो बहनें हैं वो अपने खेतों में प्लांट लगा सकते हैं, किसान भाई बहनें जो भी खेती किसानी करते हैं और अपने अपने खेतों में जैसे बिजली पानी की दिक्कत होती है वो उसको दूर कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, यकीनन अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपके नज़दीकी कोई भी सरकारी केंद्र है या कुछ, आप जाके वहाँ जानकारी लें और कैसे इसका लाभ पा सकते हैं, क्या क्या इसके लिए आपको औपचारिकताएं निभानी होंगी, ये भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा।
2: जी बिल्कुल, इसके लिए आपको देखिए मैं थोड़ा सा हम बता देते हैं जो हमें जानकारी है जिस बारे में, कि आपको बैंक में जो आपका खाता है वहाँ से आपको लोन मिल जाएगा और लोन मिलने के बाद जैसे होता है कि भाई 60% हमारी जो राज्य सरकार है वो देती है और 40% जो हमारे केंद्र सरकार है वो देती है, तो आपको कुल जैसे 3 किलोवाट का आप लगवाते हैं सोलर पैनल तो उसमें 1,08,000 के आसपास आपको गवर्नमेंट से मिल जाता है।
3: जी बिल्कुल, लेकिन आए इसके लिए पात्रता भी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात कि आप भारत के किसान होने चाहिए और आप कृषि भूमि के स्वामी, मतलब आपके नाम कुछ जमीन होनी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो पात्रता है उसको आपको पालन करना होगा, तभी आप इसका लाभ पा सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: और इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, किसान अपने राज्य की नामित कार्यान्वयन एजेंसी या राष्ट्र पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं, जैसे सरकारी पोर्टल जो चलाए गए हैं उसके माध्यम से आप इसका अप्लाई कर सकते हैं और वहां जाके आप इसका लाभ पा सकते हैं।
2: बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं और आप अपने भाइयों को मनोरंजन भी करवाएंगे और सुनवाते हैं इस वक्त
3: अमित खदाना की आवाज में एक उपदेश।

सारे स्वर्ग और नरक का फर्ज निभाना है। संस्कार संसार चक्र कर्मों का एक बहाना है। अरे सबको जगत छोड़ना रह होगा, सबको जगत छोड़ना होगा। डाकू

अभी हमारे भाई सुन रहे थे अमित खदाना की आवाज में ये उपदेश, और आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक और उपदेश अपने भाइयों को ब्रजपाल सिंह चरोरा की आवाज में।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओ, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जिसमें आप सुनेंगे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एआई संचालित डस्ट पोर्टल 2.0 और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। उद्योग आधारित प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री से जोड़ने के लिए दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय तथा एमईएल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब समाचार विस्तार से। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एआई संचालित डस्ट पोर्टल 2.0, डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से विकसित ये अत्याधुनिक डिजिटल पोर्टल एआई की सहायता से निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की वास्तविक समय में निगरानी करेगा। कार्यक्रम के दौरान डस्ट पोर्टल 2.0 का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार एआई निगरानी व्यवस्था को अधिक कुशल, सटीक और प्रभावी बना सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई और डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकार अनुपालन प्रक्रिया को सरल, निगरानी को अधिक प्रभावी और एनफोर्समेंट को अधिक पारदर्शी बना रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक निर्माण एजेंसी स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल निर्माण तथा विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की एआई की मदद से रियल टाइम निगरानी करेगा।
6: दिल्ली की पॉल्यूशन की समस्या पे एआई एनेबल्ड डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट पोर्टल है, जो कि तकनीक की दृष्टि से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से एक बेहतर गवर्नेंस हमें एश्योर करेगा, एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग एश्योर करेगा। धीरे धीरे हम ये चलान भी जो है मैनुअल की जगह सीधा इस पोर्टल के माध्यम से ही उनको चलान भेजेंगे। ये इस पर्यावरण को बेहतर करने की दिशा में रहेगा। मैं बधाई देती हूँ डीपीसीसी को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को।
0: इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितनी भी 500 गज से बड़ी इमारत है, उनकी निर्माण के दौरान निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि धूल मिट्टी को नियंत्रित करने के लिए ये पहला एआई आधारित पोर्टल है।
7: आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी पोल्यूशन के ऊपर वार करने के लिए डीपीसीसी का पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितनी भी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगे हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कंस्ट्रक्शन के दौरान। कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे जो धूल मिट्टी उठती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये पहली बार एआई एनेबल्ड एक पोर्टल है, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं।
0: दिल्ली सरकार राजधानी और आसपास के क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नया सफर योजना लागू करेगी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को चरण

0: तरीके से हटाकर उनके स्थान पर साफ सुथरे BS6 या कड़े उत्सर्जन नियमों का पालन करने वाले वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन, टैक्स में छूट और स्क्रैप से जुड़े लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत दिल्ली सरकार पात्र नए वाहनों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, पात्र पुरानी यूज्ड गाड़ियों की खरीद पर 10 साल के लिए 50% छूट, रजिस्ट्रेशन फीस और स्क्रैप की जा रही पात्र गाड़ियों के लिए रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में छूट देने की सुविधा प्रदान करेगी। इस स्कीम से पुरानी कमर्शियल वाहनों की वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैपिंग को बढ़ावा मिलेगा। इस स्कीम का कुल बजट 9,585 करोड़ रुपए है। ये स्कीम पूरी तरह से डिजिटल नया सफर पोर्टल के जरिए लागू की जाएगी। ये स्कीम पात्र लाभार्थियों के लिए 2 साल तक खुली रहेगी। इस योजना पर परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को साफ हवा और ज्यादा मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार ने अपनी प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। योजना के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस योजना के अंतर्गत 21 से 60 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना को अगले माह रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के लिए पात्रता सभी संबंधी मानक भी तय कर दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक संकल्प नहीं बल्कि विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक में योजना की पात्रता संबंधी मानकों पर भी चर्चा हुई। निर्णय के अनुसार योजना का लाभ केवल उसी महिला को मिलेगा जिसका परिवार कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली का निवासी हो, लाभार्थी और उसके परिवार के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। परिवार में आयु के आधार पर सबसे बड़ी महिला ही इस योजना की पात्र होगी तथा एक परिवार से केवल एक महिला को ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो महिला पहले से सरकार की किसी पेंशन या अन्य किसी आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार जिस परिवार के पास 4 पहियों का वाहन होगा उस परिवार की महिला को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के कड़कड़डूमा अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी सेक्टर 9 में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर आयोजित जागरूकता बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची के अपडेट की वर्तमान प्रक्रिया के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना था।
2: विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों तथा समयबद्ध सत्यापन के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, त्रुटि रहित और अद्यतन मतदाता सूची ही स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला होती है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे इस विशेष अभियान के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करें। श्री गुप्ता ने समयबद्ध सत्यापन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो पात्र नागरिक आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के अवसर से वंचित रह सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अभियान की सफलता के लिए सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गुप्ता ने कहा कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, युवा स्वयंसेवक तथा वरिष्ठ नागरिक इस अभियान की जानकारी को प्रत्येक घर तक पहुंचाने में सहयोग करें। ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।

0: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज द्वारका स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कमेटी बैठक में भाग लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, महिला सुरक्षा तथा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा हुई। इसके साथ ही जनहित से जुड़े कार्यों को अधिक प्रभावी, त्वरित और सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली में सहकारिता विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज RCS कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान विभागीय कार्यों, योजनाओं तथा भविष्य की कार्ययोजना को लेकर अधिकारियों के साथ सार्थक चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज केंद्रीय ऊर्जा तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान दिल्ली के शहरी कायाकल्प, सुलभ आवास योजनाओं और ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय DSEU तथा MEL ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड के बीच 5 वर्षों के लिए एक औपचारिक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से उद्योग आधारित प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री से जोड़ा जाएगा। इससे कक्षा 12 के बाद विद्यार्थियों को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, डिजाइन तथा अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर करियर बनाने का अवसर मिलेगा।
1: इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप युवाओं को विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करना है तथा दिल्ली को देश की उभरती हुई ऑरेंज इकोनॉमी का प्रमुख केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि समझौते के अंतर्गत MEL ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड पाठ्यक्रम तैयार करेगा तथा विद्यार्थियों को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएगा। DSEU परिसर परीक्षाओं और विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी निभाएगा। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार की ये पहले समय की आवश्यकता के अनुरूप और विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय स्तर की डिग्री तथा उद्योग समर्थित नीति निर्माण के माध्यम से युवाओं को भविष्य के रोजगारों के लिए तैयार करेंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि समझौते के फलस्वरूप छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार तथा उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। रिशु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय DU और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर DU कुल सचिव डॉ. विकास गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय में साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर हाइजीन, साइबर जागरूकता, क्षमता निर्माण, शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान, इंटर्नशिप तथा छात्र सहभागिता को बढ़ावा देना है। वडोदरा के नवरचना विद्यानी विद्यालय के छात्रों ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान छात्रों को संसदीय कामकाज, विधायी प्रक्रियाओं और जनसेवा की जिम्मेदारियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मॉडल टाउन क्षेत्र में लगभग 1100 पौधे लगाए गए। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली वासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ जीवन देने के संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ऋषित गर्ग को 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AI संचालित डस्ट पोर्टल 2.0 और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये दिए जाएंगे। दिल्ली के कड़कड़डूमा अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या,
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका, और कार्यक्रम गीत मालिका में मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की तरफ।

दोस्तों, प्रार्थना केवल मंदिरों में नहीं होती, बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में भी बसती है। इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म दो आंखें बारह हाथ से, आवाज थी लता मंगेशकर और साथियों की। दोस्तों, जब दिल विनम्र हो और मन शांत, तब हर रास्ता आसान लगने लगता है। पेश है एक और अमर प्रार्थना।

दोस्तों, ये गीत हमने लिया था फिल्म सीमा से। आवाज़ थी मन्ना डे जी की और साथियों की। दोस्तों, ईश्वर से बड़ा कोई सहारा नहीं। जब भी मन डगमगाए तो विश्वास की नाव ही किनारे तक पहुंचाती है।

श्रोताओं, आपने ये गीत सुना, फिल्म थी मेरा नाम जोकर, आवाज़ मुकेश जी की। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म भाभी की चूड़ियां से, आवाज लता मंगेशकर की। श्रोताओं, चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। आवाज थी लता मंगेशकर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। श्रोताओं, सत्य, शिव और सुंदर, यही जीवन का सार है। आइए सुनते हैं एक और कालजयी रचना।

श्रोताओं, ये भजन आपने सुना हरिओम शरण जी की और साथियों की आवाज में। दोस्तों, भक्ति में सबसे बड़ा धन है सच्ची श्रद्धा। आइए सुनते हैं ये सदाबहार भजन।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म गोपी से। आवाज थी मोहम्मद रफी जी की। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ और इसी आखिरी प्रस्तुति के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम को समेटने की।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत मालिका संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनके बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर

0: रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं, और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: प्रोविजनली वी आर लुकिंग एट ए 10% इंक्रीज।
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
7: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मजमुई बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावज़ कर गईं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 11.37% ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक़ लीडर ताहिर हुसैन और दीगर चार अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल के तनाज़े के बायस खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने तारीख रकम करते हुए लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए पहले ख्वातीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को बेबुनियाद, गुमराहकुन और मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीमें एक ऐसे तिजारती माहदे पर पूरी संजीदगी से काम कर रही हैं जो मुतवाजिन हो और तिजारती एतबार से बामानी हो। नीज दोनों ममालिक के कारोबारी तबकों, किसानों, मजदूरों और सारफीन के हकीकी फवायद फराहम करे। उन्होंने बताया कि पिछले महीने नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर के साथ उनकी मीटिंग मुस्बत रही थी। दोनों फरीकों ने ऐसे मुतवाजिन और मुफीद माहदे के लिए अपने अज़्म का इदा किया और इस मकसद को हासिल करने के लिए दोनों ममालिक की टीमें मुसलसल रबते में हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज स्पेन के अपने सरकारी दौरे का आगाज़ किया। उन्होंने स्पेन हुकूमत के अव्वल नायब सदर और कॉमर्स, तिजारत और कारोबार के वजीर कार्लोस कैपेबेलेरो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्पेन के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफीद बातचीत की है। उन्होंने बताया कि मुजाकरात में काबिले तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और इख्तियारात के मौजूदात पर भी तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने भारत और यूरोपीय यूनियन के आज़ादाना तिजारती माहदे पर भी ख्यालात का तबादला किया और कारोबारी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और स्पेन के साथ भारत के तिजारती तआवुन को मजीद वसअत देने के तरीक़ेकार पर गौर वख़ोज़ किया। जनाब गोयल आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने सरकारी सेक्टर के बैंकों पर जोर दिया है कि वो बैरून मुल्क भारतीयों NRI तक अपनी रसाई को मजीद बढ़ाएँ और उनके लिए जिद्दत तराजी पर मबनी नई जमा पूंजी स्कीमें मुतारिफ़ कराएँ। उन्होंने आज नई दिल्ली में बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान से गैर मुल्की करंसी NRI बैंक डिपॉजिट्स और गैर मुल्की करंसी कर्जों के तबादले के इकदाम के सिलसिले में बातचीत के दौरान ये बात कही। वजीर ख़जाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि NRI बिरादरी से रबते को मजीद बढ़ाया जाए ताकि गैर मुल्की सरमाया और रकूम की आमद का सिलसिला जारी रहे। मीटिंग के दौरान बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान ने वजीर ख़जाना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तबादले की सहूलत की स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों की सरगर्म शिरकत से ये साबित होता है कि तबादले की सहूलतें मुल्क में गैर मुल्की करंसी की आमद को बढ़ाने में मौसर रोल अदा कर रही हैं। इस साल अप्रैल से जून की मुदत के दौरान भारत की मजमुई बरामदात का तखमीना 232 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा लगाया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुदत के मुकाबले 11.37% ज़्यादा है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक जून 2026 के दौरान मजमुई बरामदात का तखमीना 73.45 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के जून के मुकाबले 9.48% की मुस्बत नमू को ज़ाहिर करता है। जून में जिन अहम शोबों की बरामदात में इजाफा हुआ है उनमें कीमती पत्थर और जेवरात, इंजीनियरिंग साजो सामान, नामियाती व गैर नामियाती केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और चावल शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की बरामदात गुज़िश्ता साल जून के 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस साल जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गई।
اسی طرح اس میں تقریباً 19% کا اضافہ درج کیا گیا۔ وزارت نے مزید بتایا

0: कि जून में अशिया और खिदमात की मजमू बरामदात का तखमीना 88 अरब 76 करोड़ अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 26% से ज़्यादा का इजाफा है। इस दौरान जून 2026 में भारत की खुर्दा इफरात ज़र सालाना बुनियाद पर बढ़कर 4.38% हो गई है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हदफ की दरमियानी हद से ज़्यादा है। मई में इफरात ज़र की यह शरह 3.93% थी। इसी तरह जून में महंगाई में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सारिफीन कीमत इशारिया CPI के तहत ये मुसलसल छठा महीना है जब खुर्दा इफरात ज़र में इजाफा देखा गया है। आदाद व शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत के मुताबिक देही इलाकों में इफरात ज़र 4.74% रही, जबकि शहरी इलाकों में ये 3.92% रही। कुल हिंद सारिफीन खुराक की कीमतों के इशारे के मुताबिक खुराक की इफरात ज़र की शरह 5.32% रही, जो पिछले महीने के 4.78% से ज़्यादा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और दीगर 4 अफराद को साल 2020 के शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया है। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह इस मामले की समाअत कर रहे थे, जिसमें कुल 11 लोगों को नामजद किया गया था। अदालत ने इनमें से 5 अफराद को मुजरिम करार दिया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने, फसाद, हमला, ताकत के मुजरमाना इस्तेमाल और कत्ल के इल्ज़ामात में कसूरवार गर्दाना। ये मुकदमा दयालपुर पुलिस स्टेशन में अंकित शर्मा के वालिद रविंद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज FIR से मुतालिक है। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनके बेटे को उस वक्त आम आदमी पार्टी के काउंसिलर ताहिर हुसैन और दीगर अफराद ने कत्ल किया। इस मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को मुअत्तल कर दिया था। 24 मार्च 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन और दीगर 10 मुलजिमीन के खिलाफ बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद की थी। अमरीका और ईरान दोनों ने अपने हुरमुज पर कंट्रोल का दावा किया है। मगरबी एशिया में अख्ताम हफ्ता के दौरान हमलों में इजाफे के बाद इलाकाई सलामती और सिफारती कोशिशों के अहिया के लिए की जा रही कोशिशों को नई तशवीश लाक हो गई है। हालिया कशीदगी ईरान के जरिए ओमान के साहिल के करीब आबनाए हरमुज में कंटेनर बरदार जहाज़ को निशाना बनाए जाने के बाद शुरू हुई है। इसके बाद से आबनाए हरमुज से, जो कि आलमी तेल और गैस की तरसील की एक अहम आबी गुजरगाह है, कोई भी तजारती जहाज़ नहीं गुजरा है। अमेरिका का कहना है कि उसने रात भर ईरान के कई फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं, जिसमें फिजाई दिफाई निज़ाम, साहली रडार मरकज़, मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात और छोटे बहरी जहाज़ शामिल हैं। वाशिंगटन का कहना है कि इस कार्रवाई में पहली बार यकतरफा हमलावर समंदरी ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए और ये कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ रानी पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। दूसरी जानिब इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि उसने उर्दुन, बहरैन और कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को और ओमान में रडार तनसीबात को निशाना बनाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और जापान ने आज आज़ाद, खुले और उसूलों पर मबनी भारत बहरुल काहिल खित्ते के फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म का इरादा किया है। जापान के शहर टोक्यो में मुनक़िदा 8वीं दिफाई पॉलिसी मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर जामे बातचीत की और बाहमी मफाद के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वफ़ की क़्यादत दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने की, जबकि जापानी वफ़ की क़्यादत बैनुल अक़वामी उमूर के नायब वज़ीर दिफा कानो कोजी ने की। मुज़ाकरात के दौरान दोनों फरीकों ने गुज़िश्ता दिफाई पॉलिसी मुज़ाकरात के बाद से दोतरफा दिफाई तआवुन में हुई अहम पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह से कबल तीनों रहनुमाओं ने ज़िला उन्नाव में एक्सप्रेस वे का मुआयना भी किया। इसके बाद तीनों रहनुमा एक्सप्रेस वे के जरिए वापस लखनऊ पहुँचे और सैनिक स्कूल में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की, जहाँ तकरीबन 4,850 करोड़ रुपये के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया और संगे बुनियाद रखा गया, जिनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, लखनऊ हरदोई शाहराह के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का प्रोजेक्ट और लखनऊ में एक फ्लाईओवर की तामीर शामिल है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 बरस में उनकी वजारत उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5,00,000 करोड़ रुपये मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को मुकम्मल करेगी।
1: अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है, और इसलिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आने वाले 2 साल में मैं उत्तर प्रदेश में 5

0: करोड़ रुपए के कार्य हम पूरे करेंगे। लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ।
1: जनाब गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में सड़क रबते के निज़ाम को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 63 किलोमीटर तवी

0: 275 रुपये होगा, जबकि दोपहिया गाड़ियों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ये मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है जो खुदकार और तेज मशीनों से रहनुमाई हासिल करने वाली तामीराती टेक्नोलॉजी के जरिए तामीर किया जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक में इस्तेमाल होती है। इस एक्सप्रेसवे पर मसनूई जहानत, AI पर मबनी रफ्तार की निगरानी का निज़ाम, हर 2 किलोमीटर पर हंगामी कॉल बॉक्स और 24 घंटे काम करने वाले 2 मरबूत कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। ये शाहरा 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के लिए डिज़ाइन की गई है और इस पर रवायती टोल बैरियर मौजूद नहीं है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेजाबतगियों में नामजद तमाम 8 मुलजिमीन की अदालती तहवील में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज प्रतिभा नारायणन ने हुक्म दिया कि मुलजिमों को दोबारा 27 जुलाई को अदालत के सामने पेश किया जाए। खसूसी तहकीकती टीम SIT ने भी अपनी छानबीन शेयर करते हुए धर्म सेना के सदर संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। मुजवजा एक मुल्क एक इंतखाब फ्रेमवर्क के इम्कान पर गौर कर रही मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC ने आज लखनऊ में मुख्तलिफ शोबों के शराकत दारों और माहरीन से तबादला ख्याल किया। ये कमेटी मुल्क गिर मुशावरत के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर है। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, आसाम, सिक्किम और मेघालय में भी कल शदीद बारिश हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का गुजर श्री गंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूरघाट और फिर मणिपुर के मशरक जुनूब मशरक की जानिब जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकल में कल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में गर्म मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने कल मतला जुजवी अब्र आलूद रहने और तेज़ हवाओं के चलने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। नई दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: खवातीन क्रिकेट में आज लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क़यादत में भारतीय टीम ने मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से शिकस्त दी। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से स्नेह राणा ने 4 विकेट जबकि सयाली सतघरे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत ने कल चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। जकार्ता में 19 साल और 23 साल तक की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 23 साल तक की उम्र के जुमरे में भारत के 8 मर्द और खवातीन मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह 7 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और कांसे का तमगा हासिल किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मौजूदा बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11.37% ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर 4 अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। अच्छा, नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। एक पुरानी कहावत है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में

0: इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @EIRNewsAlerts पर भी #AskEIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
1: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको 5 बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं, जैसे बाउलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहाँ पे मॉनसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितना हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
0: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
2: जी, और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
1: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी है राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है सर?
1: रवि जी, आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम लोग, आप रवि जी कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे?
0: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
1: ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में है। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट एक कॉमन एरिया में

0: गड्ढे खोद के, मे बी 3 बाई 3 बाई 3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके, ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए, ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके।
1: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है, तो और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर तो।
0: थैंक यू मैडम। और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, कहते
1: जी
0: थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारी छतों पे अगर धूल मिट्टी है, तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित, हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाए, लूज सैंड, ऑफ कोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहाँ कैसी भूमि कैसी है, वहाँ का एक्विफर लेवल कैसा है, उस पे निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूँ, तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूँ, तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही हो वे फिल्टर होके, ताकि भूजल में जब जाए तो वो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3 बाई 3 बाई 3 का करते हैं, तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हज़ार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहाँ पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए। जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें, तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इस इन चीज़ों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित।
2: जी नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का, जैसे सरकार की तरफ से कुछ, जैसे कैसे अभी घर सुर घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में, जैसे सर अभी बता रहे थे, कि उसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
0: अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी, अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है, जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग, और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूँगा,
1: जी
0: कुछ एग्जांपल अगर बोलूँ तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जाम्पल दे सकता हूँ। नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी, करीब 500 घर हैं, वहाँ कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस

0: अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं, तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य
1: और
0: है,
1: मेरी जिम्मेदारी है
0: मेरी जिम्मेदारी है, उस
1: ये।
0: पे जोर डाला जा रहा है। और अधिकाधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि JSJB, जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा
1: नहीं
0: है,
1: नहीं
0: बट जनता को बताना भी जरूरी है कि
1: बिल्कुल जरूरी
0: जो
1: है।
0: जी, तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से। और जो मैंने बनस का अठा का एग्जाम्पल दिया, और जो अदर
1: छत्तीसगढ़
0: एग्जाम्पल
1: का
0: जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं, तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा हो
0: जल
1: गया।
0: इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और
0: सही
1: सबके लिए
0: है,
1: भी प्रेरणा की
0: ये
1: बात भी
0: प्रेरणा
1: है।
0: है, ये सभी के
1: बिल्कुल
0: लिए हौसला अफजाई का भी है, और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सकें।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी आप हमें सुन रहे हैं?
2: जी नमस्ते जी,
1: जी
2: नारायण
1: नमस्ते,
2: जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे। जी
1: नमन।
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
2: जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है, एक
1: जी
2: सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
0: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूँगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर सो छत में पानी जो एकत्रित हुआ, उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए ज़मीन के स्तर पे, और ज़मीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया। फिर मैंने सैंड का, सो ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो, ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग, इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
0: मैडम इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है
1: जी
0: वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है, तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो, इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर, देर इज नो डिफ्रेंसिएशन। लॉन्ग आंसर मैंने आपको बताया।
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, आज जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं
1: उसी तरह से भी कर सकते
0: जी।
1: हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार रमाकांत जी।
2: नमस्कार
0: रमाकांत
2: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे, आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड टूट दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
2: रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है, और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनक लता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले, सो ये छोटे छोटे तरीकों से, जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश, अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता
1: हूँ। भविष्य के लिए निवेश है,
2: भविष्य का बिल्कुल निवेश है, जैसे हम पिगी बैंक में अपने एक एक पैसे डालते हैं,
1: बच्चे डालते हैं,
2: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है।
1: हर बूंद कीमती है।
2: जी बिल्कुल।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 0111 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @IRNewsAlerts पर भी #AskIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन IR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमंत जी की जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
2: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूँगा सिंपल है कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मॉनसून से पहले एक बार सफाई कर दिए ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार हो, तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
1: उसका जो
2: स्तर ऊपर हो जाए।
1: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे JSJB जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024-25 चली, उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025-26 जो जल संचय जन भागीदारी, जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को ख़त्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे वहाँ की जनता

0: ने, वहाँ के क्राउड ने, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने, वहाँ की इंडस्ट्री ने, वहाँ के एनजीओज ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफ टॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग, या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन
1: बन
0: चुके
1: गए,
0: हैं।
1: ज्यादा बन गए
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था उस
0: उस
1: हिसाब
0: लक्ष्य
1: से।
0: से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM, जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है,
1: जी,
0: बट सभी लोग
1: लोगों की भागीदारी बहुत
0: बहुत
1: महत्वपूर्ण
0: महत्वपूर्ण है।
1: है।
0: क्योंकि कोई भी कहते ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है,
1: जी
0: ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप, जैसे आपके स्टूडियो में मैं 3-4 लोगों को देख सकता हूं, जब हम अपने घर जाएं, क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट
1: कर
0: करेंगे।
1: सके, आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से। और
1: नमस्कार।
2: मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
0: राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
1: लद्दाख के बारे में ही बताइए।
0: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जाम्पल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहाँ डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर
1: जी
0: जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से, ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए, तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में, ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से यह शेयर भी किया है, और आप वेबसाइट भी, अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है, विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ।
1: जी
3: सर, मेरा प्रश्न ये था, जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग उससे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छा रेस्पॉन्स है, इस तरह के हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर या कुछ संस्थाएं सरकारी जिसके लिए प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाएं, हम क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली जो चीज होना, तो इसको करा जा सकता है।
0: विवेक जी, बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम, आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे सहर्ष हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवीकेज हैं,
1: जी
0: उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल

0: फ्री नंबर नहीं पता है, जल मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्रा में एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें। आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है, लोकल रिक्वायरमेंट।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन के DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है, ये सारी जो पहले है सरकार की ओर से की जा रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
0: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाएं, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
1: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
1: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
0: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
1: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
1: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भू जल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका भी पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण, स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनक लता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार आकाशवाणी को।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीक के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात $232 अरब से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात $73.45 अरब रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में $4.14 अरब से बढ़कर इस वर्ष जून में $4.93 अरब हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात $88.76 अरब होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अम्बरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियां, तटीय राडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत समेत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमले करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान के राडार ठिकानों को निशान बनाने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। जनहित याचिका में नागर विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक की मांग की गई है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। 2024 मार्च को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है, जबकि 7 ने फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक हासिल किए। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि अंडर 19 में सभी 8 महिलाओं ने स्थान अपने पक्के किए। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन मात्र 186 रन पर सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 170 और भारत ने 285 रन बनाए थे। क्रांति गौड़ को 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम गुलदस्ता और आज के कलाकार रहे दिनकर शर्मा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10:30 हुए हैं और ये समय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम राग रंजन का। आइए सुनते हैं गुलाम दस्तगीर खां का राग दरबारी में सितार वादन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग रंजन। अभी आपने गुलाम दस्तगीर खां के राग दरबारी में सितार वादन सुना तबले पर संगति की मनमोहन सिंह ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 10:59 और 45 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 11 बजे प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार और 11:05 का वक्त रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। फिलहाल अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया US ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और मीडियम वेव 366.3 मीटर है। जी हाँ, इस फ्रिक्वेंसी के थ्रू आप हमसे जुड़ते हैं और करते हैं ढेर सारी बातें। फिलहाल 11:10 हो चुके हैं और ये समय रहता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार। खामोशी की चादर ओढ़कर जीता हूँ, अंदर लफ्जों का तूफान सहता हूँ। दुनिया समझती है कि मैं चुप हूँ, लेकिन असल में हर बात को मैं सह लेता हूँ।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना और ये गीत रहा फिल्म राज से, मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़ और इस गीत को संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं खामोशी की। वाकई में खामोशी जो है ना, वो कभी कभी किसी के लिए एक दर्द सी बन जाती है। हम नहीं बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यों ये खामोशी है, और कभी कभी हम तन्हाई में या फिर सुकून के लिए इसी खामोशी को

जी हाँ श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी की एक और खूबसूरत गीत के साथ हम हैं आपके साथ लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आप ही इस खामोश भरी रात में अपनी खामोशी को अपने शब्दों में पिरोकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का। जुड़े हुए हैं आप फिल्म संगीत से, मैं हूँ आपके साथ चेतना।

जी हाँ श्रोताओं, गाइड फिल्म से अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत को लिखा शैलेंद्र ने और संगीत दिया एस टी वर्मन ने। आप जुड़े हुए फिल्म संगीत के कार्यक्रम से और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:20 हो चुके हैं। चलते हैं आपके संदेशों की ओर, क्योंकि आपके संदेशों का हमें भी इंतज़ार रहता है और आपको भी। फारूक अली खान जी कार्यक्रम से जुड़ गए, लिखते हैं कि प्रोग्राम का आगाज एक उम्दा शायरी से किया, रिश्तों को कायम रखने के लिए खामोशी ही जरूरी है। बहुत खूबसूरत और खूबसूरत गीतों की रिक्वेस्ट भी भेजी है फारूक अली खान ने, और पूरे खान फैमिली है। ऊपर कोट बुलंदशहर से MS अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार है ये। बिल्कुल सही बात है, और एक मैंने बहुत अच्छी बात आज सुनी कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपको खामोश भी रहना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं झुकना भी पड़ता है, तभी आप रिश्तों को आगे बढ़ा पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि खामोशी सिर्फ और सिर्फ किसी और कारणों से भी हो, किसी भी चीज़ को रिश्ते को चलाने के लिए कहीं कहीं खामोशी भी जो होती है वो फ़ायदेमंद होती है। शुक्रिया एक खूबसूरत मैसेज के लिए। मोहम्मद कमर जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं कि नमस्कार आदाब अर्ज कर रहे हैं। गन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, और इसी के साथ साथ अगले संदेश की तरफ चलते हैं। नवी हसन जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, लिखते हैं चेतना जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नवी हसन जी, और लिख रहे हैं कि आप खैरियत से हैं, दुआओं में याद रखना, आपका श्रोता है। मेरा साया फिल्म से इन्होंने गीत की रिक्वेस्ट भेजी है, बिल्कुल मैंने भी आज क्यों कर रखा है ये वाला गीत, ज़रूर प्ले करूँगी। लेकिन आप जुड़े रहिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम से, सुनते रहिए। आर कुमार जी पंजाब से जुड़ गए हैं। सतीश अनेजा जी लिखते हैं कि हर सुख और दुख हमारे पारिवारिक

एक सदस्य नहीं मेहमान हैं, बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हमें अनुभव कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल सही बात है, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा जी, सही बात है। एक एक करके अगर दुख भी है इस वक्त तो ये यकीन रखिए कि इसके बाद सुख की ही बारी है। तो परेशान और हैरान होने वाली बात नहीं है भाई, बारी बारी से इनका आना ही है और सुख भी हमेशा नहीं रहता है। तो जैसे जैसे जिसकी टर्न आएगी वो आएगा ही, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई भी समय हमेशा के लिए नहीं रहता है। सोमदत्त जी पटियाला पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैरव ज्योति रानी गुरमत कौर हैं ये। बिट्टू गंगनेजा जी जलालाबाद वेस्ट से जुड़ गए हमारे साथ। सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा हैं इनके साथ में। इसी के साथ साथ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कार जुड़ गए हैं। इन्हीं के साथ कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी हैं। चांद ताज मोहम्मद जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना नमस्कार भेज रहे हैं। और अहमद फूल वाले जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया, लिखते हैं कि आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, मेरे मेल को ज़रूर शामिल करें। बिल्कुल, ये हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदक आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद कापासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना, नसरीन आसमा, राबिया, आशु अहमद और समस्त फूल वाले, शुक्रिया आप सभी का। आप कार्यक्रम को पसंद करते हैं और लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। सतेंद्र चंदोसलिया जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। ये ग्राम पंचोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हमें सुनते हैं। आदर्श, सार्थक और अलौकिक भी हैं इनके साथ में।

फिल्म मधुमति से अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और इस गीत को संगीत दिया सलील चौधरी ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। रात की खामोशी में एक आवाज़ तो

जाती है, जो दिन भर दिल में दबाई सी जाती है। वो आवाज़ ना तेरी है ना मेरी है, हाँ बस सच ये है कि जो हम हर रोज़ छुपाते हैं। वाकई में क्या खामोशी इसे ही कहते हैं?

जी हाँ श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक मेरा साया, से गीत आपने सुना और गीत लिखा सुचित्रा ने, संगीत दिया मदन मोहन ने।

और शुदा कुछ रिश्ते खामोशी में ही टूट जाते हैं, कुछ जख्म खामोशी में ही भर जाते हैं। ना शिकायत होती है ना कोई सफाई, बस जो दो दिल होते हैं ना वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं खामोश हो जाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:33 हो चुके हैं और देखिए ना, समय कितनी तेजी से दौड़ता है। वही हमने शुरुआत में कहा था कि कोई भी समय हो हमेशा के लिए नहीं रहता है। चलते हैं आपके संदेशों की तरफ, क्योंकि बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने नाम का, अपने गीत का। नवी हसन जी ने तहे दिल से शुक्रिया भेजा है कि आपने मेरा नाम शामिल किया, आपकी फरमाइश पूरी करी। मालहरा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी जी, शुक्रिया। सुदर्शन मुखी जी ने भी अपनी बात हम तक पहुँचाई है। आदरणीय चेतना जी, सादर प्रणाम। कार्यक्रम में कृपया हमारा अनुरोध पर भी गीत सुनाएं। बिल्कुल, आज हमने थोड़ा जो थीम रखा है वो थोड़ा स्लो और सैड सॉन्ग्स की रखी है, तो उम्मीद करती हूँ कि उन्हीं में से कोई गीत आपकी पसंद का भी हो। और बहुत सारी बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ जी सुदर्शन जी, कोशिश करूँगी आपके गीत को शामिल करने की। लालगिरी जी ने भी अपना नमस्कार और लिखा है कि नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए, शुक्रिया संदेश भेजने के लिए। फारूक अली खां जी लिखते हैं कि बड़ी ही खामोशी के साथ दूसरों के लिए जिए और ज़ख्म इतने मिले, और हमने भी बड़ी खामोशी से ही उन जख्मों को इस दिल की गलियों में गश्त करने की पनाह दे रखी है। बहुत खूबसूरत, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खां जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और एक गीत की रिक्वेस्ट भी भेजी है। थोड़ा आज हमने सेट थीम रखी है, तो उम्मीद करती हूँ ऐसे ही गीत आप भेजें। सतीश अनेजा जी लिखते हैं चंडीगढ़ से कि भीड़ का हिस्सा बनना मेरी फितरत में नहीं, मैं गिने चुने लोगों में अपनी जान रखता हूँ। सस्ती शोहरत और फिजूल के रिश्तों से दूर मैं अपनी खामोशी में अलग जहान रखता हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत। और लिख रहे हैं कि मनाली हिमाचल में मैं कुछ दिनों से हैं। बहुत खूबसूरत जगह है मनाली, और आप इस वक्त वहाँ पर हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा इंजॉय कर रहे होंगे इस वक्त, और खूबसूरत जगह है, सिर्फ यही कम शब्दों में कहना चाहूँगी। रमेश कुमार जी भी पटेल नगर मलोट से हमें सुनते हैं। गीता रानी जजोरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू हैं इनके साथ में, और इन्हीं के साथ साथ एसएम जावेद जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, फिल्म गाइड का गीत सुनना चाहते हैं। हाजी मजहर जी ने भी अपनी बात के साथ हम तक अपने मैसेज को पहुंचाया है। स्वीटी जोड़ा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुनती हैं। शुक्रिया, आप कार्यक्रम को पसंद करते हैं और इंतज़ार करते हैं 11:10 का, लेकिन हम भी यही पूरी उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को, आपके गीतों को कहीं ना कहीं ज़रूर शामिल करें, लेकिन प्रतिक्रियाएँ आप देना ना भूलें कार्यक्रम से संबंधित।

जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने खूबसूरत गीत सुना। वाकई में जब किसी की याद आ जाती है या फिर बसी होती है दिल में, तो खैर उसको बयां करना काफ़ी काफ़ी मुश्किल होता है। खैर किसका रास्ता देखें, ये भी बहुत खूबसूरत गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में। और खामोशी में भी एक अजीब सी दुनिया बसी होती है, जहाँ लफ्ज़ नहीं एहसास बोलते हैं। जो समझ गया है वो अपना है, और जो नहीं समझ पाया है वो वाकई में अजनबी है। क्यों, आप क्या कहते हैं?

जी हाँ श्रोताओं, भाई किसका रास्ता देखे किशोर कुमार की आवाज़ में, लेकिन देखे रास्ता तो देख रहे हैं हमारे लिसनर कि कब हमारा नाम शामिल किया जाएगा प्रोग्राम में। इंद्रभान सिंह जी हमसे जुड़ गए हैं, साथ में अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे हैं, और इन्होंने गीत की रिक्वेस्ट भेजी है। मुकेश बाटा जी ने भी पटियाला से हम तक संदेश पहुँचाया है। बसंत कुमार सिन्हा जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, सलाम आदाब कबूल करें, और ये दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से सुनते हैं, रेखा, बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और अंबिका तनुश्री गुप्ता। इसी के साथ साथ नवी हसन जी भी लगातार कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, पसंद कर रहे हैं। इंद्रभान सिंह जी ने भी बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचाए हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। देखिए ना, समय कितनी तेजी से दौड़ रहा है और चाहते तो हमें किसे रोक ले, पर रोक तो कोई भी नहीं सकता। हमारे साथ संदेश पहुँच गया रश्मि का, राजकोट गुजरात से। लिखती हैं कि जहरा मेरी और भी तो, जरा मेरी तरफ और भी तो देखो ना, बस एक नज़र काफ़ी है आपकी। मैं भी इंतज़ार कर रही थी रश्मि आपके संदेश का कि भाई अभी तक आप कहाँ पर हैं, लेकिन शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। किशन जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, और ये किशन वंचनी जी हैं, और इन्होंने अपनी जगह का नाम हम तक नहीं पहुँचाया, बहुत सारे संदेश भेजे हैं, तो आप जहाँ से भेज रहे हैं भाई वो भी लिख के ज़रूर भेजिए। और दोबारा इनका संदेश आया, ये हैं किशन वंजनी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमें सुन रहे हैं। लिखते हैं कि रात की तन्हाई में आपकी फरमाइश कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, हवाओं और तैरते हुए आपकी आवाज़ दिलों को सुकून दे रही है। नाइस प्रेजेंटेशन, शुक्रिया किशन जी। और शायद मेरे कार्यक्रम में आपका ये पहला संदेश है कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अली खान जी ने भी अपने गीत की रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाई है। अगर आप एक बात के साथ अपनी बात को भी लिख के भेजेंगे एक संदेश के साथ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और लिख रहे हैं कि ठंडी ठंडी हवा में गीत सुना दीजिए। बिल्कुल सही बात, ठंडी हवा तो खैर बार नहीं है, लेकिन गीत को ज़रूर प्ले करने की कोशिश करेंगे। और आप भी जुड़े रहिए कार्यक्रम से। हम आपको अपना ईमेल आईडी बताते हैं, आप हमें ip.radio.delhi@gmail.com पर अपना संदेश भेज सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का।

जी हाँ श्रोताओं, कटी पतंग फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और आरडी बर्मन ने संगीत दिया। वाकई में कुछ गीत जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। खामोशी इबादत भी है और सजा भी है। जी हाँ, सजा भी है और इबादत भी है खामोशी। इसमें इंसान या तो खुद से मिल जाता है या फिर पूरी तरीके से टूट जाता है। अरुण कुमार पांडे जी मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, नियमित श्रोता हैं हमारे, इसके लिए शुक्रिया। आप नियमित तरीके से आप हमें सुनते हैं। और इसी के साथ साथ फारूक अली खान जी ने लिखा है कि इतना उम्दा प्रोग्राम पेश करने के लिए और प्रोग्राम में मेरा नाम शामिल करने के लिए दिल से शुक्रिया। कस्बा गन्नौर यूपी से शुक्रिया कि आप इसके बाद भी अपनी प्रतिक्रिया भेजते हैं हम तक, इसकी हमें खुशी है। रश्मि जी ने लिखा है कि चेतना जी, आपने अपनी जबान से मेरा नाम लिया तो मैं तो घायल ही हो गई। याद करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और लगातार प्रतिक्रिया भेजने के लिए। और साथ साथ फारूक अली खान जी लिखते हैं कि मैंने खामोशी के साथ अपने दिल के जज्बात आप तक पहुंचाए हैं और गीत जो आपने अभी प्ले किया वो काफ़ी पसंद आया, शुक्रिया। इसी तरीके से आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजते रहे, हमें अच्छा लगता है और हम उस पर गौर करते हैं कि आप कार्यक्रम से जुड़ते हैं, लगातार अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे लिसनर्स ने हमें लिख के भेजा कि आप अपनी पसंद का कोई गीत प्ले करें, तो काफ़ी दिनों बाद इस गीत ने दस्तक दी मेरे दिमाग को कि शायद आज कोई आएगा।

जी हाँ श्रोताओं, मुझे भी ये रहता है कि आएगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इंतज़ार ज़रूर रहता है। और बेहद खूबसूरत एक मैसेज के साथ हमारे साथ दोबारा जुड़ गए सतीश अनेजा जी। लिखते हैं कि आज फिल्म संगीत में थोड़े दर्द भरे गीतों का समावेश रहा, अच्छा लगा। और इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आवाज़ में आपकी दर्द सा खिंचाव है, आपकी आवाज़ में हमें फिक्र का भी अनुभव होता है, इसके लिए शुक्रिया। और साथ साथ लिखते हैं कि आवाज़ में फिक्र का एहसास है, सहमा सा ठहराव भी है। ये परमात्मा का अनुग्रह मिला हुआ है आपको कि मैं कितना भी व्यस्त हूँ लेकिन आपके साथ ज़रूर निभाता हूँ, और आपकी पेशकश जो है वो सुकून देती है मुझे। बहुत सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया सतीश जी, आप हमेशा कार्यक्रम में रहते हैं, पूरे प्रोग्राम में, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़ रही है कार्यक्रम से, लेकिन फ़िलहाल मेरे जाने का अब वक्त हो गया है। दोबारा आपसे जल्द ही मिलूंगी फिल्म संगीत के कार्यक्रम में, और यही बात कहते कहते जा रही हूँ कि हम इंतज़ार करेंगे क़यामत तक आपका। फ़िलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें, आप अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीएनएम 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। फिलहाल वक्त रात्रि के 12 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73.45 अरब डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। वियतनाम के फूकवॉक द्वीप के पास हुए स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 6 अभी लापता हैं। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा शोध नवाचार और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय आरएस राघु। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with U.S. Trade Representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting First Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had a productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In a social media post,

0: The president said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the vice president prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. The decomposed bodies of the 9 fishermen who lost their lives due to the capsizing of a boat off the coast of West Bengal in Bay of Bengal have been kept at the Katapukur Morgue in South 24 Parganas district. 15 fishermen went off for fishing from the Sankarpur Sea Harbour on 2nd of July on FV Ma Kali trawler. After 5th July, connection was lost with the fishing trawler. A joint team of Coast Guard, Navy, state agencies found the capsized trawler on 12th July afternoon in the Bay of Bengal. 9 decomposed bodies have been recovered from the cabin of the ill-fated trawler. 6 persons are still missing. The mortal remains of the 15 Indian tourists who were killed in a speedboat accident off Vietnam's Phu Quoc Island have been brought back home. According to the official X account of the Embassy of India, Hanoi, the mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight VN-979 and arrived in Mumbai. In a tragic incident on Friday, a speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island, leaving 15 tourists dead. Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, yesterday inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway. Before the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway, all these leaders inspected the expressway in Unnao. Later, they came back by the same expressway and participated in the function at Sainik School in Lucknow, where projects worth 4,850 crore rupees were launched yesterday, which includes inauguration of the expressway and 4-lane construction of a part of Lucknow-Hardoi Highway, along with laying of the foundation stone of a flyover in Lucknow. In cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur yesterday recorded a historic win in one of women's tests against host England at the Lords. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 12:10 का समय हो चला है और ये समय हो चला है रात्रिकालीन सभा को आरंभ करने का। जी हाँ, सभा में हम लेकर आते हैं आपके लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम होती हैं गीत बहार, यानी कि जिसमें हम लेकर आते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। उसके अलावा गीत सुनारे, गोल्डन एरा का वो फिल्म संगीत जिसे आज भी जब आप सुनते हैं तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और गज़ल गीत का भी कार्यक्रम होता है, समय रहता है 3:30 पर। और भक्ति संगीत के कार्यक्रम सुबह की सभा में आप सुन सकते हैं। तो इस तरीके से सभा में आगे बढ़ते चलते हैं और साथ होते हैं समाचार। लेकिन अगर फिलहाल बात करें तो फिलहाल समय हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम होता है सुरों का सफरनामा। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आपका दोस्त अतुल। जी श्रोताओं, सुरों का सफरनामा, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन फनकारों से जिनकी कला समय की सीमाओं को पार कर आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। यानी कि बात करें तो एक कलाकार को लेकर आते हैं, कलाकारों को लेकर आते हैं ये भी कह सकते हैं। इस कार्यक्रम में होती है बात उनके पूरे फिल्मी करियर की, उतार चढ़ाव की, और क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया, वो सब कुछ कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में शामिल करने की। और साथ होते हैं फिल्मी गीत। तो इस तरीके से आगे बढ़ते चलते हैं। और जब हमने यादों की बात करी तो आज श्रोताओं, जरा अपनी यादों के पन्ने पलटिए। 90 का दशक, घर के ड्राइंग रूम में रखा 2-in-1 कैसेट का रिवाइंड बटन, दोस्तों से कैसेट बदल कर सुनना, और किसी अपने की यादों में खोई हुई शाम। आप सोच रहे होंगे क्या पहेलियां हैं। जी हाँ, तो इसी पहेली में जवाब है कि आज हम किस कलाकार की बात करने वाले हैं। उस दौर में अगर किसी संगीत ने सबसे ज्यादा दिलों को छुआ तो वह था एक जोड़ी का संगीत जिसका नाम था नदीम श्रवण। इनकी धुनों में मोहब्बत की मासूमियत थी, बिछड़ने का दर्द था, मिलने की खुशी थी और रिश्तों की गर्माहट थी। यही वजह थी कि इनके गीत सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे बल्कि लोगों

इस जिंदगी का हिस्सा बन गए। शादी ब्याह से लेकर कॉलेज के वार्षिक समारोह तक हर जगह इनकी धुन गूंजती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस जोड़ी ने 90 के दशक पर राज किया उसे ये मुकाम एक दिन में नहीं मिला। इसके पीछे थे वर्षों का संघर्ष, अनगिनत ठोकरें और अपने संगीत पर या फिर कहें कि अपने काम पर अटूट विश्वास। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे दो ऐसे कलाकारों की कहानी जिन्होंने साबित किया कि अगर धुन दिल से निकले तो वह सीधे करोड़ों दिलों तक पहुंचती है। जानेंगे उनका बचपन, उनका संघर्ष, उनकी सबसे बड़ी सफलताएं, मुश्किल दौर और वो विरासत जो आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में बसती है। तो आइए इस यादगार सफर की शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसने सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पूरे हिंदी फिल्म संगीत को नई दिशा दी। मेरा तो फेवरेट है ही, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे श्रोताओं का भी ये फेवरेट गीत है।

कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गीत आपने सुना आशिकी फिल्म से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल और कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, जिसमें आज आपके साथ है आपका दोस्त अतुल और साथ में है दो ऐसे कलाकार जो आज के इस प्रोग्राम को खास बना रहे हैं। दो शहर, दो सपने और एक सुरों की साझेदारी। दोस्तों, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। नदीम श्रवण की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 6 अगस्त 1954 को मुंबई में जन्मे नदीम अख्तर सैफी बचपन से ही संगीत के दीवाने थे। रेडियो पर बजने वाले गीतों को बड़े ध्यान से सुनना, उनकी धुनों को समझना और फिर अपने अंदाज में उन्हें गुनगुनाना उनकी रोज़मर्रा की आदत थी। उन्हें विश्वास था कि अच्छा संगीत वही है जो सीधे दिल तक पहुँचे। और अगर उधर 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के अजमेर में जन्मे श्रवण कुमार राठौड़ ऐसे परिवार से थे जहां संगीत सिर्फ शौक नहीं बल्कि संस्कार था। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। घर का माहौल ही ऐसा था कि सुर और ताल बचपन से ही श्रवण की जिंदगी का हिस्सा बन गए। कहते हैं जब दो लोगों का सपना एक जैसा हो तो मंजिल भी उन्हें मिल ही जाती है। मुंबई में दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत संगीत से शुरू हुई और फिर दोस्ती ऐसी हुई कि दोनों ने साथ मिलकर संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन उस समय हिंदी फिल्म संगीत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, कल्याण जी आनंद जी और बप्पी लाहिड़ी जैसे बड़े नाम छाए हुए थे। ऐसे दौर में दो नए संगीतकारों के लिए अपनी जगह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर नदीम और श्रवण को अपनी धुनों पर भरोसा था। उन्हें यकीन था कि एक दिन उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें नदीम श्रवण की मधुर धुन और प्यार का मासूम एहसास दोनों ही बखूबी महसूस किए जा सकते हैं। गीत आपको सुनवाएं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने संदेशों के माध्यम से ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, संदेश आप भेज सकते हैं कार्यक्रम से संबंधित इस मेल पर।

दोस्तों, सफलता अक्सर उन्हीं के कदम चूमती है जो मुश्किल समय में भी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ते। नदीम श्रवण ने भी यही किया। करीब एक दशक तक दोनों ने

फिल्म इंडस्ट्री में लगातार संघर्ष किया, छोटी फिल्मों में संगीत दिया, कई बार अच्छी धुनें भी बनाई, लेकिन ना फिल्में चली और ना ही उनके गीत लोगों तक पहुंच पाए। कई निर्माताओं का तो मानना था कि उनकी धुनें बहुत सरल हैं, जबकि उस समय तेज बीट्स और डिस्को संगीत का दौर चल रहा था। जी हाँ, हम 90s की बात कर रहे हैं, 90 के दशक की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे गीत, बिल्कुल सही लिखा है कि जो बीट

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशिकी फिल्म की। उस एक मौके ने सब कुछ बदल दिया। संघर्ष के लंबे साल अब सफलता की नई सुबह में बदलने लगे थे, और लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें, उससे पहले सुनते हैं नदीम श्रवण के रोमांटिक जो संगीत उन्होंने दिया इतनी सारी फिल्मों में से, उसी में से एक और यादगार रंग। और सच में ये गीत जब आप सुनेंगे तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल, कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आपके साथ आपका दोस्त अतुल। आज हम बात कर रहे हैं नदीम श्रवण की।

साल 1990 फिल्म आज की रिलीज हुई और उसके साथ ही बदल गई हिंदी फिल्म संगीत की तस्वीर। दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसके गीत पूरे देश में लोकप्रिय हो चुके थे। संगीत की दुकानों पर कैसेट खरीदने वालों की भीड़ लगने लगी। आशिकी का संगीत उस दौर के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बमों में शामिल हुआ और नदीम श्रवण रातों रात हर निर्माता की पहली पसंद बन गए। इसके बाद मानो हिट संगीत का जो है सिलसिला शुरू हो गया। दिल है कि मानता नहीं, साजन, सड़क, दीवाना, एक के बाद एक फिल्मों में गीत लोगों की जुबान पर चढ़ते चले गए। नदीम श्रवण की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी मेलोडी। वे ऐसा संगीत बनाते थे जिसे सुनकर लगता था कि ये गीत हमारी अपनी कहानी कह रहा है। यही कारण है कि 3 दशक बाद भी आज भी उनके गीत उतने ही ताज़ा लगते हैं। गुनगुनाते जब हैं तो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और अगर बात करें आज की फिल्म की तो आइए आप सुनते हैं उस दौर का ये खूबसूरत गीत जो आज भी नई पीढ़ी के दिलों की धड़कनें तेज कर देता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल और श्रोताओं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आज हम बात कर रहे हैं नदीम श्रवण की। आशिकी के बाद नदीम श्रवण के लिए सफलता जैसे दरवाजे खोलकर खड़ी हो गई। 1991 से लेकर दशक के अंत तक शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जब उनकी धुनों ने संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज ना किया हो। साजन, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, दीवाना, राजा, दिलवाले, जीत और फिर राजा हिंदुस्तानी, हर फिल्म का संगीत अपने आप में एक नई कहानी कहता था। निर्माता अक्सर कहते थे कि अगर फिल्म का

संगीत नदीम श्रवण तैयार कर रहे हैं तो आधी सफलता तो पहले से ही तय है। उनकी धुनों की सबसे बड़ी खूबी थी सादगी। वे ऐसे गीत बनाते थे जिन्हें आम इंसान पहली बार सुनकर ही गुनगुनाने लगे। शायद यही वजह थी कि उनकी धुनें सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर घर, हर शादी और हर महफिल का हिस्सा बन गई। आज भी 90 के दशक का जिक्र हो और राजा हिंदुस्तानी का संगीत याद न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए सुनते हैं उसी दौर का एक ऐसा गीत जिसने मोहब्बत और जुदाई दोनों को एक साथ महसूस कराया।

दोस्तों, किसी भी संगीतकार की सफलता के पीछे एक मजबूत टीम का हाथ होता है। नदीम श्रवण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। गीतकार समीर के सरल और दिल को छू जाने वाले शब्द, कुमार शानू की मखमली आवाज, अलका याग्निक की मिठास और उदित नारायण की सादगी, इन सबको नदीम श्रवण ने अपनी धुनों में इस तरह पिरोया कि हर गीत यादगार बन गया। कम लोग जानते हैं कि कई बार नदीम श्रवण पहले धुन तैयार करते थे और उसके बाद समीर उन धुनों पर शब्द लिखते थे। यही वजह थी कि उनके गीतों में शब्द और संगीत का ऐसा मेल दिखाई देता है जो सीधे दिल तक पहुंचता है। उन्हें कई फिल्मफेयर पुरस्कार मिले और उनके संगीत ने कैसेट बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था श्रोताओं का प्यार, जो आज भी उतना ही बरकरार है। आइए सुनते हैं एक और ऐसा गीत जो आज भी दूरियों में प्यार का एहसास दिलाता है।

दोस्तों, हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब समय उसकी परीक्षा लेता है। नदीम श्रवण के जीवन में भी ऐसा ही समय आया। 1997 में टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में नदीम सैफी का नाम जांच के दौरान सामने आया और इसके बाद वे विदेश में रहने लगे। वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चली, लेकिन भारत में उन्हें दोषी सिद्ध नहीं किया जा सका। इस पूरे घटनाक्रम का असर उनकी जोड़ी और उनके काम पर भी पड़ा। बातें तो और भी बहुत हैं श्रोताओं इस कार्यक्रम में, लेकिन समय बहुत कम है। तो कुछ कलाकार, अगर जैसे हमने बात करी नदीम श्रवण की, तो कुछ कलाकार अपनी मौजूदगी से नहीं बल्कि अपने काम से हमेशा जिंदा रहते हैं। नदीम श्रवण की भी एक ऐसी ही जोड़ी रही। 22 अप्रैल 2021 को श्रवण राठौड़ के निधन ने संगीत प्रेमियों को गहरा दुख दिया, लेकिन उनकी बनाई धुनें आज भी हर पीढ़ी को जोड़ती हैं। नई पीढ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके गीत सुनती है, जबकि पुरानी पीढ़ी उन्हें अपनी यादों के खजाने की तरह संजोए हुए है। अगर 90 के दशक को हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम मेलोडी युग कहा जाता है, तो उसमें नदीम श्रवण का योगदान सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल है। उन्होंने हमें सिर्फ गीत नहीं दिए बल्कि ऐसे एहसास दिए जो हर दौर में नए लगते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अपने दोस्त अतुल को दीजिए इजाजत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। फिर मुलाकात होगी एक और महान कलाकार की कहानी और उसके सदाबहार गीतों के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। और श्रोताओं, कुछ ही पलों में रात्रि के 1 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूकवॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और श्रोताओं कार्यक्रम गीत सुनारे, जिसमें हम लेकर आते हैं फिल्म संगीत उस दौर का जिसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन ईरा यानी कि स्वर्णिम काल कहा जाता है।

0: ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

0: और इसी के साथ गीत सुनारे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और श्रोताओं को जिपलों में 2 बजने को है। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा और निराधार तथा भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वियतनाम के फूकवॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोस कोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज 3rd नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और श्रोताओं कुछ ही पलों में 3 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान के वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। विजेताओं और उनके कार्यों का प्रदर्शन वेव्स 2027 के दौरान आयोजित क्रिएटोस फेयर में किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज 3rd नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना, भक्ति संगीत का कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म में आज आप सुनेंगे वीणा वादन, कलाकार हैं एस बालचंदर, रागम नामा नारायणी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

श्रोताएं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक। इस कार्यक्रम में आपने सुना वीणा वादन कलाकार थे एस बालचंदर, रागम नामा नारायणी। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम है 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज आप कौन कौन से कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे, आइए मैं आपको बता दूं उसकी संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे अश्वथासन और तितली क्रिया के बारे में, योगा फॉर वेलनेस। 5:20 पर देशभक्ति गीत फिल्मों से सुनेंगे आप, और 5:30 पर स्वर रंजनी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर गरुण मिश्रा का राग नट भैरव में गायन। सुबह 6:10 पर कार्यक्रम वंदना होगा, और 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम में सुमित्रा नंदन पंत के विचारों पर। 6:45 पर हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड। 6:55 पर संस्कृत में समाचार होंगे, और 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका में आज प्रीति सुशील के भजन होंगे। 7:30 पर कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग होगा, और सुबह 8 बजे समाचार प्रभात। आठ बजकर 45 पर कार्यक्रम होगा स्वरगंगा, शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुप्रिया मैत्रा का ध्रुपद राग में ध्रुपद गायन सुनेंगे, राग अहीर भैरव। 9:45 पर कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका होगा, जिसमें आज आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व कार्यक्रम सुनेंगे। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, सुबह के 5 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात $232 अरब से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात $73.45 अरब रहने का आकलन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक शांति, सुरक्षा और समता मूलक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का शांति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के लगभग 50 शांति मिशनों में करीब 3 लाख शांति सैनिक भेज चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10 मिशनों में 4,300 से अधिक भारतीय कर्मी तैनात हैं। उन्होंने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज जल डमरू मध्य से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करेगा। साथ ही ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीका के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अमरीकी सेना को मदद देने वाले किसी भी देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर लागू करने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। 15 भारतीय पर्यटकों के शव स्वदेश लाए गए हैं। इन भारतीय पर्यटकों की वियतनाम के फुकवॉक द्वीप पर स्पीड बोट की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई पहुंचे। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अभी भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द 15 इंडियन टूरिस्ट्स हु वर किल्ड इन अ स्पीड बोट एक्सीडेंट ऑफ वियतनाम्स फुकवॉक आइलैंड हैव बीन ब्रॉट बैक होम। द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वियतनाम हैज सेड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट दैट मॉर्टल रिमेन्स डिपार्टेड फ्रॉम हो ची मिन सिटी बाय वियतनाम एयरलाइंस फ्लाइट एंड अराइव्ड इन मुंबई। A speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phuoc Island in Vietnam on Friday, leaving 15 tourists dead. 16 survivors have also returned to India and one tourist remains hospitalized in Vietnam. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 persons still missing. The trawler had 15 fishermen on board. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the tragedy. They conveyed condolences to the families of the deceased and wished a speedy recovery to those injured. The Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks yesterday, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US Trade Representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. A Delhi court yesterday convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and four others for the killing of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh was hearing the case against a total of 11 accused, including Hussain, and convicted five of them. India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Bihar and Odisha till today. The Weather Department said that isolated heavy rainfall is also expected over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, West Bengal, Sikkim, Assam and Meghalaya today. US President Donald Trump has announced that the United States will reinstate a blockade on Iranian shipping in the Strait of Hormuz and impose a 20% charge on cargo transiting the strategic waterway to cover the cost of maritime security. In a post on Truth Social, President Trump said the blockade would apply only to Iranian ships and vessels trading with Iran. He added the Hormuz Strait is open and will remain open with or without Iran. He assured that the commercial traffic from other countries would continue to have free passage. Indian boxers remained a strong force at the Asian Under-19 and Under-23 Championships, with 16 of them advancing to the finals across men's and women's categories in Jakarta. In the Under-19 women's category, 8 boxers reached finals yesterday. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 5:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे अश्वत्थासन और तितली क्रिया।

ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी के जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें, और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें।

पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें, अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 5:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर गरुण मिश्रा का राग नट भैरव में गायन।